एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 30 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 30 सेकेंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं, अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सहयोग की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे।
2: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्ज़ियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जनसंबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज़्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण करेगा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री CR पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात सुनेंगे। वहीं पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न

0: समुदाय के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व पर हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव से विश्वास करता है। श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें से 320 से ज्यादा विदेशी नागरिक हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। करीब 50 अन्य भारतीयों से भी दोबारा संपर्क हो गया है। भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के साथ टी20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर भारत की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। मौसम विभाग ने उड़ीसा में अगले 2 दिनों के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में भी आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं चिंतन।

सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेता है। दोनों ही परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति का जीवन ही एक सफल जीवन कहलाता है। जीवन का एक साधारण सा नियम है और वो ये है कि सुख आता है तो वह अपने साथ अहंकार भी लेकर आता है। रावण हो, कंस हो अथवा दुर्योधन हो, इन सबके जीवन की एक ही कहानी है कि वो ये कि जीवन में जितना सुख और विलास आया उतना ही अभिमान बढ़ता चला गया। सुख भी उस घी के समान होता है जिसे आदमी खा तो लेता है मगर पचा नहीं पाता। उसी तरह दुख के क्षणों में धैर्य धारण करना भी सबके बस में नहीं होता। दुखों के प्रवाह में धैर्य का बांध उसी प्रकार टूट जाता है जैसे बरसाती नदी के प्रवाह में नदी पर बना कोई बांध। सुख के क्षणों में अहंकार को जीतने वाला और दुख के क्षणों में धैर्य को धारण करने वाला ही वास्तव में इस जीवन रूपी महासंग्राम का एक सफल योद्धा है। दुख सहना ही नहीं अपितु सुख भोगना भी जीवन की एक महान कला है।

जीवन में दिन आते और जाते रहते हैं, लेकिन वही दिन सबसे श्रेष्ठ बन जाता है जिस दिन हम प्रभु के भजन से दिन की शुरुआत करते हैं और ईश्वर का मनन करते हैं।

ईश्वर इस जगत के कण कण में विद्यमान है। प्रभु सदैव अपने भक्तों के साथ रहते हैं, सुख दुख में उनका साथ देते हैं और अपनी कृपा से उनके कष्टों का निवारण करते हैं।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सुबह के 6:40 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस कांड।

वन जाने को उद्यत हैं। मंत्रियों को आदेश दिया गया है कि वे राज तिलक की सारी सामग्री वन में ले चलें, जहां वशिष्ठ जी श्री राम का राज तिलक करेंगे। सबसे आगे अरुंधति तथा अग्निहोत्र की सामग्री के साथ मुनि वशिष्ठ रथ पर सवार होकर चले। उनके पीछे तेज और तपस्या के धनी ब्राह्मणों के दल अनेक सवारियों पर आसीन हैं। नगर के नर नारियों के सुसज्जित रथों के साथ हैं रानियों की पालकियां। सबको विदा करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई पैदल चल पड़े तो माता कौशल्या ने भरत को बुलाकर उनकी बलैया ली और उनसे रथ पर सवार होने को कहा। दोनों भाइयों ने माता की आज्ञा सिर पर धारण की।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सुहानी और 7:40 का समय रहेगा लोकगीतों के कार्यक्रम शुभ प्याग का। गाने सुहाने।

0: गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 8:30 पर। प्रातः 9 बजे का समय है सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का, और आज कार्यक्रम में जिस विषय पर हम जानकारी देंगे वो है खेलों के दौरान होने वाली चोटें और उनका उपचार। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साहिल कुमार, और श्रोता भी उनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें डायल करना होगा हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01892224391। गीतों का कारवां ये कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 10 बजे, और 10:30 का समय है लोकगीतों के कार्यक्रम पहाड़ों के सुर का। प्रातः 10:55 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएगी। 11:30 का समय है कार्यक्रम तराने मन के का, और दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। बच्चे अपना कार्यक्रम सुनेंगे बाल सभा दिन में 12:30 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से सुबह 9:20 पर। 10:45 पर दिन में 3 बजे, शाम 6 बजे और शाम 7:45 पर। समाचार प्रभात 8 बजे, मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर, समाचार संध्या 8:45 पर और न्यूज एट 9 रात 9 बजे आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। दिन में 1:10 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम जो आकाशवाणी मुंबई से रिले किए जाएंगे। भजन सुनिएगा शाम 5:10 पर, और शाम 5:25 का समय है कार्यक्रम युवा मंच का। गजलों का लुत्फ उठाइए शाम 6:05 पर, कार्यक्रम रहेगा शामी गजल। महिलाओं के लिए फोन इन कार्यक्रम मिंजरा प्रसारित किया जाएगा शाम 6:30 पर, और शाम 7:10 का समय है कार्यक्रम खेती बाड़ी का। मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 8 बजे, और रात 8:15 पर आकाशवाणी शिमला से कार्यक्रम हिम बीट्स रिले किया जाएगा। और रात 8:30 पर सुनिएगा देशभक्ति गीत। रात्रि 9:15 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम में ऋषिकेश मुखर्जी की निर्मित फिल्मों के गीत हम आपको सुनवाएंगे। रात 9:30 पर कार्यक्रम अनुगूंज, और रात 10 बजे रविवासरीय संगीत सभा आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएगी। तो ये था कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य उज्बेकिस्तान देशस्य राष्ट्रपतिना शावकत मिर्जियोयेव इत्यनेन सह द्वैपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति। उभौ नेतारौ राष्ट्रपति प्रासादे व्यापार निवेशः, रक्षा, डिजिटल संपर्कः, ऊर्जा, शिक्षा, जनानां संबंधादिषु क्षेत्रेषु सहकारस्य समीक्षां करिष्यतः। अद्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वप्रथमं उज्बेकिस्तान देशस्य योग संघेन आयोजिते योग कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। ततः परं सः उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतिना शावकत मिर्जियोयेव इत्यस्य प्रासादं

0: के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाशने पर दोनों देश जोर देंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण करेगा। इसके लिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री CR पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। वहीं पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदायों के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास करता है। श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अभी भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। करीब 50 अन्य भारतीयों से दोबारा संपर्क स्थापित हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर दलित समुदाय को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. गुरु प्रकाश पासवान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का दलित समुदाय का अपमान करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉ. भीमराव आम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया है। भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के साथ T20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8:30 बजे से शुरू होगा। हरमनप्रीत कौर भारत की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुबह सुहानी।
1: श्रोताओ गुड मॉर्निंग, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और इस खूबसूरत रविवार की सुबह का स्वागत कीजिए। घड़ी में सुबह के 7:10:57 हो चुके हैं और आपने इस समय ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी धर्मशाला मेरे साथ यानी वंदना रैना के साथ। जी श्रोताओ, आज कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई अलार्म का डर नहीं है। आज तो बस खिड़की से आती इस खूबसूरत ठंडी हवा को हमें महसूस करना है और जिंदगी को थोड़ी धीमी रफ्तार से जीना है, क्योंकि काम के दिनों की भागदौड़ के बाद आज ये रविवार सिर्फ आपका है, आपके अपनों के लिए है। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ जो आपके मन को सुकून देगा, ऐसा हमें मानना है, ऐसी हमारी उम्मीद है।

जी श्रोताओं, ये खूबसूरत सा गीत आपने सुना फिल्म बनारसी ठग से, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। और चलिए अब बात करते हैं एक खूबसूरत से विचार की, और ये विचार है, ज़िंदगी में रफ्तार चाहे कितनी भी हो, अपनों के साथ बिताए हुए सुकून के दो पल ही सबसे कीमती होते हैं। जी श्रोताओं, तो आज है इतवार, तो खुद को और अपने परिवार को थोड़ा सा वक्त दीजिए, क्योंकि काम तो हर रोज़ चलते हैं। आज बस मुस्कुराइए और हर पल का जी भरकर आनंद लीजिए।

जी श्रोता, चलना ही जिंदगी का नाम है और इस सफ़र में हमारे साथ होती हैं सुरीली यादें, खूबसूरत नगमे और साथ ही अपनों का साथ। और चलिए अब कार्यक्रम सुबह सुहानी में हमारा और आपका साथ यूं ही बना रहे और इसी के साथ हम पलटते हैं इतिहास के पन्ने, पीछे मुड़कर देखते हैं और बात करते हैं उन घटनाओं के बारे में जिन्होंने 30 अगस्त के इस दिन को कुछ खास बना दिया। आज विशेष की शुरुआत कर रहे हैं साल 1806 से। तो आज ही के दिन न्यूयॉर्क शहर का दूसरा दैनिक समाचार पत्र डेली एडवर्टाइजर आखिरी बार प्रकाशित किया गया। आज ही के दिन साल 1888 में भारत की आज़ादी के लिए मात्र 20 वर्ष की आयु में फांसी के फंदे पर झूलने वाले क्रांतिकारी कन्हाई लाल दत्त का जन्म हुआ था। वे क्रांतिकारी संगठन जुगंतर समूह के सक्रिय सदस्य थे और इसके साथ ही महान राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। 30 अगस्त सन 1928 को रास बिहारी बोस और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की भारत में स्थापना की थी और इसका मकसद प्रवासी भारतीयों को भारत में ब्रिटिश राज हटाने के लिए प्रेरित करना था। और इसके साथ ही साल 1947 में आज ही के दिन भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। आज ही के दिन वर्ष 1984 में अंतरिक्ष यान डिस्कवरी ने पहली उड़ान भरी थी और प्रसिद्ध इतिहासकार विपिन चंद्र का निधन हुआ साल 2014 में आज ही के दिन। साल 1923 की हम बात करें तो 30 अगस्त को हिंदी सिनेमा के प्रमुख गीतकार शैलेंद्र का जन्म हुआ। उनका पूरा नाम शंकरदास केसरी लाल था और साल 1950 और 1960 के दशक में उन्होंने हिंदी फिल्मी जगत को कई सदाबहार गीत दिए। अभिनेता राज कपूर, गायक मुकेश और संगीतकार शंकर जयकिशन के साथ उनकी जोड़ी बेहद प्रसिद्ध थी और उन्होंने तीसरी कसम फिल्म का निर्माण भी किया था जिसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। और इसके साथ ही गीतकार शैलेंद्र को 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला था। तो कार्यक्रम का अगला गीत अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म गाइड से और इस गीत को लिखा शैलेंद्र ने।

समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। श्रोताओ, 30 अगस्त 1903 को हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार और कवि भगवती चरण वर्मा का जन्म हुआ। उनकी अगर हम बात करें तो उन्होंने अपनी कालजयी रचनाओं से समाज के धार्मिक पाखंडों और बदलते सामाजिक मूल्यों को बेहद खूबसूरती से दर्शाया है और उनके लोकप्रिय उपन्यास हैं चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, पतन, तीन वर्ष, चाणक्य और टेढ़े मेढ़े रास्ते। उपन्यास भूले बिसरे चरित्र के लिए उन्हें साल 1961 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था और वर्ष 1971 में उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और साल 1978 में उन्हें प्रतिष्ठित उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। भगवती चरण वर्मा का सबसे लोकप्रिय उपन्यास रहा चित्रलेखा और जिसपे दो बार साल 1941 और 1964 में हिंदी फिल्में भी बनी थी। तो चलिए, फिल्म चित्रलेखा से अब हम आपको ये गीत सुनवाते हैं जो उनके लिखे उपन्यास पर आधारित है।

श्रोताओं, एक बार फिर से कार्यक्रम सुबह सुहानी में आप सबका स्वागत है। और हम आपको बता दें कि हर साल 30 अगस्त को मनाया जाता है जबरन उत्पीड़न के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आधिकारिक तौर पर पहली बार ये दिन मनाया गया साल 2011 में, और इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में गुप्त रूप से बंदी बनाए गए, अगवा किए गए या फिर बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के गायब किए गए लोगों की नियति के प्रति लोगों का वैश्विक रूप से ध्यान आकर्षित करना है। और इसके साथ ही आज का दिन उनके परिवारों के संघर्ष को सम्मान देने, न्याय की मांग करने और अमानवीय कृत्यों को रोकने के लिए सरकारों को जवाबदेह बनाने का काम करता है। और साल 2026 के लिए मुख्य स्लोगन है, पीड़ित पहले कार्यवाही अभी, यानी कि विक्टिम्स फर्स्ट एक्शंस नाउ। और साल 2026 का आज का ये दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा जबरन गुमशुदगी से सभी लोगों के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को अपनाने की 20वीं वर्षगांठ का प्रतीक है।

और श्रोता, इस खूबसूरत से गीत के बाद अब रुख करते हैं आज के मुख्य समाचारों का और साथ ही जान लेते हैं कि आज मौसम का मिजाज कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मौसम की। तो आज कई जिलों जैसे शिमला, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति में भारी बारिश की संभावना है और मनाली में आज का तापमान 16 डिग्री के आसपास रहेगा। और इसके साथ ही मौसम विभाग ने 30 अगस्त से 3 सितंबर तक मॉनसून का नया दौर सक्रिय होने का अलर्ट भी जारी किया है। तो आज है संडे और अगर आपका बाहर निकलने का प्लान है तो अपने साथ छाता रखना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही लैंडस्लाइड वाले इलाकों से बिल्कुल दूर रहें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही पड़ोसी देश नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद भारत ने अपनी विशेष टनल रेस्क्यू टीम को मदद के लिए नेपाल भेजा है। यूक्रेन के मायला में रूस के एक बड़े ड्रोन हमले से कई लोगों की जान चली गई है और इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए क्रिप्टो बैंक वेंचर में संयुक्त अरब अमीरात के एक बड़े अधिकारी की हिस्सेदारी सामने आने के बाद हितों के टकराव को लेकर आलोचनाएं शुरू हो गई हैं। बात करते हैं खेल समाचारों की। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज थाईलैंड के खिलाफ मैच खेलकर अपने महिला एशिया कप 2026 अभियान की शुरुआत करने जा रही है और इसके साथ ही आज से दिलीप ट्रॉफी

के सेमीफाइनल मुकाबले भी शुरू हो रहे हैं। और टेनिस प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर, साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन आज 30 अगस्त से शुरू हो रहा है।

तो श्रोताओ, आज के कार्यक्रम सुबह सुहानी में बस इतना ही, और कार्यक्रम का समापन करने जा रहे हैं इस गीत के साथ, और मुझे यानी वंदना रैना को दीजिए अनुमति।

सुबह सुहानी। कार्यक्रम सुबह सुहानी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्रयाग।

और श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आज सुबह 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होने वाले सजीव फोनिन कार्यक्रम आरोग्यम का विषय रहेगा, खेल के दौरान होने वाली चोटें और उनका उपचार। और इस विषय से संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे अस्थिरोग विशेषज्ञ डॉक्टर साहिल कुमार। आप भी उनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। उसके लिए डायल करना होगा हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01892224391। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस समय आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्रयाग, और कार्यक्रम में अगला लोकगीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जिसे गाया है वर्षा कटोच ने।

कार्यक्रम शुभ प्रयाग आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सुबह के 7:55 हुए हैं, लीजिए प्रस्तुत है देशगान।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं। 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति भवन में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, लोगों के बीच संपर्क और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर राजधानी ताशकंद पहुंचे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने गए हमारे संवाददाता ने बताया कि हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे। उसके बाद वो सीधे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाश पर दोनों देश जोर देंगे। प्रधानमंत्री के प्रयासों से पिछले 10 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार कई गुना बढ़ा है। ऐसे में अब दोनों देश मिलकर आने वाले समय में मौजूदा $1 बिलियन के कारोबार को दोगुना से ज्यादा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ऐसे में इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री इसके बाद यहां शास्त्री स्मारक और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी केंद्र का दौरा भी करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात का प्रसारण करेगा। इसके लिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदायों के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। PM सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन में श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास करता है।
2: एवरी नेशन हैज ए मिशन।
3: प्रत्येक राष्ट्र का एक मिशन होता है, प्रत्येक राष्ट्र की एक नियति होती है। भारत दुनिया को विविधता में एकता का एहसास कराता है। हम एक हैं और विविधता के कारण एक रूपता सुशोभित है, इसलिए विविधता का जश्न मनाया जाना चाहिए।
2: सो डाइवर्सिटी हैज टू बी सेलिब्रेटेड।
0: श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर दलित समुदाय को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का दलित समुदाय

0: का अपमान करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत का सम्मान किया है।
1: हमारी प्रतिबद्धता, हमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से किसी प्रकार को कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन काल में, जन्म से लेकर के उनके देहांत तक, जहां जहां जिन जिन स्थानों पर उनका स्पर्श हुआ, उस स्थान को तीर्थ का दर्जा किसने दिया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। स्कॉलरशिप हो, प्रतिनिधित्व हो, संस्थान हो, हर स्थान पे यदि वाकई में सामाजिक न्याय बढ़ा है तो पिछले 12 वर्षों में बढ़ा है।
0: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दलित समुदाय के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद ये प्रतिक्रिया आई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। काठमांडू को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला मुगलिंग काठमांडू राजमार्ग फिर खोल दिया गया है। इस बीच नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए नई चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रसुआ, नुवाकोट और धादिंग जिलों में नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भोटे कोशी तिब्बत से निकलने वाली तेज बहाव वाली हिमालय से निकली नदी है। हाल ही में आई अचानक बाढ़ से रसुआ जिले में भारी तबाही हुई थी। नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है और नेपाल सरकार को सौंप दी गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों को सफल और सुचारू बनाने के लिए सही सामग्री और तकनीकी क्षमताओं का होना महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भारत 3 उड़ानों के जरिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे अलापुझा में केरल कौमुदी दैनिक के जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद श्री राधाकृष्णन पथनमथिट्टा जिले में अरणमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। शाम को उपराष्ट्रपति तिरुवनंतपुरम में ओणम पर्यटन सप्ताह के समापन समारोह की परेड को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान आपत्तियां और शिकायतें दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर मौजूदा 16 सितंबर की समय सीमा को 4 सप्ताह बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की निर्धारित तारीख 19 अक्टूबर को भी बदलने का अनुरोध किया है। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मंधाना उप कप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीमें हैं। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। नेपाल बाढ़ त्रासदी पर हिंदुस्तान ने लिखा है, भूटेकोशी नदी पर बनी नई झील में बढ़ रहा है पानी। अमर उजाला की सुर्खी है, जिंदगी बचाने का संघर्ष, भारत ने नेपाल के आग्रह पर भेजे 11 विशेषज्ञ। दैनिक भास्कर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को मुख पृष्ठ पर छापते हुए लिखता है, भारत में मुस्लिम नहीं होने चाहिए, ऐसा सोचने वाला हिंदू नहीं। पत्र ने कल जारी होने वाली प्रारूप मतदाता सूची पर सुर्खी दी है, दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 47,70,000 मतदाता बाहर, दावा आपत्ति 30 सितंबर तक। राजस्थान पत्रिका ने फोमो इकोनॉमी, दिखावे में गैर जरूरी चीजों पर भी खर्च करने की आदत को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, जरूरत नहीं, पीछे छूटने के डर से हो रही युवाओं की जेब ढीली। खरीदने से पहले खुद से पूछे 3 सवाल, क्या मुझे इसकी जरूरत है? अगर ये आज उपलब्ध नहीं होता तो क्या मैं इसे फिर भी खरीदना चाहता? क्या मैं इसे अगले 7 दिन के बाद भी खरीदना चाहूंगा? सितारों से आगे देखने के लिए चिली में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, दैनिक जागरण की खबर है। पत्र लिखता है, 260 फीट ऊंचा होगा गुंबद, 128 फीट का मुख्य लेंस, 2030 तक अंतरिक्ष में झांकने लगेगा टेलीस्कोप। नवभारत टाइम्स ने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों में हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट या हाईली स्वीटेंड बेवरेज जैसी चेतावनी को पैकेट के ऊपर लाल चेतावनी वाले स्टिकर के रूप में छापने की खबर को प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने भी इस खबर पर लिखा है, FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अब दर्ज होगी चेतावनी, सावधान, इस पैकेट में नमक, शक्कर, तेल ज्यादा है।
0: धन्यवाद नवीन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2,400 लोग लापता। नेपाल ने भूटेकोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए राहत फतेह अली खान की आवाज़ में फिल्म सुल्तान से। इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीतकार हैं विशाल शेखर।

0: तम्बाकू का किसी भी रूप में सेवन
1: हमेशा रखो याद, चॉकलेट मिठाई या आइसक्रीम खाने के बाद आगे पीछे ऊपर नीचे दिन में दो बार, सुबह और शाम डेली दो मिनट दो बार। दांतों की सफाई बहुत जरूरी है, खूबसूरत चमचमाते दांत और प्यारी सी मुस्कान सबका दिल जीत लेती है। डेली दो बार ब्रश करने से आपके दांत स्वस्थ रहते हैं और मुंह में बीमारी फैलने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे कौन सा प्लांट है?
3: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
2: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
2: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
1: बच्चों हमेशा रखो याद, चॉकलेट मिठाई या आइसक्रीम खाने के बाद आगे पीछे ऊपर नीचे दिन में दो बार, सुबह और शाम डेली दो मिनट दो बार। दांतों की सफाई बहुत जरूरी है, खूबसूरत चमचमाते दांत और प्यारी सी मुस्कान सबका दिल जीत लेती है। डेली दो बार ब्रश करने से आपके दांत स्वस्थ रहते हैं और मुंह में बीमारी फैलने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: गाने सुहाने श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। बोल लिखे हैं गरिमा और सिद्धार्थ सिंह ने और संगीतकार हैं विकी प्रसाद। फिल्म का नाम है टॉयलेट, एक प्रेम कथा।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आज सुबह 9 बजे आप सुनेंगे स्वास्थ्य संबंधी सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। और आज कार्यक्रम आरोग्यम में जानकारी का विषय होगा खेल के दौरान होने वाली चोटें और उनका उपचार। और इस विषय के संबंध में हमारे स्टूडियो में उपस्थित होंगे अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साहिल कुमार, जो ये जानकारी हम संग साझा करेंगे। आप भी अगर कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए डायल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01892224391। और हमारा ये कार्यक्रम आरोग्यम आप मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। और लीजिए सुनिए सिंघम फिल्म में श्रेया घोषाल और अजय को, गीतकार स्वानंद किरकिरे और संगीतकार अजय अतुल।

0: तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन जानलेवा है। तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर, हार्ट अटैक, लकवा, गैंग्रीन और अंधापन जैसी अनेक खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं।
1: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और शिक्षण संस्थान के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है। प्रदेश में गुटखा, खैनी और खुली सिगरेट बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
0: प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने में सहयोग दें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: गाने सुहाने, ये कार्यक्रम श्रोताओं आप सुन रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म साथिया से। आवाजें हैं के शान और कुणाल गांजावाला की।

और कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए एश किंग और क्लिंटन सेरेजे को। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बॉडीगार्ड से।

गाने सुहाने श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सुबह के 9 बजे हैं, लीजिए सुनिए स्वास्थ्य संबंधी सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम।

नमस्कार श्रोताओं, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट वंदना रैना और आप सुन रहे हैं स्वास्थ्य संबंधी सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। श्रोताओं, चाहे सुबह सुबह पार्क में दौड़ना हो, दोस्तों के साथ संडे को क्रिकेट मैच का रोमांच हो या फिर जिम में पसीना बहाना, स्पोर्ट्स और फिटनेस हमारी जिंदगी का बेहद खूबसूरत हिस्सा है। लेकिन खेल के इसी मैदान में कभी कभी एक अनचाहा मेहमान भी आ जाता है और वो है इंजरी, यानी कि चोट। कलाई मुरझाना, घुटने में तेज दर्द या फिर अचानक आई मूछ पूरे खेल का मजा किरकिरा कर देती है। तो आज कार्यक्रम आरोग्य में हम बात करेंगे खेलों के दौरान होने वाली चोटों से कैसे बचें और अगर चोट लग जाए तो तुरंत क्या सही उपचार करें। यही सब जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने अस्थि

0: रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साहिल कुमार। डॉक्टर साहिल, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू
0: जी। और सीधे हम मुद्दे की बात करते हैं, और जिस विषय पर आज हम जानकारी हासिल करना चाहते हैं वो है खेलों के दौरान जब हमें चोट लग जाती है
1: जी, जी।
0: तो सबसे पहले प्रश्न हमारा यही रहेगा कि आम तौर पर खेलों के दौरान किस तरह की चोटें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं?
1: तो खेलों में सबसे ज़्यादा चोटें आम तौर पर सबसे ज़्यादा होता है घुटने का
0: जी,
1: जिसमें सबसे ज़्यादा अगर सीरियस हो तो ACL जो होता है हमारा
0: जी,
1: जो हमारे घुटने को आगे जाने से बचाता है। तो जैसे कि क्रिकेट होता है या कोई रनिंग स्पोर्ट्स होते हैं, उसमें कैसा होता है कि एकदम से सडन मुड़ जाना घुटने का, उसकी वजह से ACL टियर, फिर उसमें कुशन होता है मेनिस्कस टियर, जो हम गद्दी बोलते हैं घुटने की, उसका टियर, वो कॉमन है सबसे ज़्यादा अभी
0: जी। और डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे कि जब भी मैदान पर चोट लगती है तो
1: जी जी
0: ऑल ऑफ सडन या अचानक से हम सब क्या करते हैं कि बाम मलना शुरू कर देते हैं या उस जगह की मालिश करना शुरू कर देते हैं
1: जी,
0: तो ये कितना सही है?
1: देखिए, अगर जिस समय पे कोई चोट लगी है, कुछ लगा है, तो उस टाइम पे सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जिस जगह पे चोट लगी है वहाँ पे पैर हमारा मुड़ रहा है, वहाँ पे मूवमेंट प्रॉपर हो रही है
0: जी।
1: उसके बाद फिर हम कर सकते हैं। अगर हमारी मूवमेंट नहीं हो रही है तो कुछ भी ना लगाएं, बस उसको सीधा रखें। बेटर एक प्रोटोकॉल है जो हम राइस प्रोटोकॉल है
0: जी,
1: जिसमें बोलते हैं कि रेस्ट, इमोबिलाइज, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। उसमें कैसा रहता है कि जैसे अगर मान लो किसी जगह पे चोट लग गई है पर आप उसको मोड़ पा रहे हो, तो बेटर है कि आप उसको दोबारा यूज़ ना करें, कंटिन्यू उसके साथ ना खेलें, क्योंकि और ज़्यादा मान लो अगर कुछ स्ट्रेन होता है, लाइक अगर कोई लिगामेंट टियर होता है
0: जी,
1: तो मान लो जैसे कि ग्रेड 1 है 2 है, तो वो उसको हम बचा सकते हैं रेस्ट देके या कुछ भी करके
0: जी,
1: प्रोटोकॉल्स, फिजियोथेरेपी करके
0: जी, जी,
1: बट अगर आप उस पर कंटिन्यू खेलते जाओगे तो स्ट्रेन ग्रेड 1-2 फिर सीधा एकदम ग्रेड 4 तक चले जाता है।
0: जी,
1: तो बेटर है जब भी आपको खेलते टाइम कभी भी कुछ इंजरी होती है तो आप उसको रेस्ट दो, उसके साथ खेलो मत कंटिन्यू। और मान लो अगर आपको इंजरी के टाइम पे थोड़ा बहुत पेन है तो उसको इग्नोर मत करो, रेस्ट लो। और अगर इंजरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन है जिससे आपको घुटना मोड़ना मुश्किल पड़ रहा है तो आप उस टाइम पे इमिडिएटली उसको इमोबिलाइज करो
0: जी,
1: कोई भी किसी भी चीज़ से, उस पर थोड़ा बर्फ़ लगाओ, बाम नहीं लगाना है, गर्म नहीं लगाना है, सिर्फ बर्फ़ लगानी है ताकि वो सूजन कम हो, और इमिडिएटली डॉक्टर्स के पास दिखा दो, एक्सरे कराओ। उसके बाद कुछ दिन बाद अगर सूजन कम हो जाए तो फिर एग्जामिनेशन के बाद फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन अगर लगता है कि कुछ लिगामेंट टियर है या कुछ है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैसा होता है कि अगर हम यंग एज में इग्नोर कर देते हैं तो हमारे लिगामेंट्स है जो हमारे घुटनों को, घुटनों का एक मैकेनिज्म होता है
0: जी,
1: मैकेनिक्स होते हैं उसकी, जो जिसको बचा के रखता हो, तो अगर वो ख़राब हो जाएगा तो कैसा है कि जैसे गाड़ी के टायर की अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है
0: जी,
1: वैसे ही हमारे घुटने के पिलर्स होते हैं, लिगामेंट्स हैं, उनकी अलाइनमेंट ख़राब होगी तो वैसे ही जैसे टायर के अलाइनमेंट ख़राब होती है टायर घिस जाते हैं, वैसे ही घुटना घिसना शुरू हो जाएगा। तो बार बार आगे पीछे घिसता है तो हड्डी पर हड्डी घिसती है, दर्द और होता है, और फर्दर इन फर्दर 10 से 15 साल में वो रिप्लेसमेंट में आ जाता है
0: जी,
1: या कुछ तो और ज्यादा तकलीफ हो जाती है।
0: तो डॉक्टर साहब, आपके कहने का अर्थ ये हुआ कि खुद के डॉक्टर खुद ना बने
1: जी, जी।
0: अगर कोई चोट लग जाती है
1: तो एक्सपर्ट को दिखाएं
0: जी,
1: जो उस फील्ड में स्पेशलिस्ट है
0: जी,
1: खासकर स्पोर्ट्स इंजरी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है,
0: बिल्कुल
1: इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे भी स्पोर्ट्स आजकल बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं,
0: बिल्कुल।
1: तो बेटर है कि आप एक स्पोर्ट्स सर्जन को दिखाएं
0: जी,
1: और किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करे, उसमें देखे कि कुछ लिगामेंट टियर है या क्या है, अगर आपको रेस्ट देना तो उसके अकॉर्डिंग वो रेस्ट दें, या कुछ ट्रीटमेंट है, इन्वेस्टिगेशंस है, फिजियोथेरेपी है या सर्जरी है, तो टाइम से हो जाए तो अच्छा रहता है
0: जी। और डॉक्टर साहब, अभी आपने बातों बातों में ये कहा कि एक राइस प्रोटोकॉल, आपने
1: जी,
0: ये वर्ड यूज़ किया,
1: यस।
0: तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए हमारे सुनने वालों को और हमें भी कि ये होता क्या है।
1: यस, राइस प्रोटोकॉल बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि लाइक कॉमन लोगों में भी ना अगर ये अगर नॉलेज हो तो बहुत कुछ चीज़ें इजी हो सकती है। लाइक कोई आदमी है चलते फिरते गिर रहा है, या कोई स्पोर्ट्स के टाइम में आपके घर में ही कोई गिर जाए
0: जी,
1: तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, तो एक ऑर्थोपेडिक्स में बोलते हैं राइस प्रोटोकॉल। तो राइस प्रोटोकॉल RICE, इसका फुल फॉर्म होता है रेस्ट, इमोबिलाइज, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। रेस्ट मीन्स कि अगर कहीं पर कुछ लगा है तो चलो मत, कुछ मत करो, रेस्ट लो उसको। आई फॉर आइस, आइस मतलब कि बर्फ़ लगाओ वहाँ पे, तो जब भी कोई घुटने में दर्द हुई है या कुछ हुआ है तो उस टाइम पे वहाँ पे बर्फ़ लगाओ ताकि उस

0: कम हो और दर्द भी उससे कम होता है। एंड सी कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन पुराने टाइम का है, अभी तो अवॉइड ही करते हैं। कंप्रेशन में कैसा होता है कि अगर सूजन है वहाँ पे तो हम क्रैप बैंडेज बोलते हैं, जो गर्म
1: जी
0: पट्टी होती
1: जी
0: है
1: गर्म
0: कॉमन लैंग्वेज
1: पट्टी
0: में,
1: बिल्कुल
0: तो उसको बांधने को। तो अगर जब एक्यूट इंजरी है, जैसे अभी की अभी लगी है आपको, सूजन है बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम पे अवॉइड करना है थोड़ा।
1: जी
0: उसके लास्ट में आता है ई फॉर एलिवेशन। एलिवेशन मतलब कि अपने शरीर के जो हमारा दिल का हिस्सा है
1: जी
0: उससे ऊंचा करके रखें।
1: जी
0: जैसे अगर आपके पैर में चोट लगी है, सूजन है घुटने में है, तो सोते टाइम बेड के बेड में पैर के नीचे दो तकिए रखिए, पैर को
1: जी
0: ऊंचा
1: जी
0: रखिए ताकि
1: जी
0: दिल की धड़कन से ऊपर रहे।
1: जी
0: तो मतलब कि उसमें फिर जो सूजन आई है, खून इकट्ठा हुआ है, वो वापस चला जाए, तो
1: जी
0: सूजन जल्दी उतरती है। तो ये है राइस प्रोटोकॉल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, लाइक कॉमन लोगों
1: जी
0: की लाइफ
1: चोट
0: में भी
1: लगने के
0: चोट
1: दौरान
0: लग जाए तो उस
1: जी
0: टाइम पे
1: जी
0: ये
1: जी
0: राइस प्रोटोकॉल सबको आना चाहिए, ये बेसिक है।
1: जी बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और एक श्रोता जो हैं वो लाइन पर हैं, बात कर लेते हैं उनसे।
0: जी,
1: हेलो
0: हाँ जी, योगेश जांगड़े बोल रहे हैं,
1: जी, योगेश
0: छत्तीसगढ़
1: जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: छत्तीसगढ़ से।
1: जी
0: जैसे
1: जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं, कौन सी जानकारी हासिल करना चाहते हैं आप?
0: हम कोई भी खेल खेल रहे हैं, क्रिकेट,
1: जी जी जी
0: कबड्डी वगैरह, तो एक प्रारंभिक क्या चोट के लिए कुछ अपने पास किट वगैरह रख सकते हैं? देखिए, प्रारंभिक कुछ किट इसके लिए कुछ वैसा कुछ होता नहीं है। स्पोर्ट्स इंजरी में ये है कि किट नहीं रखते, आप प्रिकॉशंस ले सकते हो।
1: जी
0: किट में ऐसा है कि लाइक जैसे आपके उसमें नी बैंडेज रखो,
1: जी जी
0: एंकल बैंडेज रखो। अगर आप जैसा ऐसी स्पोर्ट्स में हो, जैसे मान लो कबड्डी खेलते हो, तो कबड्डी में नी ट्विस्टिंग का बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो आपने देखा होगा जो प्लेयर्स होते हैं वो नी कैप डाल के रखते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा सपोर्ट देता हो उसको। तो
1: जी
0: जो नी घुटना मुड़ने से तकलीफ आती है तो उसमें थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। तो इसमें फर्स्ट एड नहीं रख सकते क्योंकि इसमें सिर्फ प्रिकॉशन ही ले सकते हैं। फर्स्ट एड ऐसा होता है कि लाइक कोई कट जाए, कुछ हो जाए, तो डिटॉल, बैंडेज, ये सब हो सकता है। पर स्पोर्ट्स इंजरी में ऐसा होता है कि लाइक हमें प्रिकॉशंस रखना है। फर्स्ट एड इसमें कुछ वो नहीं है। तो प्रिकॉशंस में ये आता है कि आप अगर कुछ, जैसे कि ट्विस्टिंग इंजरी है या कुछ ऐसा हो सकता है, तो उसमें नी कैप डाल के रखो, एंकल बाइंडर होते हैं वो डाल के रखो। फिर जैसे जिम में जा रहे हो तो उसमें रिस्ट में इंजरी हो सकती है तो रिस्ट बाइंडर डाल के रखो, तो सपोर्ट होते हैं। तो हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, इसमें कुछ फर्स्ट एड का वो नहीं है।
1: जी, और कुछ पूछेंगे जांगड़े जी?
0: जी, धन्यवाद,
1: धन्यवाद।
0: थैंक यू, थैंक यू।
1: और डॉक्टर साहब, इसका अर्थ यही हुआ कि हम सावधानी बरत सकते
0: सावधानी बहुत
1: हैं।
0: ज़रूरी है।
1: जी, और एक और श्रोता जो हैं वो लाइन पर हैं। हेलो हेलो
2: हेलो, नमस्कार
1: जी, नमस्कार जी।
2: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई से। जी,
1: जी राकेश जी, क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब सामने बैठे हुए हैं स्टूडियो में।
2: डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर जैसे कि खेलते खेलते चोट लगती है,
0: जी जी जी
2: अगर खास कर जो है नाक में खून आता है
0: हाँ
2: तो,
0: हाँ
2: या आंख में चोट लगती है, तो इस समय क्या करना चाहिए?
0: अगर आपके खेलते खेलते नाक में खून निकलता है या कुछ ऐसा लगता है, पर उस टाइम पे हमें देखना चाहिए कि हम हमारे को चक्कर आ रहे हैं, कुछ उल्टी आ रही है। तो वैसा वैसा अगर सिम्टम है तो हमारे को डॉक्टर्स के पास जाना है, सीटी करवाना है, ताकि उससे पता चले कि हमारे हेड इंजरी ना हो कुछ, क्योंकि फेस की इंजरी बहुत सीरियस होती है। तो उसमें हमें देखना है, सिर्फ ब्लीडिंग है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, फिर भी डॉक्टर के पास जाना है, एक बार एग्जामिनेशन करना है कि नाक के हिस्से में कॉमनली ऐसे बोलते हैं कि वहाँ पे खून की नसें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे ब्लीडिंग कॉमनली हो जाता है। पर अगर ऐसा है कि ब्लीडिंग के साथ भी चक्कर आ जाए, या ऐसा अनकॉन्शियस हो जाए कि कुछ पता ही नहीं चला थोड़ी देर के लिए, या उल्टियाँ आ जाए, तो इमिडिएटली डॉक्टर्स के पास जाएँ, सीटी करवाएँ, देखें कि कुछ अंदर हेमरेज या कुछ है नहीं।
1: जी, और कुछ पूछना है आपको?
2: जैसे कि कई बार खेलते आंख में भी चोट लग सकती है,
0: जी जी जी
2: उसके लिए क्या? जी
0: तो आँख में अगर चोट लगती है तो हमारे को कॉमनली पता चल जाता है कि किस लेवल की चोट है। लगने के बाद आपको दिख रहा है सब ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा धुंधला धुंधला हो रहा है, तो आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। जी,
2: जी धन्यवाद
1: जी,
0: थैंक
1: कार्यक्रम
0: यू,
1: में कॉल
0: थैंक यू।
1: करने के लिए आपका भी धन्यवाद। और डॉक्टर साहिल, अभी आप जब बात बता रहे थे तो आपने बात की बर्फ़ की सिकाई की,
0: जी
1: तो कहीं कहीं हम देखते हैं कि लोगों में इस बात का थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि कब बर्फ़ की
0: जी
1: सिकाई करनी
0: जी
1: चाहिए, कब गर्म सिकाई करनी चाहिए, तो इस बारे में आप क्या बताएंगे?
0: तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत लोगों में ऐसा कंफ्यूजन होता है कि बर्फ कब लगाएं
1: जी
0: और गरम सेकाई कब
1: जी,
0: करें
1: जी।
0: तो बर्फ तब लगानी है जहां पे

0: सूजन हो, जैसे कोई इंजरी हो गई है
1: जी,
0: मतलब मान लो अभी आपको इंजरी हुई है तो सूजन आ गई आपके, तो वहाँ पे गर्म सेकाई नहीं करनी है, वहाँ पे बर्फ़ लगानी
1: बर्फ
0: है,
1: की सिकाई जी,
0: ताकि एक मैकेनिज़्म होता है जैसे खून की नसें होती हैं जब उनको गर्म माहौल मिलता है तो फूलती हैं,
1: जी
0: तो मतलब ब्लड सप्लाई ज़्यादा बढ़ती है, तो जहाँ पे सूजन आप उधर गर्म लगाओगे, गर्म सेकाई करोगे तो सूजन बढ़ेगी उसमें, बट
1: जी
0: जब आप बर्फ़ लगाते हो तो बर्फ़ में कैसा है कि उससे जो नसें हैं वो सिकुड़ जाती हैं, तो मतलब कि वहाँ पर सप्लाई कम होता है तो स्वेलिंग कम होती है, और बर्फ़ तब लगानी है जब एक्यूट इंजरी है। अब गर्म से कब करना है, जब मान लो जैसे आपकी मांसपेशियां जकड़ गई हों, जैसे आजकल कॉमन होता है बैक पेन है,
1: जी
0: तो बैक
1: जी
0: पेन में कैसा है कि हमारी कॉमन होता है कि सबसे ज़्यादा पैरास्पाइनल मसल स्पाज़म बोलते हैं, जिसमें मतलब मांसपेशियां जकड़ जाती है
1: जी
0: हमारी शरीर की हड्डियाँ
1: जी
0: ये सब, तो उसके आजू बाजू जो मांसपेशियाँ रहती हैं वो जकड़ जाती है, तो उसको रिलीज करने के लिए हम बर्फ़ की सेकाई कर नहीं गर्म
1: गरम
0: सेकाई कर
1: गरम
0: सकते
1: सिकाई
0: हैं।
1: करते हैं
0: जी,
1: जी।
0: तो बैक पेन जहाँ पे मांसपेशियाँ जकड़ गई हों, बहुत समय से ऐसा लग रहा है कि जकड़न है
1: जी
0: कुछ है, तो वहाँ पे
1: उठते
0: आप
1: बैठते
0: हाँ
1: कोई दिक्कत हो रही
0: जी
1: है,
0: जी
1: दर्द शुरू हो जा रही है, तो गरम
0: जी
1: सिकाई कर
0: गरम सेकाई
1: लीजिए
0: करनी है।
1: जी। और डॉक्टर साहिल, एक और श्रोता आपसे जानकारी जी, उनसे संपर्क हमारा कट गया है। और डॉक्टर साहब, एक बात और है कि क्या उम्र का चोटों से कोई संबंध है
0: जी,
1: जी, इस बारे में कुछ
0: बहुत
1: बताइए
0: इम्पोर्टेंट है
1: जी।
0: उम्र का। कैसा है कि जैसे जो यंग है उनमें चोटें ऐसी आएंगी जो लिगामेंट से लेके रिलेटेड होंगी, हड्डियों में फ्रैक्चर नहीं होता है उसमें, सिर्फ मोस्टली होता है कि लिगामेंट कुछ टियर हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम के जो स्पोर्ट्स है आजकल वो खेलते हैं जो, तो उनमें लिगामेंट इंजरी वगैरह कॉमन होती है एंड फ्रैक्चर वगैरह बहुत रेयर आता है उनमें सब में।
1: जी
0: बट जो ओल्ड एज होते हैं उनमें होता है कि जैसे हमारे वेजिटेरियन डाइट है, तो हमारे में वेजिटेरियन डाइट में कैल्शियम D3 ये सब नॉन वेजिटेरियन डाइट से आता है,
1: जी
0: तो जो वेजिटेरियन डाइट है जिनके पास और उनकी उम्र ज़्यादा है एंड खासकर जो फीमेल्स हैं जो औरतें हैं
1: जी
0: उनमें हड्डियाँ कमज़ोर रहती हैं, तो मान लो जैसे अगर ओल्ड एज में कुछ इंजरी हो जाए तो उनमें फ्रैक्चर कॉमन होगा, लिगामेंट इंजरी नहीं आएगी,
1: जी
0: फ्रैक्चर बहुत कॉमन होगा, बट उनका ऐसा होता है कि लाइक उस एज में कि हाई वॉल्यूम कुछ वो एक्टिविटी भी नहीं होती है, वो नॉर्मल होता है कि घर में चलते चलते स्लिप हो गए, गिर के
1: जी
0: फ्रैक्चर हो गया, तो उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल हमारे को वो कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन B12 हमारे को एक उम्र के बाद कंटिन्यू लेना, साल में 3 महीना या
1: जी
0: कुछ
1: जी
0: ज़रूरी
1: डॉक्टर
0: है।
1: साहब इस बारे में बात करेंगे, पहले एक श्रोता है
0: जी
1: लाइन पर।
0: जी
1: हेलो
2: हेलो, नमस्ते मैडम जी, मैं
1: जी, नमस्कार, अपना नाम बता दीजिए
2: तानिया बोल रही हूँ जम्मू से।
1: जी। तानिया जी, क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से?
2: मैडम जी, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ ना, तो सिर में चक्कर आ जाता है,
0: जी, ये
2: हाँ
0: हमेशा
2: सर,
0: सिर्फ सुबह उठने के बाद ही होता है,
2: हाँ सर,
0: सिर्फ सुबह उठने के बाद होता है, आप जब काम कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो उसमें उसके बाद कुछ नहीं होता है।
2: उसके बाद कुछ नहीं होता, बस जब सुबह सुबह उठती हूँ ना, तो सिर में चक्कर आ जाता है मेरे, बहुत बुरी हालत हो जाती है।
0: जी, तो आपको ज़रूरी है कि आप कुछ कुछ आपके जो खून के टेस्ट होते हैं वो करवा लें, जैसे
2: हाँ,
0: कि
2: करवाए थे, एक बार करवाए थे सर, तो खून बहुत ठीक ठाक आया था,
0: ओके,
2: हाँ सर,
0: तो उसमें कैसा है कि लाइक दूसरे भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो
2: हाँ सर,
0: हमारे न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं या जो फिजिशियंस होते हैं उसमें उनका एक्सपर्टीज़ होता है, तो आपको बेटर बता सकते हैं।
1: जी। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अस्थि रोग विशेषज्ञ, और अगर आपको जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि चक्कर रेगुलर आ रहे हैं, तो आप न्यूरोसर्जन को भी दिखा सकते हैं,
0: न्यूरोलॉजिस्ट या फिजिशियंस को
1: हाँ
0: दिखा
1: किसी,
0: सकते हैं आप,
1: जी,
0: आपकी उम्र के अकॉर्डिंग।
1: जी। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, आप खान पान के बारे में बता रहे थे कि विटामिन डी,
0: जी,
1: कैल्शियम होना चाहिए, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप
0: तो इसका ऐसा है कि लाइक हमारे में कॉमन है, हमारे
1: जी?
0: जो इंडियन जो सोसाइटीज़ हैं
1: जी
0: वो मैक्सिमम सब वेजिटेरियन हैं,
1: हाँ जी
0: तो जो कैल्शियम एंड D3 है जो हड्डियों को मजबूत करता है
1: जी
0: वो आता है नॉन वेज सोर्सेज से, जैसे अंडे से, मांस से,
1: जी जी
0: मछली से, इनमें ज़्यादा होता है, तो हमारी वेजिटेरियन डाइट में बहुत कम है।
1: तो ऐसे में वो उनको क्या करना चाहिए, जो लोग शाकाहारी हैं और नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो वो
0: उनके लिए कैल्शियम, विटामिन D3 और B12 के सप्लीमेंट्स
1: जी
0: एक एक इंटरवल के बाद बहुत ज़रूरी है,
1: जी
0: ताकि उनका भी वो बैलेंस बना रहे,
1: और सबसे ज़रूरी बात है कि वो सप्लीमेंट्स खुद से ना लें, डॉक्टर को
0: डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बाद लें।
1: जी।
0: आजकल बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है इस सब में,
1: जी
0: और भी कुछ इंजेक्शंस हैं कि बहुत ज़्यादा तकलीफ है
1: जी
0: तो इंजेक्शंस आ गए हैं कि उससे ठीक हो जाए।
1: जी वो बात वही है कि डॉक्टर को ज़रूर
0: जी।
1: कंसल्ट

0: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में साझा करेंगे अपने विचार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता आज लोक भवन में प्रदेश उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों व एक अतिरिक्त न्यायाधीश को दिलाएंगे शपथ। जनजातीय जिला किन्नौर में पशुपालन को बढ़ावा देने में किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा ग्रामीणों के लिए साबित हो रही मददगार। और मौसम विभाग के अनुसार कल से मॉनसून के फिर से सक्रिय होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 137वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। केंद्र सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता आज लोकभवन में प्रदेश उच्च न्यायालय में दो न्यायाधीशों तथा एक अतिरिक्त न्यायाधीश को शपथ दिलाएंगे। चिराग भानु सिंह व भूपेश शर्मा को न्यायाधीश तथा योगेश जसवाल को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह साय 5 बजे आयोजित होगा। जनजातीय जिला किन्नौर में पशुपालन को बढ़ावा देने और किसानों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC सुविधा किन्नौर के ग्रामीणों के लिए मददगार साबित हो रही है। इसके तहत गाय सहित दुधारू पशुओं के पालन पोषण के लिए पशुपालकों को कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल रही है। पशुपालक KCC के लिए अपने नजदीकी बैंक शाखा या पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं, जहां उन्हें वर्तमान नियमों के अनुसार ऋण सीमा, ब्याज दर, पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी जाएगी। विस्तृत ब्यूरो के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
1: गाय पालन के लिए एक गाय पर 1,12,859 रुपए तक KCC ऋण की सुविधा निर्धारित हो सकती है। इस हिसाब से पात्र पशुपालक जरूरत और बैंक के नियमों के अनुसार लगभग 2,00,000 रुपए तक की KCC सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि

0: वास्तविक ऋण सीमा, पशुओं की संख्या, निर्धारित दर, किसान की जरूरत और बैंक के आंकलन के आधार पर तय होगी। केसीसी से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल गाय के लिए चारा, दाना, पशु चिकित्सा, दवाइयाँ और रखरखाव से जुड़े जरूरी खर्चों पर पूरा करने में किया जा सकता है। यदि किसान निर्धारित नियमों के अनुसार समय पर ऋण का भुगतान करता है तो उसे अतिरिक्त ब्याज राहत यानी समय पर भुगतान प्रोत्साहन का लाभ मिल सकता है। इससे किसान पर ऋण की ब्याज भार कम हो सकता है। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
1: प्रदेश के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना का दूसरा चरण 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा और अन्य सामाजिक पहलुओं से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। सिरमौर जिले में भी नौरादार क्षेत्र के बर्फबारी प्रभावित 10 गांवों में इस दौरान जनगणना की जाएगी। उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने सभी लोगों से जनगणना कार्य में सहयोग की अपील की है।
2: जिला सिरमौर में जो हमारा स्नोबाउंड एरिया है वो तहसील नौराधार में पड़ता है और इसमें हमारे 10 गांव हैं। यहाँ पे जो हमारा पॉपुलेशन इनॉग्रेशन है, जो फेज 2 है सेंसस का, ये 1 सितंबर से 20 सितंबर तक चलेगा। अब सेकेंड फेज में इन 10 गांव में हमारे जो इनॉग्रेटर्स हैं वो लोग जाएंगे, घर घर विजिट करेंगे और जो बाकी का जो हमारा सेंसस का जो डेटा हमें लेना है पॉपुलेशन इनॉग्रेशन का, उसको कलेक्ट किया जाएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है इसी के बदौलत आगे जो हमारी पॉलिसीज बननी है।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
3: बच्चों हमेशा रखो याद, चॉकलेट, मिठाई या आइसक्रीम खाने के बाद आगे पीछे ऊपर नीचे दिन में 2 बार, सुबह और शाम डेली 2 मिनट 2 बार। दांतों की सफाई बहुत जरूरी है। खूबसूरत चमचमाते दांत और प्यारी सी मुस्कान सबका दिल जीत लेती है। डेली 2 बार ब्रश करने से आपके दांत स्वस्थ रहते हैं और मुंह में बीमारी फैलने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। कुल्लू जिला में बच्चों के संरक्षण व कल्याण के लिए गठित स्पॉन्सरशिप व फोस्टर केयर अनुमोदन समिति की बैठक एडीएम सुरजीत सिंह राठौर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में समिति के समक्ष विभिन्न विकास खंडों से प्राप्त 61 नए मामलों को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त बैठक में पहले से चल रहे 1097 मामलों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा भी की गई ताकि पात्र बच्चों को मिल रही वित्तीय सहायता निरंतर जारी रह सके। बैठक में बताया गया कि स्पॉन्सरशिप योजना के तहत ऐसे बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जो किसी संकट की स्थिति के कारण अपने जैविक माता पिता, एकल माता पिता अथवा विस्तारित परिवार जैसे नाना नानी या दादा दादी के साथ रह रहे हैं। पात्र बच्चों को ₹4,000 प्रतिमाह की सहायता 18 वर्ष की आयु तक प्रदान की जाती है। स्पीति के मुद गांव के फरा पुल के निर्माण में हो रही देरी को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा स्पीति मंडल ने प्रदेश सरकार और प्रशासन के प्रति रोष जताया है। विस्तृत ब्यौरा हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता से।
4: भाजयुमो मंडल अध्यक्ष दोरजे नामग्याल का कहना है कि वर्षों पुरानी मांग पर समय रहते कार्रवाई न होने से ग्रामीणों को जोखिम उठाना पड़ रहा है। हाल ही में सामने आए एक वीडियो का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण उभनती नदी को ट्रैक्टर के जरिए पार करते नजर आए। नदी का बहाव तेज होने के कारण ट्रैक्टर भी बहते बहते बचा। ग्रामीणों को मवेशियों के लिए घास और जरूरी सामान के लिए इस जोखिम भरे रास्ते का सहारा लेना पड़ रहा है। दोरजे नामग्याल ने प्रदेश सरकार से मुद फरा पुल निर्माण को तत्काल स्वीकृति देने और कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की मांग की है। आकाशवाणी के लिए स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार कल से मॉनसून फिर सक्रिय हो सकता है। सोलन जिला के परवाणु में कल शाम भारी बारिश हुई जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। बारिश से परवाणु के सेक्टर 2 टकसाल रेलवे फाटक के पास तथा आसपास के उद्योगों में पानी घुस गया है। मूसलाधार बारिश के कारण कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर शिमला से कालका जा रही 4 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। प्रदेश में भूस्खलन से अभी तक 54 सड़कें बाधित हैं जबकि वर्षा से बाधित हुई सभी पेयजल योजनाओं को ठीक कर दिया गया है। इधर कड़छम वांगतू जल विद्युत परियोजना प्रबंधन ने आम लोगों, स्थानीय लोगों, पर्यटकों और श्रमिकों से अपील की है कि वे सतलुज नदी के किनारों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और इस दौरान नदी के पास ना जाएं। परियोजना प्रबंधन के अनुसार कड़छम बांध में पानी का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है जिसके चलते बांध से कभी भी पानी छोड़ा जा सकता है। प्रबंधन ने बताया कि पानी छोड़े जाने के दौरान लोगों को सतर्क करने के लिए हूटर और सायरन बजाए जाएंगे। परियोजना प्रबंधन ने सभी लोगों से अपील की है कि चेतावनी

मिलने पर नदी और जल धाराओं से तुरंत सुरक्षित दूरी बनाए रखें और प्रशासन तथा परियोजना प्रबंधन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से सुर्खी दी है, सोलन से होगी मुफ्त 300 यूनिट बिजली देने की शुरुआत। दिव्य हिमाचल का शीर्षक है, मछुआरों के खाते में डाले 35 लाख, मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय सहायता जारी। हिमाचल दस्तक के शब्द हैं, बद्दी में बिना पंजीकरण आवंटित भूमि को रद्द करने पर विचार करेगी सरकार। जबकि दैनिक भास्कर का कहना है, देहरा से शुरू होगी प्रदेश की पहली ओजोन पेयजल परियोजना। दैनिक जागरण का शीर्षक है, हिमालय क्षेत्र में परियोजनाओं की सुरक्षा पर पीएमओ सतर्क। पंजाब केसरी की सुर्खी है, 231 करोड़ की संदिग्ध बिलिंग का खुलासा, 41 करोड़ 61 लाख की आईजीएसटी आईटीसी जांच के घेरे में। दैनिक भास्कर के मुताबिक, मंडी के चेलंग में भूस्खलन, प्रशासन ने गांव के चार परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट होने को कहा। अमर उजाला की एक अन्य खबर है, स्वाइन फ्लू से बुजुर्ग की मौत, दो और पॉजिटिव। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में साझा करेंगे अपने विचार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता आज लोक भवन में प्रदेश उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों व एक अतिरिक्त न्यायाधीश को दिलाएंगे शपथ। जनजातीय जिला किन्नौर में पशुपालन को बढ़ावा देने, किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा ग्रामीणों के लिए साबित हो रही मददगार। और मौसम विभाग के अनुसार कल से मॉनसून के फिर से सक्रिय होने की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 10:45 पर। नमस्कार।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध है समाज की असली धार।
1: सीखें युवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
1: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। श्रोताओं सुबह के 9 बज चुके हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम आरोग्यम।
4: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
5: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं कार्यक्रम आरोग्य में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज कार्यक्रम आरोग्य में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साहिल कुमार, और उनसे हम बात कर रहे हैं खेलों के दौरान लगने वाली चोटों के बारे में। तो डॉक्टर साहब एक बार फिर से कार्यक्रम आरोग्य में आपका स्वागत है जी, और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं
6: जी।
3: और डॉक्टर साहब कई बार हम खेलते हैं मैदान में या फिर हम सैरी कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं
6: जी।
3: तो एकदम से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है जिसे मसल्स क्रैम्प भी कहा जाता है, तो वो क्यों आती है और उसका उपचार क्या है, इस बारे में बताइए।
6: तो मसल क्रैम्प का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, जैसे हमारे में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं
3: जी।
6: इनकी कमी हो जाए तो उसकी वजह से, और डिहाइड्रेशन हो बहुत ज़्यादा
3: जी,
6: तो उसकी वजह से क्रैम्प्स आते हैं
3: जी।
6: तो जब क्रैम्प आते हैं उस टाइम पे पैसिव स्ट्रेचिंग करनी है, मतलब जहाँ पे क्रैम्प आ रहा है उसको धीरे धीरे स्ट्रेच करना है, उसी एक्टिविटी में नहीं रहना है। जिस एक्टिविटी में क्रैम्प आया उस एक्टिविटी में नहीं रहना है। कई बार ऐसे भी होता है कि जैसे बाइक चलाते चलाते भी क्रैम्प आ जाते हैं, तो वो ऐसा होता है कि हमारे हड्डियाँ जो जोड़ हैं वो मुड़े हुए हैं
3: जी।
6: उस टाइम पे क्रैम्प आ रहे हैं तो हम क्या है, वो बैठे रहते हैं, थोड़ा वो सीधा करते हैं वो, तो उस टाइम पे क्या, रुक के आराम से थोड़ा स्ट्रेच करो उसको
3: जी।
6: फिर आराम दो उसको थोड़ा, जो एक्टिविटी में आ रहा है उसको अवॉइड करो, और आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस प्रॉपर करो, आपका हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। आप डिहाइड्रेटेड होंगे, आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस्ड है, तो आपको क्रैम्प्स आएंगे आएंगे
3: जी। और डॉक्टर साहब आपने बात की कि जैसे मांसपेशियों में ऐंठन, कई बार क्या होता है कि हम जैसे लोकल भाषा में बोलते हैं नस चढ़ गई
6: जी, नस
3: है ना, तो हम क्या करते हैं

0: डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, हम जो हमारे देसी इलाज होते हैं, जो
1: जी
0: देसी लोग हैं उसको ठीक करते हैं, तो हम उनके पास चले जाते हैं।
1: जी
0: तो ये कितना सही है, कितना गलत है, इस बारे में कुछ रोशनी डालिए।
1: देखिए कैसा है कि जो क्रैम्प्स आते हैं कुछ आते हैं, तो हम कहीं पे जाते हैं, अगर जिस टाइम पे क्रैम्प्स आ रहे हैं और वो रेगुलर आ रहे हैं, आपको इतना ज़्यादा तकलीफ़ है कि आपको किसी के पास जाना पड़ रहा है,
0: जी
1: तो मतलब वो एक विषय थोड़ा सीरियस है,
0: जी
1: तो उसको कैसा है कि आप उस टाइम पे कुछ एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, ऑलरेडी आपको क्रैम्प्स हैं,
0: जी
1: आप उस पर और ज़्यादा कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो और ज़्यादा तकलीफ़ होगी,
0: जी
1: क्योंकि हमारी जो मांसपेशियाँ वो जकड़ गई हैं पूरी, मतलब कि उसमें तकलीफ़ है, तो उसको रेस्ट देने की ज़रूरत है, एज़ कम्पेयर कि आप कहीं जा रहे हो उनसे मालिश करवा रहे हो, ये
0: जी
1: कर रहे हो
0: जी
1: वो कर रहे
0: जी
1: हो, वो नहीं करना है,
0: जी
1: आपको सिर्फ सेकाई करनी है गर्म पानी से
0: और अगर बहुत
1: कर।
0: ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो फिर डॉक्टर की सलाह ले
1: जी
0: सकते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: डॉक्टर को दिखा सकते हैं।
1: डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं, फिर डॉक्टर्स आपको एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं,
0: जी जी
1: तो इसमें एक्सपर्ट फिजियो ही होते हैं जो आपको जकड़न ये वो मांसपेशियाँ कहाँ पे हैं,
0: जी
1: तो वो सब फिजियोथेरेपिस्ट बेटर है कि आप
0: जी
1: फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएँ,
0: जी
1: सो वही आपका सोल्यूशन दे सकते हैं।
0: जी और डॉक्टर साहब, मेन बात ये है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि कब कहाँ कौन सी एक्सरसाइज करनी है, किस बॉडी पार्ट
1: जी
0: के लिए कौन
1: सबसे
0: सी।
1: बेस्ट आपके पास सोल्यूशन फिजियोथेरेपी ही है, और
0: जी
1: फिजियोथेरेपिस्ट ही आपको बता सकते हैं।
0: जी हेलो,
2: हेलो वंदना जी, नमस्कार।
0: नमस्कार राणा जी, प्रश्न पूछे डॉक्टर साहब से।
2: डॉक्टर नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: डॉक्टर मेरा प्रश्न कुछ लंबा है, मैं
1: कोई
2: ये
1: बात
2: पूछना चाहता हूँ। देखिए,
1: जी।
2: जवानी में जब बचपन में हमको हमारे शरीर में इतनी स्टेमिना होता है या इतनी फुर्ती होती है कि
1: जी।
2: हम कोई खेल खेलते हैं, या अचानक इधर उधर भागने से, या कहीं भी
1: जी
2: अचानक भी कहीं कुछ चोट लग जाती है शरीर में, जैसे हम कुश्ती, कबड्डी
1: जी जी
2: या क्रिकेट, हॉकी, कोई भी एनीवन खेल खेलते हैं, तो उसमें शरीर में किसी भी भाग में कोई चोट लग जाती है, तो उस समय हमको इतना वो एहसास नहीं होता।
1: जी जी
2: लेकिन जैसे जैसे जीवन की आयु बढ़ती है, तो
1: जी
2: उसके बाद में उसका वो चोट का जो उभार आने लगता है, तो कई दफा हमारे चिकित्सक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो
1: जी
2: वही पूछते हैं कि ये इसकी चोट कब लगी थी, तो हमको कई दफा याद नहीं रहता है,
1: जी
2: तो इसके लिए हमको क्या उपचार करना चाहिए।
1: जी आपका सबसे जेन्युइन क्वेश्चन था, जो आजकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही आपने जो क्वेश्चन पूछा है। तो ऐसा होता है कि जैसे यंग एज में कैसा है कि लाइक हमारे में एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा, हम एक्टिव रहते हैं बहुत ज़्यादा, हम कबड्डी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कैसा होता है कि आजकल भी बच्चे भी जैसे मेरे पास आते हैं कोई, तो बोलते हैं हम क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसे कोई एकेडमी के बच्चे आ रहे हैं मेरे पास, तो उनको कैसा होता है कि जुनून होता है कि उनको खेलना ही खेलना है, एनर्जी भी वैसी ही है, तो कैसा होता है कि उनको नी इंजरी होगी, कुछ हो गया, तो उसमें कैसा है कि कॉमन होता है कि उनका लिगामेंट टियर हुआ है, मेनिस्कस टियर हुआ है, तो वो उसके साथ उनमें एनर्जी होती है, तो खेलते जाते हैं कंटिन्यू, तो कैसा होता है कि लाइक वो जो इंजरी होती है विद टाइम वो कंटिन्यू पेन नहीं रहता उसमें, तो धीरे धीरे वो थोड़ा दवाई लेंगे, 7-8 दिन दवाई लेंगे, दर्द कम हो गया, फिर थोड़ा हुआ, फिर से थोड़ी दवाई ले ली, फिर कम हो गया, तो वैसे वैसे वो इग्नोर करते जाते इग्नोर करते जाते, फिर ऐसे कैसा होता है, मैंने पहले भी बताया था कि जैसे गाड़ी का एक बार अलाइनमेंट ख़राब हो गया तो टायर जल्दी घिस जाते हैं, तो वैसे ही होता है, आपका लिगामेंट टियर हुआ, जवानी में आपने ध्यान दिया नहीं, तो वो फिर बार बार आगे पीछे जो पिलर हैं हमारे, जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसको संभाल के रखा हमारे जॉइंट्स वगैरह ने, एंकल जॉइंट है, नी जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, अगर उसमें से एक भी पिलर हिल गया आपका बेस ख़त्म, आपका अलाइनमेंट गया, टायर जल्दी घिसेंगे गाड़ी का अलाइनमेंट ख़राब हुआ तो। जी तो बेटर है कि दर्द है तो दिखा दो, एमआरआई कराओ, एमआरआई में देखो कि मेनिस्कस है, हमारी गद्दी फटी है या लिगामेंट फटा है, तो गद्दी का बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे आजकल जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं उनमें आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा होता है घुटनों का, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, तो कैसा उनका मोस्टली सबका अलाइनमेंट ख़राब होता है कि पैर थोड़ा बाहर की तरफ चले होते हैं, अंदर की तरफ ज़्यादा प्रेशर आता है, तो सबसे ज़्यादा दर्द भी अंदर की साइड ही होती है, तो वो इग्नोर होते हैं कुछ कुछ, तो टाइम से उसका अलाइनमेंट ठीक होता जो कर लिया होता प्रिकॉशन, तो इतना तकलीफ़ नहीं आती है।
0: ठीक है
1: थैंक
0: डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और
1: यू थैंक
0: कार्यक्रम में आप और भी कई जानकारियां अच्छी अच्छी देंगे, बहुत
1: यू थैंक यू
0: बहुत
1: थैंक
0: धन्यवाद।
1: यू
0: जी धन्यवाद राणा जी आपका भी। और डॉक्टर साहब, इसका मतलब यही हुआ कि जब भी हमें चोट लगती है तो
1: जी।
0: हमें उसे इग्नोर नहीं करना
1: इग्नोर
0: चाहिए,
1: नहीं करना, और खासकर पेन किलर बिल्कुल नहीं लेने हैं
0: पेन
1: खुद
0: किलर
1: से
0: नहीं लेने, और
1: जी,
0: डॉक्टर जो भी
1: डॉक्टर्स
0: आपको
1: को
0: सलाह
1: दिखाना
0: दे
1: है
0: रहे हैं उसको
1: उनको,
0: मानना भी
1: जी
0: है ना।
1: उनको एग्जामिनेशन करने दो, उनको देखने दो कि आपके जॉइंट स्टेबल हैं, कुछ तकलीफ़ है, आपको अगर MRI की जरूरत है तो करवाओ, नहीं तो आगे जाके तकलीफ पड़ सकती है आपको।
0: पड़ सकती है। और डॉक्टर साहब अभी आप

0: कर रहे थे कि खुद को हाइड्रेट रखना बहुत
1: जी
0: ज़रूरी
1: बहुत
0: होता है जब
1: ज़रूरी
0: भी
1: है
0: हम कोई खेल खेलते हैं या फिर
1: जी
0: हम जिम में एक्सरसाइज
1: जी
0: करते हैं। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए क्या हमें खेलने के दौरान जो है वो बीच बीच में पानी पीना चाहिए,
1: जी जी
0: या फिर जो स्पोर्ट्स ड्रिंक कई बार हम पीते हैं या फिर
1: जी
0: ORS हम लेते हैं तो वो
1: जी
0: सब कितना फ़ायदेमंद है, और पानी कब कब पीना चाहिए, इस बारे में कुछ रोशनी डालिए।
1: जो दूसरी ड्रिंक्स हैं, जैसे आजकल एनर्जी ड्रिंक्स चल रही
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: स्पोर्ट्स
0: बिल्कुल
1: में बहुत यूज़
0: जी,
1: करते
0: और
1: हैं
0: बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग
1: उनमें,
0: भी
1: जी
0: हैं ये।
1: जी उसमें कैसा है कि लाइक वो उसका बेनिफिट ये है कि उसमें सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं,
0: जी
1: जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी जिंक है,
0: जी
1: जिन जिनसे क्रैम्प्स आते हैं, तो वो एनर्जी ड्रिंक्स में वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं
0: जी
1: और उसमें साथ में कैफीनेटेड है,
0: अच्छा
1: तो वो
0: ठीक है, तो
1: एनर्जी
0: आप
1: ड्रिंक का मतलब
0: रेकमेंड नहीं करेंगे स्पोर्ट्स ड्रिंक को।
1: कुछ हद तक ले सकते हैं, लाइक
0: जी
1: जैसे अगर आप में ऐसा है कि थोड़ा लग रहा है आपको कि यू आर नॉट फीलिंग वेल,
0: जी
1: थोड़ा ऐसा है कि डिहाइड्रेटेड हो, तो
0: जी
1: आप ले सकते हो, क्योंकि आजकल रिकमेंडेड है कि जैसा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होना चाहिए,
0: जी
1: बट अगर आप कुछ स्पोर्ट्स कर रहे हो, कुछ आपका डाइटरी हैबिट ठीक है, सब कुछ ठीक है स्पोर्ट्स में, तो हाइड्रेशन इज सफिशियंट, आपको ऊपर से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कैसा है, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह में थोड़ा कैफीन एंड अदर बहुत सारा इश्यूज होता है थोड़ा।
0: जी और डॉक्टर साहब कई बार क्या होता है ना, जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, वही
1: जी
0: आपने बात की कि उनमें जोश बहुत होता है, जुनून बहुत होता है, तो थोड़ा सा अगर उनको चोट लगी, थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा मेडिसिन ली, वापस से मैदान में उतर
1: जी
0: जाते हैं, है ना, फिर वापस से प्रॉब्लम जब दोबारा से शुरू होती है, फिर वही रेस्ट किया, मेडिसिन ली, फिर वो एक तरह से वो चलता रहता है सर्कल उनका,
1: जी
0: तो ये कितना हानिकारक होता है लेटर ऑन स्टेजेस में।
1: लेटर ऑन स्टेजेस में, जैसे अब मान लो मैं घुटने का ही बता दूँ, अभी
0: जी
1: आजकल कॉमन है,
0: जी
1: सबको
0: बिल्कुल
1: ही आते हैं घुटने में दर्द है, जो
0: जी
1: कि
0: जी
1: कोई भी है
0: जी
1: घुटने में दर्द है,
0: जी
1: या तो फिर कमर में दर्द होती हो,
0: हाँ जी
1: तो यंग एज में कैसा होता है कि लाइक उनका मान लो डिस्क आया हुआ उस टाइम पे, तो
0: जी
1: उन्होंने दवाई खा के कर दिया आराम से,
0: जी
1: वो दर्द ऐसा होता है कि लाइक कंटिन्यू नहीं रहता है कोई भी दर्द, वो उस टाइम पे एक सिचुएशन होती है फाइब्रोसिस करके बोलते हैं,
0: जी
1: कि जहाँ पे कुछ ख़राब हुआ वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाती है। फाइब्रोसिस मतलब कि जो ख़राब चीज़ को थोड़ा बहुत, जैसे बोलते हैं डेंटिंग पेंटिंग करने के लिए, तो हमारा
0: हाँ
1: शरीर
0: जी जी
1: फाइब्रोसिस कर देता है, तो
0: जी
1: फाइब्रोसिस के बाद वो दर्द ख़त्म हो जाता है,
0: जी
1: लेकिन आपको इन रियल लाइफ लगता है कि तकलीफ़ है, आपका चलने का तरीका थोड़ा बदल जाता है,
0: जी
1: आप थोड़ा लर्च आ जाता है आपके चलने में, जैसा गेट हमारा चाल जो है वो बिगड़ जाती है थोड़ी,
0: जी जी जी
1: तो वो उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए,
0: नहीं करना चाहिए।
1: प्रॉपर आपको सर्जन के पास दिखाना है, अगर लगता है कि ऑपरेटिव है नहीं है, फिजियोथेरेपी करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग ज़रूरी है।
0: जी बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और एक श्रोता लाइन पर हैं, हेलो
2: नमस्ते जी।
0: जी, नमस्ते जी, थोड़ा सा जोर से बोलिए और अपना नाम बता दीजिए।
2: नमस्ते, मेरा नाम स्मृति शर्मा है, मैं त्यारा से बोल रही हूँ।
0: स्मृति जी हाँ जी
2: डॉक्टर जी नमस्ते। सर
1: नमस्ते नमस्ते।
2: मुझे ये पूछना था कि जैसे हमारे सर पे कई बार चोट लगती है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं,
1: जी जी जी
2: मेरा बेटा जो है वो 7-8 महीने का है अभी,
1: जी
2: तो कई बार बच्चे गिर जाते हैं, तो जो हमारे लोकल लोग हैं वो कहते हैं सर दबाना है और उसको दबाइए ताकि वो हो, बट मुझे मतलब मैंने सुना था कि कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं कि नहीं दबाना है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है कि क्या करना चाहिए उस टाइम पे।
1: वो सब बच्चों की उम्र पे डिपेंड करता है कि बच्चे की उम्र क्या है, 12 महीने हैं, 6 महीने हैं, कितना है, तो उसमें कैसे है, सिर की हड्डियाँ होती हैं,
2: हाँ
1: तो
2: जी
1: उनमें एक प्रोसेस होता है, हमारी जैसे हम एक मैच्योर हैं तो हमारी सिर की हड्डियाँ पूरी फ्यूज़ होती है, फ्यूज़न मतलब हड्डियाँ पूरी डेवलप हो चुकी हैं,
2: जी
1: तो उसमें कैसा है कि लाइक वो हड्डियाँ ज़्यादा स्ट्रांग हैं और पूरा मैच्योर हो चुकी हैं, बच्चों की हड्डियाँ होती है वो खुली होती हैं, मतलब उनमें फ्यूज़न नहीं हुआ होता है, तो उसमें है ऐसा होता है कि लाइक सब ओपन है, इतना कुछ वो नहीं है, तो आप उसमें दबाओ ये सब करो तो वो ठीक नहीं रहता है कभी भी, तो बेटर है अगर बच्चे को थोड़ा सा चोट लगी है उतना तो चलता है बच्चों में, क्योंकि लाइक वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, तो उनका एक वो फेस होता है कि लाइक खड़े होंगे गिरेंगे, खड़े होंगे गिरेंगे, वो धीरे धीरे सीखते हैं, पर अगर चोट लगने के बाद ऐसा होता है कि बच्चा काफ़ी टाइम तक रो रहा है, बेहोश हो गया है, उस टाइम पर आपका कंसर्न नहीं है।
2: ओके तो मतलब अगर उसी टाइम पे अगर इमीडिएट एक एक्शन हम लेते हैं कि दबाना है सर या नहीं दबाना है
1: नहीं
2: मुझे, तो
1: दबाना नहीं है कुछ
2: ठीक
1: भी,
2: है, ओके
1: बच्चों
2: सर,
1: की हड्डियाँ
2: थैंक
1: मैच्योर नहीं होती हैं, वो फ्यूज़ नहीं होती, जैसा हमारा पूरा सिर का हड्डियाँ पूरी बनी हैं वैसी नहीं होती उनकी, उनकी अलग अलग अलग अलग छोटी छोटी होती है जो अभी फ्यूज़ होना बाकी होती है,
2: यू।
1: तो
2: ओके
1: उनका हेड बहुत प्रोन होता है कुछ भी इंजरी के लिए, तो वो सब नहीं करना है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा लगा है तो ठीक है, बर्फ़ लगा दो

0: जहाँ पे सूजन है, पर ऐसे लगता है आपको कि बेहोश हो रहा है, रो रहा है कंटिन्यू, तो दिखाना है आपको डॉक्टर के पास, पर सिर दबाना ये सब नहीं करना है कभी भी।
1: थैंक यू सो मच
2: जी, धन्यवाद आपका प्रश्न पूछने के लिए। और डॉक्टर साहब, आपसे यही जानना चाहेंगे कि कई बार खेल के दौरान भी
0: जी
2: सिर में लग जाती है, बॉल से फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट को खेल रहे हैं, या फिर किसी और पार्ट में लग जाती है, तो कब हम उस टाइम तो छोड़ देते हैं कि ठीक है
0: जी
2: लगी है, अपने आप दर्द है, अब थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं कि जिनको देख के हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना
0: जी
2: चाहिए?
0: तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे स्पोर्ट्स इंजरी में होता है तो एक फ्रीक्वेंसी होती है कि हमारे को लगा है कुछ, तो हमारे को पता चलता है कि ठीक है कितना फ्रीक्वेंसी है।
2: जी
0: जैसे मान लो लगा मुझे, पर मुझे पता है कि ये मेरे सिर पे लगा है, अभी मेरे को थोड़ी देर दर्द होगा, ठीक है। पर आपको सिर पे लगा है, उसके बाद आप बेहोश हो रहे हो,
2: जी
0: बेहोश होने के बाद आपको फिर जैसे उल्टियाँ जैसी आ रही हैं कुछ,
2: जी जी
0: तो वो हो सकता है कि इंटरनल ब्लीड है
2: वो
0: कुछ,
2: सीरियस बात
0: तो वो
2: है।
0: सीरियस बात है। तो आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाओ, सीटी स्कैन करवाओ,
2: जी
0: तो पता चले आपका कि कुछ हेमरेज है कुछ है,
2: जी
0: या किसी शरीर में लग रही है आपके, तो वहाँ पे मूवमेंट ही बंद होगी, तो आप डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा वो है, तो आप बर्फ़ लगा सकते हो,
2: जी
0: पर अगर आपको लग रहा है मूवमेंट गई है उसकी, तो आप डॉक्टर को दिखाओ।
2: जी और डॉक्टर साहब, कई बार ना खेलते खेलते आजकल के समय में हम ज़्यादा सुनते हैं, अपने आसपास भी देखते हैं सुनते हैं कि कोहनी में चोट लगी है,
0: जी
2: जिसको
0: जी
2: टेनिस एल्बो आप
0: टेनिस
2: बोलते
0: एल्बो
2: हैं डॉक्टरी टर्म में, तो उस बारे में कुछ बताइए।
0: जी, तो टेनिस एल्बो वो खेलने में तो नहीं है इतना,
2: जी
0: पर जो कुछ लोग होते हैं जिनकी एक्टिविटी ऐसी ज़्यादा है जिसमें हैंड वर्क ज़्यादा है,
2: जी
0: जैसे हाथों की मूवमेंट ज़्यादा है,
2: जी
0: तो हमारे टेनिस एल्बो ऐसा होता है कि कोहनी का जो बाहर की हड्डी है, बाहर की साइड की हड्डी,
2: जी
0: वहाँ पे हमारे हाथ के जो ऊपर की तरफ की जो मांसपेशियाँ होती है वो वहाँ पे अटैच होती हैं।
2: अच्छा जी
0: तो हम जब भी कोई स्क्रूइंग मूवमेंट कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा है जिसमें, जैसे मैकेनिक्स होते हैं उनको पेचकस से घुमाना है कंटिन्यू, तो उनको वो मसल्स का यूज़ होता है, वो मांसपेशियाँ उसकी बहुत यूज़ होती हैं।
2: जी
0: तो ऐसा होता है कि जैसे एक टाइप का इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, वो उस जगह की हड्डी पे इन्फ्लेमेशन है,
2: जी
0: तो वो उसको कैसे कम करना है, उसको आपको फिजियोथेरेपी में जाके अल्ट्रासाउंड टू लोकल पार्ट होता है, जैसे गर्म सेकाई होती है एक टाइप की,
2: जी
0: उससे करना है कि इन्फ्लेमेशन वो कम हो थोड़ी। और उसमें कैसा है कि जैसे कई बार डॉक्टर्स स्टेरॉयड भी देते हैं,
2: जी
0: स्टेरॉयड ऐसा है कि वो सुन कर देता है जो इन्फ्लेमेशन, उसको बंद कर देता है,
2: बंद कर देता
0: तो
2: है।
0: वो कर सकते हैं। पर आजकल कोई रिकमेंड नहीं करता स्टेरॉयड्स वगैरह,
2: जी
0: वो स्टेरॉयड्स इन जनरल वो लोकल स्टेरॉयड होते हैं, वो सिस्टमिक नहीं जाते, शरीर में नहीं जाते हैं,
2: जी
0: सिर्फ उसी पार्ट पे सिर्फ इंजेक्शन होता है, वो
2: जी
0: शरीर में नहीं जाता, उसका कुछ लॉस नहीं है,
2: जी
0: ले सकते हो आप, बहुत ज़्यादा तकलीफ है
2: लेकिन हर चीज़ का एक ही है कि डॉक्टर की सलाह ज़रूर
0: जी
2: लेनी है ना?
0: अंडर ऑब्जर्वेशन
2: जी
0: एंड फिजियोथेरेपी।
2: जी हेलो
3: हेलो, नमस्ते मैम,
2: नमस्कार जी, अपना परिचय दे दीजिए।
3: मैं पूनम बोल रही हूँ कांगड़ा से।
2: जी पूनम जी, डॉक्टर साहब से क्या जानना चाहेंगे आप?
3: नमस्ते सर।
0: नमस्ते
3: सर, मेरे फादर हैं वो, जैसे रात को सोने के टाइम ना उनको टांग में, जैसे वो कहते हैं मेरा, मतलब टांगे मुड़ रही हैं बहुत ज़्यादा
0: क्रैम्प्स आते
3: पीठ
0: हैं
3: के। हाँ जी, तो
0: जी,
3: सर ये किस वजह से होता है और इसके लिए क्या करना
0: उसमें
3: चाहिए?
0: आपको ये देखना पड़ेगा उनको सिर्फ क्रैम्प्स ही आते हैं, ऐसा सुनपन आता है, पैरों में झंझनाहट होती है,
3: नहीं सर, सिर्फ कहते हैं ऐसे नसें खिंच रही हैं और पैर मुड़ रहा है ऐसे करके, मतलब टांगे।
0: तो उनको आपको ये भी पूछना पड़ेगा कि वो जब चलते टाइम उनको चलते चलते ऐसा होता है कि बैठ जाए।

संदेश कुमार की आवाज में ये लोकगीत आपने सुना। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ और इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। आइए अब कार्यक्रम में सुनते हैं राकेश सिंह सलाथिया और साथियों को इस अगले लोकगीत में।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 10:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 137वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता आज लोकभवन में प्रदेश उच्च न्यायालय में 2 न्यायाधीशों तथा 1 अतिरिक्त न्यायाधीश को शपथ दिलाएंगे। चिराग भानु सिंह व भूपेश शर्मा को न्यायाधीश तथा योगेश जसवाल को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह सायं 5 बजे आयोजित होगा। प्रदेश के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना का दूसरा चरण 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा और अन्य सामाजिक पहलुओं से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। सिरमौर जिले में भी नौहरादार क्षेत्र के बर्फबारी प्रभावित 10 गांवों में इस दौरान जनगणना की जाएगी। उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने सभी लोगों से जनगणना कार्य में सहयोग की अपील की है।
1: जिला सिरमौर में जो हमारा स्नोबाउंड एरिया है वो तहसील नौराधार में पड़ता है और इसमें हमारे 10 गांव हैं। यहाँ पे जो हमारा पॉपुलेशन इनॉग्रेशन है, जो फेज 2 है सेंसस का, ये 1 सितंबर से 20 सितंबर तक चलेगा। अब सेकंड फेज में इन 10 गांव में हमारे जो इनॉग्रेटर्स हैं वो लोग जाएंगे, घर घर विजिट करेंगे और जो बाकी का जो हमारा सेंसस का जो डेटा हमें लेना है पॉपुलेशन इनॉग्रेशन का, उसको कलेक्ट किया जाएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है इसी के बदौलत आगे जो हमारी पॉलिसीज बननी है।
0: जनजातीय जिला किन्नौर में पशुपालन को बढ़ावा देने और किसानों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC सुविधा किन्नौर के ग्रामीणों के लिए मददगार साबित हो रही है। इसके तहत गाय सहित दुधारू पशुओं के पालन पोषण के लिए पशुपालकों को कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल रही है। पशुपालक KCC के लिए अपने नजदीकी बैंक की शाखा या पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं, जहां उन्हें वर्तमान नियमों के अनुसार ऋण सीमा, ब्याज दर, पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी जाएगी। विस्तृत ब्यूरो के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
2: गाय पालन के लिए एक गाय पर 1,12,859 रुपए तक KCC ऋण की सुविधा निर्धारित हो सकती है। इस हिसाब से पात्र पशुपालक जरूरत और बैंक के नियमों के अनुसार लगभग 2,00,000 रुपए तक की KCC सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि वास्तविक ऋण सीमा, पशुओं की संख्या, निर्धारित दर, किसान की जरूरत और बैंक के आंकलन के आधार पर तय होगी। KCC से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल गाय के लिए चारा, दाना, पशु चिकित्सा, दवाइयां और रखरखाव से जुड़े जरूरी खर्चों पर पूरा करने में किया जा सकता है। यदि किसान निर्धारित नियमों

0: के अनुसार समय पर ऋण का भुगतान करता है तो उसे अतिरिक्त ब्याज राहत यानी समय पर भुगतान प्रोत्साहन का लाभ मिल सकता है। इससे किसान पर ऋण की ब्याज भार कम हो सकता है। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
1: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार कल से मॉनसून फिर सक्रिय हो सकता है। सोलन जिला के परवाणु में कल शाम भारी बारिश हुई, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। बारिश से परवाणु के सेक्टर 2 टकसाल रेलवे फाटक के पास तथा आसपास के उद्योगों में जलभराव हो गया। मूसलाधार बारिश के कारण कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर शिमला से कालका जा रही 4 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। प्रदेश में भूस्खलन से अभी तक 54 सड़कें बाधित हैं, जबकि वर्षा से बाधित हुई सभी पेयजल योजनाओं को ठीक कर दिया गया है। इधर कड़छम वांगतू जल विद्युत परियोजना प्रबंधन ने स्थानीय लोगों, पर्यटकों और श्रमिकों से अपील की है कि वे सतलुज नदी के किनारों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और इस दौरान नदी के पास न जाएं। परियोजना प्रबंधन के अनुसार कड़छम बांध में पानी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते बांध से कभी भी पानी छोड़ा जा सकता है। प्रबंधन ने बताया कि पानी छोड़े जाने के दौरान लोगों को सतर्क करने के लिए हूटर और सायरन बजाए जाएंगे। परियोजना प्रबंधन ने सभी लोगों से अपील की है कि चेतावनी मिलने पर नदी और जल धाराओं से तुरंत सुरक्षित दूरी बनाए रखें और प्रशासन तथा परियोजना प्रबंधन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। कुल्लू जिला में बच्चों के संरक्षण व कल्याण के लिए गठित स्पॉन्सरशिप व फोस्टर केयर अनुमोदन समिति की बैठक एडीएम सुरजीत सिंह राठौर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में समिति के समक्ष विभिन्न विकास खंडों से प्राप्त 61 नए मामलों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में पहले से चल रहे 1097 मामलों की प्रगति की समीक्षा की गई, ताकि पात्र बच्चों को मिल रही वित्तीय सहायता निरंतर जारी रह सकें। हिमालय की कठिन और ऊंचाई वाली परिस्थितियों को चुनौती देते हुए स्पीति की तेंजिन डोलमा ने हाल ही में 70 किलोमीटर की कठिन दौड़ महज 6 घंटे 5 मिनट में पूरी कर इतिहास रचा है। तेंजिन डोलमा की इस ऐतिहासिक सफलता पर क्षेत्रवासियों ने उन्हें बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 10:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का सीधा प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: The best of entertainment, information, education अब आपकी एक उंगली के इशारे पर, कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
3: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना।

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप
1: बड़ी बहू ये तुम्हारे ना
2: इतनी भी क्या जल्दी थी
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना
3: और ये मेरी गुड़िया की ना
4: पर दादी
1: हाँ
4: आपके नाम
5: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो
1: शुभ शुभ बोलो
4: क्या
6: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए सतर्क रहिए
8: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा याद रखें समाधान आपके पास है टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है यहां आपकी बात सुनी जाती है समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है आप अकेले नहीं हैं मदद बस एक कॉल दूर है
0: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात
9: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार मन की बात के इस नए एपिसोड में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सब जानते हैं कि एक ऐसा मंच है जहां हम नए प्रयासों को सामने लाते हैं देशवासियों के इनोवेटिव आइडियाज पर चर्चा करते हैं इनमें से कितने ही आइडियाज ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोगों ने जीवन की अथक ऊर्जा लगाई होती है साथियों कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं उन्होंने आगे बताया यह आइडिया बहुत ही सिंपल है आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है www.bharatrajya.com उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए साथियों कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं कृष्णा जी नमस्ते
10: नमस्ते सर नमस्ते
9: भाई मुझे पता चला है न आप टेक की दुनिया से हो न आप हिस्ट्री टीचर हो फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ
10: सर धन्यवाद सर आपसे बात करके बहुत मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है तो सर मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर मैं एक इंजीनियर था फिर मैंने एमबीए किया फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं
9: कृष्णा जी भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा कि इसका जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए
10: सर अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है जैसे आप देखते हो तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से उस

0: के नजरिए से सिखाया जाता है और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है। इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, करकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अहोम्स थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
1: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ, अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी 3 लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
0: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराज चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंड चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके, तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं, तो हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे। उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीज आर 3 इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर।
1: कृष्णा जी, आपको लगता है कि इतिहास को जी रहे हैं, आप पूरी तरह इतिहास में डूब चुके हैं। देखिए, मैंने भी बड़े उत्सुकता के साथ आपकी साइट देखी है और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि आपकी साइट पर एक ऐसा टैब है जहां लोग करेक्शंस और सजेशन भी दे सकते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए ओपन रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लोगों से सुझाव मिलना शुरू हुआ है क्या, और आप उन पर कैसे काम करते हैं?
0: हाँ सर, इन लोगों से बहुत सुझाव आते हैं सर। सुझाव 2 प्रकार के आते हैं। एक सुझाव ऐसे आते हैं जो हमको करेक्शन सजेस्ट करते हैं कि इस प्रदेश में, इस टाइम में, इस राष्ट्र में ये राजा थे या इस टाइम में ये युद्ध हुआ था, तो ऐसे कुछ सजेशंस आते हैं। दूसरे सजेशन आते हैं कि आप इस वेबसाइट में ये फीचर भी डाल सकते हो या वो फीचर भी डाल सकते हो, तो हमको दोनों प्रकार के सजेशन आते हैं। तो जैसे अगर हमको ऐसा एक सजेशन आए कि इस प्रदेश में इस राजा ने इस टाइम पे राज किया था, तो हम वो सजेशन को लेते हैं। तो हमारे जो सोर्सेस है, जैसे हमको इसी ने सजेशन में दिया था कि हमने इंडिया को तो दिखा दिया, अगर प्रदेश के लेवल पे भी दिखा सकते हैं तो और अच्छा होगा, तो हमने वो फीचर इंप्लीमेंट किया। और फिर हमने दूसरे एक फीचर आया था जिसमें हमने एक ट्रंप कार्ड जैसा बनाया था, सारे एम्पायर के डेटा स्टैटिस्टिक्स देखे ताकि वो बच्चों तक पहुंच सके। तो किसी ने एक सजेशन दिया था कि उसको आप एक जगह पे लेके आइए ताकि हम सब डाउनलोड करके हम सब शेयर कर सके, तो वो हम फीचर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें जितना जानना इम्पोर्टेंट है कि हम गलती करेंगे, हम क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और वो जान के ही हमने वो करेक्शन का टाइम लगाया ताकि ये हम सबकी साइट हो और आगे जाके सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम एक ऐसा साइट बनाए जो अगले कुछ साल तक इतिहास से एक मजेदार सब्जेक्ट बनाए।
1: कृष्णा जी, आपने सचमुच में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, हिस्ट्री के अलावा आपकी कई सारी हॉबीज होगी,

0: और भी बहुत कुछ करते होंगे आप?
1: नहीं सर, हम थोड़े बोरिंग टाइप आदमी हैं सर। हम टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इतिहास में रखते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी और इतिहास मिल गया इसी में हम डूबे रहते हैं पूरा दिन।
0: चलिए कृष्णा जी, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है, आपने एक अच्छी शुरुआत की है और आपका तरीका भी ऐसा है कि लोग जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है।
2: साथियों, कृष्णा जी का ये प्रयास सिर्फ इतिहास के विद्यार्थियों को नहीं, ये हम सबको अपने अतीत को रोचक तरीके से जानने में मदद करेगा। आपके पास भी ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी हो तो उसे जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है। साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। मैं उन लोगों की सराहना करूंगा जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं। नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले। आप अपने प्रयासों को हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। कई बार क्रिएटिव एफर्ट फॉर्मल कैंपेन से ज्यादा असरदार होते हैं। आइए भारत के युवा को नशे से दूर रखने, नशे से मुक्त रखने, इस पवित्र कार्य में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। आप अपने प्रयास को हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे, इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई और तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे। जैसे जैसे दुनिया भर में सूरज आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय तिरंगा भी

लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं। इनसे देश के साथ भी हमारा जुड़ाव और गहरा होता है। इन प्रयासों में शामिल सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती है, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती है, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती है। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निंगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निंगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभर बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निंगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छता की एक बहुत बड़ी खूबी होती है। जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प वहां के लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो बदलाव केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं रहता। इससे उस जगह की पूरी पहचान ही बदल जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई। वहां आकाश और रोहन नाम के 2 दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं। इन्होंने कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। साथियों, इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा में भी स्वच्छता और जनभागी

भागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे। इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को कलेक्ट और प्रोसेस किया गया। मुझे इस प्रयास की

स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित की गई, यानी बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई। साथियों, हमारे गांव हो या शहर, हमारी नदियां हो या तीर्थस्थल, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से भी बनती है। और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है, उस स्थान की शोभा और बढ़ जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के फेक जिले की वैशालू पुरोजी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वैशालू जी किसान परिवार में पली बढ़ी। बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव था। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। वैशालू जी ने अपने इस शौक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से फूलों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग मिली। फिर उन्होंने केवल एक चौथाई एकड़ जमीन पर ग्लेडियोलस के हजारों पौधे लगाए। पहले ही प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूल खिल उठे। साथियों, ये सफलता वैशालू जी के लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया। जो फूल कभी स्थानीय बाजार में रह जाते थे, आज वो नागालैंड से निकलकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक जा रहे हैं। वैशालू पुरोजी की यात्रा हमें बताती है कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन से जुड़ जाता है तो वह नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो एक छोटा सा प्रयास शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता बना देता है। ओडिशा के देवरीगढ़ में एक गांव है, धोडरो कुसुम। कुछ साल पहले तक इस गांव की मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जाती थी, कभी जलावन की लकड़ी लेने, कभी महुआ और केंदू पत्ता चुनने, तो कभी बांस की कोंपलें और दूसरी वनुपज लाने। उनके और वहां के अनेक परिवारों की बहुत सी जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती थी। लेकिन फिर मैथिली जी देवरीगढ़ इको टूरिज्म से जुड़ी। यहां से जंगल के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदल गया। अब जंगल का संरक्षण भी उनकी आजीविका का माध्यम बन गया। साथियों, मैथिली जी के जीवन में आए इस बदलाव ने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज 60 से अधिक महिलाएं जंगल के संरक्षण में जुड़ चुकी हैं। कोई वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व संभाल रही है, कोई घास के मैदानों के विकास से जुड़ी है, तो कुछ महिलाएं इको टूरिज्म एक्टिविटीज में योगदान दे रही हैं। साथियों, मैथिली जी और देवरीगढ़ की इन बहनों ने दिखाया है कि प्रकृति की रक्षा भी हो सकती है और जीवन में समृद्धि भी आ सकती है। इन सभी बहनों का प्रयास हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देशों और भारत से आई करीब 100 छात्राएं

एक साथ जुटी। भारत के दूर दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस पूरे प्रयास का लक्ष्य भी बहुत खास है। पूरी तरह छात्राओं की भागीदारी से तैयार एक सैटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की तैयारी है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इनमें से अनेक छात्राएं आने वाले समय में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। इसकी वैल्यू और डिमांड दोनों कम थी, लेकिन आज इसे डाइनिंग टेबल पर खूब देखा जा रहा है। आज यह हेल्थ और प्रीमियम मार्केट की पसंद बन गया है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी ये बहुत मददगार है। आंध्र प्रदेश में कड़पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं। नई फसल, वैज्ञानिक सलाह और सीधी मार्केटिंग से उनके छोटे से फार्म की कमाई पूरी तरह बदल गई है। तमिलनाडु के कोडाईकनाल के किसान चंद्रशेखरन जी ने आधी हेक्टर जमीन पर एवोकाडो उगाना शुरू किया। उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और कमाई भी बढ़ी है। कर्नाटका में चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनों ने तो कॉफी प्लांटेशन के बीच एवोकाडो लगाया है। इससे उन्हें कॉफी और काली मिर्च के साथ अतिरिक्त कमाई भी हो रही है। साथियों, हम शहरों के रेस्टोरेंट में अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसी एवोकाडो के जरिए हमारे इनोवेटिव किसानों ने कमाई की एक नई रेसिपी ढूंढ ली है। यानी अपने देश के एवोकाडो से आपके टोस्ट का स्वाद भी बढ़ा और किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में 3 सितंबर को हम महानायक उत्तम कुमार जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे। साथियों, उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलैंथ्रोपी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज कोरबैन। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पर्व और त्योहार हमारी परंपराओं के साथ साथ हमें एक दूसरे से जुड़ने का भी अवसर देते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी कई महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सितंबर में ही हम विश्वकर्मा पूजा भी मनाएंगे। इस अवसर

0: पर अपने आसपास के कारीगरों, शिल्पकारों और विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करना चाहिए। कुछ महीनों बाद दीपावली भी आने वाली है, इसकी तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड के साथियों, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा आपसे आग्रह है कि स्वयं भी वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। साथियों, आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आप उनके बारे में मन की बात के लिए जरूर लिखिए। आपका भेजा हुआ अनुभव देश के किसी कोने में किसी के लिए नई प्रेरणा बन सकता है। मुझे आपके सुझावों और अनुभवों की प्रतीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
4: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्यस्य नूतन प्रकरणे भवतां सर्वेषां पुनरेकवारं हार्दिकं स्वागतं करोमि। भवन्तः सर्वे जानन्ति यत् इदमेकं एतादृशं मञ्चं यत्र वयं नूतनान् प्रयत्नान् समक्षम् आनयामः, देशवासिनां नवोन्मेषपूर्ण विचाराणां च चर्चां कुर्मः। एतेषु कियन्तोऽपि विचाराः एवं विधाः भवन्ति येषां नेपथ्ये जनैः जीवनस्य श्रमपूर्णशक्तिः विनियोजिता भवति। सखायः, किञ्चित् कालपूर्वं जनसञ्चारमाध्यमे कश्चित् लिखितवान् आसीत्, आषाढमासस्य एकादश्याः पावनेऽवसरे अहमिदं निवेदयितुं महतीं प्रसन्नतामनुभवामि यत् इतिहासं रुचिकरं कर्तुं स्वप्रयत्नस्य शुभारम्भं करोमि। सः अग्रे लिखितवान् यत् अयं विचारः अत्यन्तं सरलः अस्ति। भवान् अस्यां जालपुटिकायां गत्वा स्वेच्छया कञ्चन एकं वर्षं चिनोतु। तत्र भवान् सारल्येन ज्ञातुं पारयिष्यति यत् तस्मिन् काले भारतस्य कस्मिन् भागे कस्य शासनमासीत्। मया अपि एतत् अत्यन्तं रुचिकरं प्रतीतम्। अहं चिन्तितवान् यत् अस्मिन् विषये अधिकतरां सूचनां प्राप्येत। मया ज्ञातं यत् कार्यमिदं मुम्बईनगरे निवसता श्रीमता कृष्णा शेषाद्रिणा कृतमस्ति। रोचकतमः पक्षः अयमस्ति यत् कृष्णामहोदयेन स्वस्य जालपुटिकायाः नामापि अत्यन्तं सरलमेव कृतमस्ति। www.bharatrajya.com तेन कृतस्य अस्य प्रयत्नस्य विषय

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है जिगरी दोस्त।

खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो, हे हम सारे हैं भारतवासी सब।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: सैनिकों के लिए इस कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए अखिल सचदेव और मानशील गुजराल का गाया हुआ। फिल्म का नाम है बद्रीनाथ की दुल्हनिया।

कार्यक्रम का अगला गीत और अंतिम गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म यंगिस्तान से। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह ने, बोल लिखे हैं कौसर मुनीर ने और धुन बनाई है जीत गांगुली ने।

सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दिन के 12:30 हुए हैं, अब बच्चे अपना कार्यक्रम सुनेंगे बाल सभा।

0: प्यारे प्यारे नटखट से हमारे नन्हे सिपाहियों को रेडियो दीदी ज्योति का बहुत बहुत प्यार और नमस्कार। आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियो में सज चुकी है महफिल, क्योंकि आज है महीने का अंतिम रविवार और वक्त हो गया है बच्चों के पसंदीदा कार्यक्रम बाल सभा का। जी हाँ, वो सभा जहाँ कोई पढ़ाई का प्रेशर नहीं होता, कोई गृह कार्य होमवर्क की टेंशन नहीं होती, यहाँ होती है ढेर सारी मस्ती, गपशप, आपकी मनपसंद कविताएं, चटपटे चुटकुले और बहुत सारा ज्ञान। तो प्यारे बच्चों, क्या आप सब तैयार हैं आज की बाल सभा में धमाल मचाने के लिए? आज के फ़ोन इन प्रोग्राम में फ़ोन लाइंस अब बिल्कुल खुल चुकी हैं। जी हाँ, आज का हमारा ये कार्यक्रम सजीव फोन इन है। अगर आप भी हमसे बात करना चाहते हैं, अपनी सुरीली आवाज़ में कोई गाना सुनाना चाहते हैं या कोई मज़ेदार चुटकुला शेयर करना चाहते हैं, कोई कविता सुनाना चाहते हैं, तो उठाइए फ़ोन और मिलाइए आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज़ का ये नंबर। नंबर है हमारा 01892-224-391। जी हाँ, नंबर एक बार फिर से आपको बता देते हैं, 01892-224-391। और मिलते हैं कार्यक्रम के पहले नन्हे श्रोता से।
1: हेलो।
0: हेलो,
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते जी, किनसे बात हम कर?
1: साक्षी बोरी नूरपुर से।
0: जी साक्षी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम बाल सभा में।
1: आपको राखी की बधाइयां दीदी जी।
0: जी आपको भी बहुत बहुत।
1: दीदी जी आप कैसे हो?
0: जी हम ठीक हैं। और साक्षी कैसी है ये बताइए?
1: ठीक हूँ। आज परवीन दीदी जी क्यों नहीं आए?
0: जी आज वो नहीं आए हैं और उनकी जगह पर हम आ गए हैं।
1: नहीं, मेरे को ना उनकी आवाज बड़ी पसंद है, मैं उनका इंतजार करने बैठी थी, मैंने सोचा दीदी से बात होगी।
0: जी लेकिन आज तो वो नहीं आए हैं।
1: अच्छा कोई नहीं, आपसे कर लेती बात, आपकी आवाज बहुत सुंदर है।
0: जी धन्यवाद आपका। और बताइए आज आप हमें क्या सुनाएंगे?
1: आज मैं आपको भजन सुनाती हूँ।
0: जी सुनाइए।
1: अम्बे माँ वाला भजन सुना दो।
0: जी जी, जो आपको अच्छा लगता है ना वो आप हमें सुना दीजिए।

0: जी बहुत अच्छा आपने ये भजन गाया। खुद के लिए आप तालियां बजाइए और हम भी आपके लिए तालियां बजाते हैं।
1: कोई बात नहीं दीदी, देर से बजा देती हूँ।
0: जी, और धन्यवाद आपने कार्यक्रम में।
1: मेरे नमस्ते बोलना प्रवीण दीदी जी को
0: जी, वो
1: आज।
0: आप

0: हाँ
1: जी
0: जी
1: जी आपको वो सुन रहे होंगे। और
0: उनको ना मैं आज का दिन बहुत मिस कर रही हूँ। वो नहीं आए ना, उनकी आवाज सुनने के लिए मैं सोचा हूँ वो आए हो कि मैं कॉल लगाती हूँ।
1: जी तो धन्यवाद, आपका ये प्यार यूं ही बना रहे हमारे साथ। धन्यवाद आपने हमें कॉल किया। और भी श्रोता, नन्हे जो श्रोता हैं, वो हमसे बात कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर मिलाकर 01892224391। हेलो,
0: गुड आफ्टरनून,
1: गुड आफ्टरनून जी, नाम बताइए।
0: साक्षी शर्मा। काशिया
1: हाँ जी, एक बार फिर से बताइए जी। काशिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में
0: यू।
1: जी। तो कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं आप?
0: यूकेजीबी।
1: UKG, और सेक्शन भी बता दिया है इन्होंने, बी जी। और आपको क्या करना अच्छा लगता है पढ़ाई के अलावा? खेलना अच्छा लगता है। तो कौन सा गेम आप खेलते हैं जी? कौन सा गेम आपको पसंद है? बैडमिंटन खेलते हैं। तो उसमें तो एक खिलाड़ी और चाहिए, तो दूसरा साथी कौन बनता है आपका? पापा जी। ठीक है, तब तो बहुत मजा आता होगा।
0: हाँ जी,
1: ठीक है, और आज आप हमें क्या सुनाएंगी?
0: पॉइंट।
1: पोएम सुनाएंगे, तो जल्दी से शुरू हो जाइए।
0: नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है माँ का लाडला।

0: वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कविता आपने गाई। और आपने
1: थैंक
0: जो
1: यू।
0: वेलकम, और आपने कहा ना कि माँ हमें रोज रोज नहलाती, तो सच्ची में आप रोज नहाते हैं ना? सच बोल रहे हैं? अच्छा, ठंडे पानी से या गर्म पानी से? अच्छा, ठंड लगती है। अच्छा, कौन सी जगह से आप बात कर रही हैं, ये तो आपने बताया नहीं।
1: धर्मशाला। हाँ
0: जी, तब तो भाई गर्म पानी से ही नहाना पड़ेगा, है ना? जी, तो आपने हमें कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और एक गीत अब आपको सुनवाते हैं।
2: ओ ठंडे ठंडे पानी।

0: हेलो
1: राधे राधे, कैसी
0: राधे राधे जी,
1: हो? बस
0: मैं तो अच्छी हूँ। और जो हमसे हालचाल पूछ रहे हैं वो कैसे हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ।
0: नाम बता दीजिए अपना।
1: वंशुलिया।
0: वंश? वंश बात कर रहे हैं
1: हाँ जी
0: जी। वंश कौन सी जगह से बात कर रहे हैं?
1: ज्वाली।
0: ज्वाली से। ठीक है। वंश कौन सी कक्षा में पढ़ाई करते हैं?
1: थर्ड।
0: थर्ड कक्षा में जी। और वंश को सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है करना पढ़ाई के अलावा?
1: खेलना क्रिकेट।
0: खेलना। तो कौन सी गेम आप खेलते हैं? क्रिकेट। तो बैटिंग करते हैं या बॉलिंग?
1: दोनों।
0: दोनों। ऑलराउंडर हैं आप, है ना?
1: जी
0: फील्डिंग भी अच्छी करते होंगे
1: जी
0: जी ठीक है। अच्छा तो ये बताइए कि कभी आपको गुस्सा आता है जब हार जाते हो?
1: नहीं।
0: नहीं आता है?
1: जी
0: हाँ जी आता है। नहीं जी बताइए
2: आता है। बोल, सच बोल, झूठ ही बोल रहा है
0: जी, सच बोलना है
2: लगता है भाई थे ना।
0: जी। वंश, वंश आपने अपने मन की बात कहनी है और सच कहना है। कोई बात नहीं, गुस्सा आता है ना आपको? ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा गुस्सा तो आता ही है ना? फिर आप क्या करते हैं अपने गुस्से को शांत करने के लिए?
3: The person you are speaking with has put your call on hold.
0: जी,
3: Please hold
0: इन्होंने
3: the
0: कॉल को होल्ड कर दिया है। और कोई बात नहीं, जब तक हमारे अगले श्रोता हमसे जुड़ते हैं हम ये गाना सुनते हैं, इसे कंटिन्यू करते हैं।

0: का सूरज प्यार का चंद्रा। स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम में।
1: हेलो
0: नमस्ते जी, नाम बताइए।
1: सनाया
0: जी। सनाया पढ़ाई करती हैं?
1: हाँ जी।
0: कौन सी कक्षा में?
1: सेकंड
0: में। ठीक है, और कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: हम लोटी से।
0: जी ठीक है, और ये बताइए कि आप मम्मा के हाथों का कौन सा ऐसा व्यंजन है जिसे बहुत पसंद करती हैं खाना? ऐसी कौन सी डिश है जो मम्मा बहुत अच्छी बनाती हैं और आप दूर से भागे चले आते हैं?
1: खीर।
0: जी खीर। अच्छा, और ऐसी कौन सी डिश है कि दूर से ही भाग जाते हो?
1: करेला।
0: जी तो करेला अच्छा नहीं लगता है।
1: हाँ जी।
0: ठीक है, तो और कौन सी सब्जियां हैं जो आपको अच्छी लगती हैं खाने में? चलो करेला तो आपको नहीं लगता है और खीर बहुत अच्छी लगती है ना? ठीक कह रहे हैं,
1: सारी सब्जियां अच्छी लगती हैं।
0: सारी सब्जियां अच्छी लगती हैं, सिर्फ करेले को छोड़ के ना?
1: हाँ जी।
0: तो फिर ये सारी नहीं हुई ना? जी ठीक है, चलिए बताइए कौन सी कविता या कोई चुटकुला जो भी आपको अच्छा लगता है ना आप हमें सुनाइए आज।
1: होली रंगी रंगी होली आई सबके मन पे, होली भाई खेलें कूदें खुशी मनाएं, ढोल बजाकर होली गाएं,

0: निकल पड़ी मित्रों की टोली, सबने खेली मिलकर होली। आओ लाल गुलाल लगाए, पिचकारी से रंग उड़ाए, पुए और पकवान बनाए, जो घर आए उसे खिलाए, सबको अपने गले लगाए, होली का संदेश सुनाए।
1: जी बहुत अच्छे, और कुछ सुनाना चाहती हैं?
0: नहीं।
1: थैंक यू, आपने हमें कॉल किया।
0: वेलकम।

0: हेलो।
1: दीदी जी पहले कट तो गया था। हाँ
0: अच्छा, पहले फोन कट गया था
1: जी,
0: जी। आप क्रिकेट वाले वंश हैं
1: हाँ जी।
0: जी? वंश ठीक है। अच्छा बताइए, मुझे तो लगा कहीं आपको गुस्सा तो नहीं आ गया।
1: नहीं, हाँ
0: हम गुस्से की ही बात कर रहे थे ना।
1: जी।
0: ठीक है, तो वंश आज हमें क्या सुनाएगा
1: आउट
0: जी? विचार सुनाएंगे। चलिए सुनाइए।
1: विजिबल बट सो मैनी थिंग्स। समय दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है।
0: जी बिल्कुल सही। तो इस पर आप अमल करते हैं
1: हाँ जी,
0: कैसे? समय पर सारे काम करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, रात को जल्दी सोते हैं।
1: हाँ जी।
0: अच्छा ठीक है, तो समय पर यूं ही अमल करना है
1: प्रवीण दीदी का है,
0: जी। कहिए
1: प्रवीण दीदी का है।
0: जी। आज तो वो नहीं आए हैं, आप उन्हें मिस कर रहे हैं
1: हाँ जी,
0: जी? ठीक है, आपकी बात वो सुन रहे होंगे। कुछ कहना चाहते हैं?
1: आपका नाम क्या है?
0: मेरा नाम है रेडियो दीदी ज्योति,
1: राधे राधे ज्योति।
0: राधे राधे जी। वंश ठीक है, आपने हमें कॉल किया, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद
1: थैंक यू। हैप्पी
0: जी। वेलकम, बाय बाय।
1: हैप्पी जन्माष्टमी।
0: ओ, इन एडवांस थैंक यू, थैंक यू।
1: वेलकम।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: हेलो।
3: हेलो
2: जी। हेलो, नाम बताइए अपना।
3: हेलो
2: जी। हेलो।
3: हेलो
2: जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। हेलो।
3: हेलो
2: जी, नाम बताएं।
3: नमस्ते।
2: नमस्ते जी,
3: मैं अर्णव बोल रहा हूँ।
2: अर्णव कहाँ से?
3: विराट से।
2: हाँ जी।

0: बोल रहा हूँ।
1: रैत से?
0: हाँ जी।
1: अच्छा जी, आपका कार्यक्रम बाल सभा में ना सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं
0: थैंक यू।
1: जी। बताइए अपने बारे में, कौन सी कक्षा में पढ़ाई करते हैं?
0: हेलो।
1: जी, कौन सी कक्षा में पढ़ाई करते हैं?
0: हाँ जी।
1: आप तक हमारी आवाज़ अच्छे से पहुंच रही है?
0: थर्ड क्लास में पढ़ता हूँ।
1: थर्ड क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, कहीं सोच में तो नहीं पड़ गए थे?
0: जी।
1: जी ठीक है। अच्छा, अपनी हॉबीज बताइए हमें, आपको क्या करना अच्छा लगता है? आपको क्या कुछ करना अच्छा लगता है?
0: खेलना, पढ़ना,
1: खेलना,
0: खेलना
1: पढ़ना भी?
0: और पढ़ना।
1: अच्छा ठीक है, तो पढ़ने में सबसे अच्छा क्या लगता है आपको, कौन सा सब्जेक्ट?
0: SST।
1: सोशल साइंस। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और अब बताइए, खेलने में क्या अच्छा लगता है?
0: क्रिकेट।
1: क्रिकेट के दीवाने हैं आप भी? ठीक है, तो बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं या फील्डिंग?
0: बिल्डिंग
1: फील्डिंग करते हैं, तो खेलने का मौका नहीं मिलता कभी
0: मिलता
1: तो जी बताइए, तो क्रिकेट में आप बॉलिंग भी करते होंगे, है ना, बैटिंग भी
0: है।
1: करते होंगे। अच्छा, फील्डिंग करना शायद आपको ज़्यादा अच्छा लगता है।
0: हाँ जी।
1: ठीक है, तो अब हमें आप क्या सुनाएंगे,
0: पॉइंट
1: पोएम सुनाएंगे?
0: पॉइंट
1: ठीक है, चलिए सुनाइए।
0: चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे कल ले जाना, कल
1: जी।
0: से मेरी छुट्टी है, ना आए दो कुट्टी है। चंदा मामा खा लड्डू, आसमान की थाली है, लेकिन वो पीते हैं पानी आकर मेरी प्याली में। चंदा मामा देते सबकी, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक
1: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें कॉल किया जी। आकाशवाणी धर्मशाला से आप सुन रहे हैं बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा। आज के कार्यक्रम में हमारे नन्हे मुन्हे दोस्त हमें कॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपको मिलाना है आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज़ का नंबर 01892-223-9101 224391। हेलो,
0: नमस्ते।
1: नमस्कार,
0: मेरा
1: कौन बात कर रहे हैं?
0: नाम भाविक चौधरी।
1: भाविक जी, बहुत अच्छा नाम है भाविक। कहाँ से बात कर रहे हैं भाविक?
0: गवाना से।
1: भवारना से? जी ठीक है। और भाविक पढ़ाई करते हैं
0: हाँ जी।
1: कौन सी कक्षा में?
0: फोर्थ क्लास।
1: फोर्थ क्लास। ठीक है, और भाविक हमें ये बताइए कि आज आप हमें क्या सुनाएंगे,
0: मैं आपको गाना सुनाऊंगा।
1: गाना सुनाओगे? ठीक है, तो हम सुनेंगे आपका गाना, आप गाइए।

0: छोड़ो खुद से जो शर्माना क्यों क्यों इश्क पता नहीं। थैंक यू।
1: जी बहुत अच्छा गाया भाविक ने, तालियां बजाइए खुद के लिए जी, थोड़ा जोर से, हमें तो सुनाई नहीं दी अच्छे से जी भाविक, और कुछ सुनाना चाहते हैं तो सुना सकते हैं आप।
0: नहीं,
1: हाँ जी,
0: मैं
1: कुछ सुनाना चाहते हैं? और
0: कुछ भी नहीं,
1: अच्छा कुछ भी नहीं, अच्छा गाना सुना तो दिया है ना दीदी को, दीदी का पेट ही
0: बिल्कुल
1: नहीं भरता है, सोच रही है कि कुछ और भी आपसे सुना जाए।

0: ठीक है, तो गाना सुना दे अब आपको।
1: जी
0: ठीक है, नया या पुराना?
1: न्यू
0: हाँ जी,
1: न्यू
0: न्यू। ठीक है, नया गाना आपको सुनाते हैं। एक विज्ञापन है, वह भी आपको सुनवा देते हैं, और फिर आपका, आपके लिए और सभी श्रोताओं के लिए गाना। धन्यवाद, आपने हमें कॉल किया।
1: थैंक।
2: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार।
1: नमस्ते। मेरा
0: कौन बात कर रहे हैं?
1: नाम प्रणव है। मैं
0: प्रणव। प्रणव कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: योल से बात कर रहा हूँ।
0: ठीक है, योल से बात कर रहे हैं। जल्दी से सुनाइए, हमें क्या सुनाना चाहते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है।
1: हाँ, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ एक पोयम।
0: जी, तो सुनाइए जल्दी से।
1: माई ग्रैंड पापा लिव्स इन अ वंडरफुल हाउस विद ग्रेट मैनी विंडोज एंड डोर्स। देयर आर स्टेयर्स दैट गो अप एंड स्टेयर्स दैट गो डाउन विद सच ब्यूटिफुल स्लिपरी फ्लोर्स। बट ऑल ऑफ द रूम्स, इवन मदर्स एंड माइन एंड द बुक रूम एंड पार्लर एंड ऑल, आई लाइक द ग्रीन डाइनिंग रूम सो मच द बेस्ट बिकॉज ऑफ इट्स सीलिंग एंड वॉल्स। Right over your head is a funny round hole with apples and pears falling through. There is a big bunch of grapes, all purpley and sweet, and melons and pineapples too. They tumble and tumble but never come down, though I have stood underneath a long while with my mouth open wide. For I always have hope just a cherry would drop from the pie. No matter how early I run there to look, it has always begun to fall through. And one night, when I spent time, I crept in to see it was falling by the candlelight too.
0: जी, बहुत अच्छी आपकी ये कविता है और लंबी भी है, और समय जो है वो प्रणव हमारे पास अब इतना सा ही है कि अब हम आपको कह दें बाय बाय। धन्यवाद आपने हमसे बात की। जी, और बहुत अच्छा लगा आप सभी नन्हे दोस्तों से बात करके, और जिन बच्चों की कॉल्स आज के कार्यक्रम में हम शामिल नहीं कर पाए हैं, वह अगले महीने के अंतिम रविवार को फिर से कोशिश करें। आज का सफ़र यहीं तक। आकाशवाणी धर्मशाला से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। दोपहर का 1 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1 बज

0: हर 5 मिनट पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें। उन्होंने कहा कि देश में उत्कृष्ट कंटेंट क्रिएटर्स की कोई कमी नहीं है। श्री मोदी ने उनसे इस प्रयास में विभिन्न भाषाओं में कंटेंट तैयार करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि लगभग 46% महिलाएं पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि देश भर की लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपना कारोबार आगे बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया।
2: उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई, वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे, एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि उड़ीसा के देवरीगढ़ क्षेत्र के धोड़रो कुसुम के मैथिली भुए ने ये दिखा दिया है कि जीवन में समृद्धि प्राप्त करने के साथ साथ प्रकृति की रक्षा करना भी संभव है। श्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
2: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में कडप्पा के वरदराज और तमिलनाडु में कोडाई कनाल के चंद्रशेखरन के उल्लेख किया जो एवोकाडो की खेती के जरिए अतिरिक्त कमाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच ताशकंद में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। राष्ट्रपति भवन में दोनों नेता व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा कर रहे हैं। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उज्बेकिस्तान योग महासंघ के योग कार्यक्रम में भाग लिया। बाद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने अपने आवास पर श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2,500 लोग लापता हैं। आपदा के 5वें दिन भी बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। बचाव दल ने अब तक 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। भारत से अब तक 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान काठमांडू पहुंच चुका है। इससे पहले भारत ने 3 विमानों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी। उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बालेश्वर में लगातार वर्षा के कारण सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिमी बंगाल और उत्तरी उड़ीसा तटों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ये बारिश तेज हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि निम्न दबाव का क्षेत्र और अधिक तीव्र होकर पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने आज और कल उड़ीसा में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार

0: In hockey, defending champions Germany will take on Spain in the men's AFIH World Cup final in Wavre, Belgium at 8 p.m. Indian Standard Time today. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1:10 हुए हैं। आइए अब आपको ले चलें आकाशवाणी मुंबई, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

असली नकली फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। साधना और देव आनंद इस फिल्म में हीरो हीरोइन। संगीतकार का नाम भी हमारे श्रोताओं ने बताया है, शंकर जयकिशन। फिल्म थी असली नकली। और बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही है। एक श्रोता ने लिखा है कि महान गीतकार शैलेंद्र हिंदी सिनेमा के उन गिने चुने रचनाकारों में से हैं जिन्होंने फिल्मों में लोक संस्कृति आंचलिकता मतलब मिट्टी की सूंधी महक को बेहद सहजता से पिरोया। मूल रूप से बिहार के आरा ज़िले से ताल्लुक रखने के कारण ग्रामीण जीवन, लोक भाषा और आंचलिकता उनके रग रग में बसी है। शैलेंद्र ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ भोजपुरी की शुरुआती फिल्मों के लिए भी कई ऐतिहासिक गीत लिखे, जैसे गंगा मैया तो है पियरे चढ़े बो। जब भी भोजपुरी भाषा की बात चलती है तो ये गीत जरूर याद किया जाता है। और बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि हमें तो उनके भोजपुरी गीत का रंग बहुत पसंद आता है। बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि हमें जो ग्रामीण अंचल दिखाई पड़ता है जिन गीतों में, वो हमें बहुत पसंद आता है। और अभी जो गाना हमने सुनवाया, तेरा मेरा प्यार अमर फिर क्यों मुझको लगता है डर, इसमें भी एक स्त्री मन की बात थी। और शैलेंद्र

कि पूरी गीत यात्रा में हमें बहुत सारे ऐसे गाने मिल जाते हैं जिनमें उन्होंने स्त्री की बहुत ही भावनाओं को समर्पित किया, भावनाओं को उकेरा है अपने गाने में, उनके जीवन के अलग अलग मोड़ों पर दिल में उठते तूफान को गीतों में उन्होंने पिरोया है, और वो जो भाव है उनके अंतर मन के, उनके भाव उस गीत में उकेरे गए हैं और वो गीत आपके दिल में उतर जाते हैं। जैसे कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा का वो गीत याद आता है जो अक्सर आप सुना करते हैं, और आज भी बहुत सारे श्रोताओं ने उस गाने का जिक्र किया है। तो अब सुनिए अनुराधा फिल्म का वही गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में। लेकिन आपसे एक पहेली हम पूछ रहे हैं, पहेली वो ये है कि आप बूझिए किन कलाकारों पर ये गाना फिल्माया गया है और कैसा दर्द है उस हीरोइन के चेहरे पर और उसके मन में। बहुत अनकहा दर्द है इस फिल्म में। बूझिए जरा कौन है हीरोइन और हीरो।

अनुराधा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र की रचना थी, ये बताने की जरूरत कहाँ है, लेकिन फिर भी बता रहे, रविशंकर का संगीत था। और इसमें हमने आपसे पहली बूझी थी हीरो हीरोइन का नाम, लीला नायडू और बलराज साहनी। सभी श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म अनुराधा का ये गीत बहुत ही मर्मस्पर्शी गीत है, एक स्त्री के अंदर के दुख को बहुत अच्छा बयां करते हैं। इसमें रविशंकर का संगीत था और लीला नायडू बलराज साहनी इसके हीरो हीरोइन थे, और अभी भट्टाचार्य का भी एक महत्वपूर्ण रोल था। हाँ, बाद में वो आते हैं और जब लीला नायडू से एक अलग स्त्री के रूप में परिवर्तित होने का आग्रह भी करते हैं और एक गाना और वो सुनने का आग्रह करते हैं जब लीला नायडू पर्दे पर गाती हैं, तो वो कौन सा गाना है, अगर आपको याद है तो ज़रूर बताइए हमें। एक श्रोता ने लिखा है कि 1957 में मुसाफिर और 1959 में अनाड़ी के बाद अनुराधा ऋषिकेश मुखर्जी की निर्देशित तीसरी फिल्म है। प्रेम, फिर विवाह और विवाह के

एक श्रोता लिख रहे हैं कि पिंजरा में बंद भइल हाय राम गीत बहुत अच्छा लगता है, और बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात लिखी है कि शैलेंद्र एक मन भावनिक और भाविक चरित्र गीतकार जिनके सरल शब्दों में दुनियादारी, इंसानियत, सच्चाई की गहरी सोच दिखाई देती है। एक गाना है करमुआ बैरी हो गए हमार या मेरे साजन है उस पार जैसे गीत भावना की गहराई दिखाई देती है। और भी कुछ गाने इन्होंने लिखे हैं और बजाने के लिए अनुरोध किया है। भाई हम तो आप सभी से कह रहे हैं कि आप गाने याद करते रहिए, अपनी यादों के गलियारों में जाइए, खंगालिए अपनी यादें, और गानों से जुड़ी हुई कोई ख़ास बात है तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। और बहुत सारे श्रोता अभी भी लिखे जा रहे हैं, बलराज साहनी, लीला नायडू और अनुराधा, लीला नायडू, हीरो बलराज साहनी। और एक श्रोता लिख रहे हैं बरसात में हमसे मिले तुम सजन, ये वाला गाना भी सुनवाइएगा। और शैलेंद्र के गीतों से सजा जो प्रोग्राम चल रहा है ये तो बहुत ही सुरीला हो गया। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि हम यहाँ प्रसारण आपके मुंबई से हो रहा है और मैं यहाँ नोएडा में सीधे दिल्ली से इस कार्यक्रम को सुन रहा हूँ, आपकी पूरी बात भी सुन पा रहा हूँ लेकिन इसमें बीच में विज्ञापन आ जाता है तो नहीं सुन पाते। इसके लिए एक सलाह है कि आप मोबाइल के ऐप पर जाकर ये प्रोग्राम सुन सकते हैं। चलिए अब अगला गीत सुनते हैं फिल्म आम्रपाली से। आपको पूछना है फिर एक बार हीरो हीरोइन का नाम।

आम्रपाली फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है गाना. सुनील दत्त और वैजयंती माला होती हैं. यहाँ फिर एक बार स्त्री मन की पीड़ा समाहित है इस गाने में भी. इंतज़ार है और एक दर्द है. एक श्रोता ने लिखा है कि शैलेंद्र उस फकीर का नाम है जिसने वेल्डिंग की चिंगारियों से अपनी कलम बनाई और आम आदमी के बहते आंसुओं को गीतों में पिरो दिया. भूख, गरीबी, रेलवे वर्कशॉप की धूल में तपकर निकला ये हीरा जब राज कपूर के साथ मिला तो हिंदुस्तानी सिनेमा की रूह ही बदल गई. आवारा हूँ से लेकर सजन रे झूठ मत बोलो तक उन्होंने कागज़ पर सिर्फ शब्द नहीं उकेरे बल्कि इंसानियत का सबसे सच्चा दर्द उड़ेल दिया. वे दिल से लिखते थे इसलिए उनकी लिखी हर एक पंक्ति में आम इंसान का दिल धड़कता है. सरल, बेहद खूबसूरत और हमेशा हमेशा के लिए. एक श्रोता ने लिखा है कि शैलेंद्र फिल्म असली नकली में अपार प्रेम की जो स्त्री मन की पीड़ा उकेरते हैं वहीं पर तेरा मेरा प्यार अमर फिर मुझको क्यों लगता है डर ये बात लिखते हैं. वहीं पर फिल्म रात और दिन के एक गीत में शैलेंद्र जीवन की एक अजीब उलझन में फंसी एक स्त्री के भटकाव को गीत में पिरो दिया है. आवारा है मेरे दिल जाने कहाँ है तेरी मंजिल. हिंदी सिनेमा में स्त्री मन के कुछ सबसे नाजुक गीत शैलेंद्र की कलम से निकले हैं. महिला किरदारों की तड़प, उनकी तमन्नाओं, उनके ख्वाबों के नगमे, ये बात शैलेंद्र को एक विशिष्ट गीतकार बना देती है. गाइड में विवाह से परे अपने प्रेम को स्वीकार करती एक बेबाक स्त्री की पुकार है मैं हूँ गुबार या तूफान हूँ फिल्म गाइड की बात. और बहुत सारे श्रोताओं ने गाइड फिल्म के गानों की बात लिखी है वो हम आगे कहीं सुनवाएंगे. लेकिन ख़ास बात यह है कि इबारत में जो शब्द हैं उन्हीं शब्दों से आपको खोजने हैं शैलेंद्र के लिखे गाने. अब ज़रा ये गाना सुनिए, फिल्म का नाम बूझिए और हीरोइन का नाम भी बूझिए. यहाँ पर फिर एक पुकार है.

मधुमति फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र की रचना, सलिल चौधरी की धुन थी। और हमने आपसे पूछा था हीरोइन का नाम, सभी श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया। हीरोइन का नाम तो बताए, हीरो का नाम भी, वैजयंती माला और दिलीप कुमार। हमने एक सवाल आपसे पूछा था जब हमने अनुराधा फिल्म का गाना सुनवाया था कि एक और कौन सा गाना जिसमें महिला की तड़प है उस स्त्री की, लीला नायडू की। सभी श्रोताओं ने लिखा है कैसे दिन बीते कैसे बीती रहती है पिया जाने ना। सच में ये गाना गाने के बोल को ध्यान से अगर सुने और पर्दे पर अगर हीरोइन को देखें तो एक अजब सा दर्द है, जो अनकहा दर्द लीला नायडू आंखों से अभिनय करती हैं। और बहुत सारे श्रोताओं ने ये गाना भी लिखा, जाने कैसे सपनों में खो गई अखियां। यहाँ पर एक और स्त्री मन की पीड़ा एक और गाने में है। क्या आपको याद आ रहा है वो गाना? आशा भोसले की आवाज़ में है और सलील चौधरी का संगीत है। फिल्म का नाम बता दें या आप खोज लेंगे वो गाना। आज की इबारत में वो लाइन भी है, सावन की फुहार। चलिए हम इतना आपको बता देते हैं, फिल्म का नाम भी नहीं बता रहे हैं। आशा भोसले की आवाज़ में स्त्री मन की पीड़ा है और पर्दे पर भी वो दर्दीला सा दृश्य है। एक स्त्री है जो तड़प कर अपने पति से मनुहार कर रही है। याद कीजिए वो गाना और लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता लिख रहे हैं कि शैलेंद्र जी वो अजीम शख्सियत थे जिन्होंने न सिर्फ देश आज़ाद होने से पहले बल्कि देश की आज़ादी के बाद भी अपनी सुंदर रचनाओं से आवाम के जहन को सदैव परिष्कृत किया। शैलेंद्र जी ने अपने गीतों के जरिए आम इंसान के जज्बात, उनके एहसासात को सच्चाई के फलक पर चमकते हुए सितारे की तरह सजाया। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि शैलेंद्र जी के लिखे गीतों में चाहे जितना भी दुख या संघर्ष हो लेकिन उसका अंत हमेशा उम्मीद और हौसले पर होता था। वे जिंदगी से हार मानने की सीख कभी नहीं देते थे। जब उन्होंने रोमांटिक गाने लिखे तो उनमें भी मर्यादा और समर्पण की भावना थी। अब बताइए आपको कौन सा गाना याद आ रहा है? हमें लगता है कि तीसरी कसम फिल्म ऐसी फिल्म है जो हम सबके जहन में बसी हुई है और आप सबके जहन में। आप बताइए आपने ये फिल्म देखी, कहाँ देखी, कब देखी, कोई ख़ास याद हो तो वो भी साझा कीजिए। बहुत सारे श्रोताओं ने इस फिल्म का जिक्र किया है लेकिन हाँ अलग अलग गाने सुझाए हैं श्रोताओं ने। बहरहाल देखिए हम जो गाना सुनवा रहे हैं क्या ये गाना आप सबने सोचा था? और साथ में हमें हीरोइन और हीरो का नाम भी बताइए। एक पहेली ये हो गई, एक पहेली हमने आपसे पहले पूछी थी कि स्त्री मन की तड़प है एक गाने में, आशा भोसले की आवाज़ है, जिसमें फुहार शब्द आता है, सावन शब्द आता है। आज की इबारत से ही हम पूछ रहे हैं वो कौन सा गाना है? फिल्म का नाम, गाने के बोल टाइप कीजिए। फिलहाल बताइए हीरो हीरोइन के नाम, फिल्म तीसरी कसम।

तीसरी कसम फिल्म का ये गाना था, मुकेश की आवाज़, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, और जैसे दिल चीर के रख देता है ये गाना, ऐसे लगता है कि भीतर कहीं धस के स्थित हो गया है, ठहर गया है, ये गाने से बाहर हम निकल ही नहीं पाते हैं। ऐसे जज्बात साझा कर रहे हैं हमारे श्रोता भी। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में सुनती थी इस गीत को, तब भले इस गीत में छुपे भाव को इतनी समझ ना हो पर अच्छा लगता था। और एक श्रोता ने लिखा है कि चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार, बहुत ही मार्मिक पंक्तियाँ हैं, सजनवा बैरी हो गए हमार। आज एक श्रोता ने लिखा है कि आज कोई गाने की फरमाइश नहीं, बस आप बजाते जाइए, आज जो भी बजेगा सब मेरी पसंद का होगा। ये बात तो बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है, और सच कहें तो आज हमें भी ऐसा ही लग रहा है कि आप जो भी गाने लिखते जाएंगे सब मेरी पसंद के होंगे, और हमें खोजने में, ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही कि कौन सा वाला गाना हम बजाएं, कौन सा वाला छोड़ दें। एक श्रोता ने लिखा है कि आजा रे मैं तो कब से खड़ी इस पार, सली चौधरी ने इस गाने में लोक संगीत और शास्त्रीय धुन का जो मिश्रण किया है रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लता जी की सुरीली गूंज और बीच बीच में गूंजते कोरस और वाद्यों का प्रयोग सुनने वाले को एक अलग ही सम्मोहक लोक में ले जाता है। ये हिंदी सिनेमा का इतिहास का मील का पत्थर है जिसे आज भी लोग सुकून से सुनते हैं। फिर एक श्रोता लिख रहे, सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे। दरअसल ये ऐसी पंक्तियाँ हैं जो लगता है कि बस कभी दर्द भरे क्षण रहे हो तो ये गाना हम सब के लिए ही लिखा गया हो, और ऐसा दर्द भरा लम्हा कहीं न कहीं हम सबके जीवन में आता ही है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के कुछ गीत इनमें से हो सकते हैं, बरसात में हमसे मिले तुम, सनम बरखा बहार आई, अंखियों में प्यार लाई, और बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारे गाने लिखे, हम कितना बताएं और कितना पढ़ें, आप खुद विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर सुन लीजिए, देख लीजिए। और हाँ, हमने आपसे सवाल पूछा था कि जो एक गाना है स्त्री मन की पीड़ा का गाना है, दिल चीर देने वाला गाना है, वो फिल्म है जागते रहो। सभी श्रोताओं ने बूझ लिया है, ठंडी ठंडी सावन की फुहार, पिया आज खिड़की खुली मत छोड़ो, सभी श्रोताओं ने, मतलब एक नहीं कई श्रोताओं ने। और तीसरी कसम फिल्म के गाने के लिए एक श्रोता ने लिखा है कि जी देखी है एक बार थिएटर में एक बार टीवी पर, राज कपूर और वहीदा रहमान होते हैं पर्दे पर, और ये हमने पहली भी आपसे

पूछी थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि तुम्हें याद करते करते जाएगी रेंसारी। पर्दे पर अभिनेत्री वैजंती माला ने इस गीत को जीवंत किया है। महल के सन्नाटे, जलते हुए दियों की मध्यम रोशनी और उनके चेहरे के संयमित भाव, बिना चीखे चिल्लाए आंखों की खामोशी से बात कहना। दरअसल ये वो अभिनेत्रियां हैं जो आंखों से अभिनय करती थीं। वैसे वैजंती माला तो एक बहुत सुंदर नृत्य के लिए भी जानी जाती हैं, तो जो वाचिक अभिनय होता था उनका अलग ही होता था, मिसाल कायम करती थी। बहरहाल अब बात चली है इस गाने की, मतलब जो हमने आपसे पूछा था, ठंडी ठंडी सावन की फुहार, जागते रहो फिल्म का, तो यही गाना सुन लिया जाए। लेकिन एक कमेंट और तब तक हम पढ़ देते हैं। बिना शंकर जयकिशन के शैलेंद्र को हिंदी सिनेमा का आज तक का सबसे बड़ा गीतकार कहा जा सकता है। उनके गीतों को खुरच कर देखें तो आपको सतह के नीचे दबे नए अर्थ प्राप्त हो सकेंगे। क्या बात है भाई, खुरच कर देखें। सच में जब वो गाने लिखते हैं तो लगता है कि दिल को सचमुच खुरच दिया है। चाहे वो जब बेटी के विदा होने की बात हो, चाहे स्त्री मन की पीड़ा हो, या फिर आम जिंदगी के जीवन का दर्द हो, या आम इंसान की बात हो। चलिए, बात तो चल रही थी जागते रहो फिल्म के इस गाने की, सुनिए और बताइए किसकी है आवाज, संगीतकार का नाम भी बताइए। आपको इस गाने में क्या खास बात लगती है, फटाफट बता सकते हैं तो बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि मोबाइल ऐप पर हमें पहली जो होती है प्रश्न देर से मिलता है, तो हम ऐसा करेंगे कि अगली बार तुरंत जवाब न देकर दो गाने के बाद देंगे।

जागते रहो फिल्म का गाना था और आशा भोसले की आवाज़, सलील चौधरी का संगीत। श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आशा भोसले की रेशमी और जादुई आवाज़ ने इस गाने में जान फूंक दी है। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव, मासूमियत और दर्द झलकता है जो रात के सन्नाटे

सन्नाटे और बारिश के मौसम पर पूरी तरह फिट बैठता है। एक श्रोता ने लिखा है कि शैलेंद्र का अर्थ पर्वत का राजा होता है। ये शब्द संस्कृत के दो शब्द शैल और इंद्र से मिलकर बना है। इसे शक्ति, स्थिरता और विशालता का प्रतीक माना जाता है। शैलेंद्र के व्यक्तित्व में ये गुण पाए जाते हैं, जिसे उनके द्वारा लिखे गए गीतों में हम महसूस कर सकते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं, महान गीतकार जिनके गीत समाज को जीना सिखाते हैं, वैल्यू देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। महान गीतकार कविराज शैलेंद्र जी के 103वें जयंती पर शत शत नमन। और बहुत सारे गानों के बोल इन्होंने लिखे हैं। अब बारी है इस गाने की, जिसके लिए सभी श्रोताओं ने लिखा है, फिल्म श्री 420। बताइए कौन है कलाकार, हीरो हीरोइन का नाम बूझिए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जल्द से लिखिए। अगला गाना कौन सा सुनवाया जाए, जरा ये भी आप लिख सकते हैं तो लिखिए। अभी शैलेंद्र के लिखे बहुत सारे गाने हमारे प्लेलिस्ट में शामिल हैं। कौन सा गाना सुनवाएं आप बताइए।

0: राज कपूर और नरगिस, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। फिल्म थी श्री 420 और बहुत जल्द जवाब आया श्रोताओं की ओर से। एक श्रोता ने लिखा है कि गीतकार शैलेंद्र के गीत सिर्फ शब्द नहीं थे, वे आम आदमी के दिल के धड़कन थे। उनकी कलम में गांव की मिट्टी की खुशबू थी, शहर की तन्हाई का दर्द, इसलिए उनके गीत आज भी उतने ही ताज़ा लगते हैं और सुनने और गहराई से समझ सकने वाले को अपनी ही कहानी सी लगते हैं। तो अब आगे बढ़ा जाए और अगला गाना सुना जाए। बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का भी जिक्र किया है। देखिए कि आपको सुनना था या नहीं, आपके पसंद का था, जरा सुनिए और बूझिए फिल्म का नाम।
1: दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ।
0: फिल्म का नाम आपको बूझना है।

0: इधर खोल दो चुप न बैठो कोई गीत गाओ।
1: फिल्म थी रात और दिन, मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ें। इस फिल्म का नाम हमने पूछा था, श्रोताओं ने जल्द से जल्द बताया, सही बताया। और एक सवाल हमारे जहन में आया है, वो ये कि शैलेंद्र पर एक गाना फिल्माया गया था जिसमें जिस फिल्म में वो बैंजो बजाते हुए गाना गा रहे हैं, वो गाना आपको याद है या फिल्म का नाम याद है तो बताइए, या फिर गाना या फिर फिल्म का नाम, जो भी आपको याद हो बताइए कि एक फिल्म है जिसमें वो बैंजो बजाते हैं, मतलब वो फिल्म में खुद हैं शैलेंद्र। तो ये श्रोता ने, हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी है, तो हम उन्हीं की ओर से ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं और इसका सही जवाब आप दे पाएंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि पर्वत चट्टानों के वे समूह हैं जो हमें अपने अडिगता सिखाते हैं। शैलेंद्र जी स्वभाव से ऐसे ही सहज और सजग इंसान थे, लेकिन वक्त ने उन्हें भी अंततः राज कपूर के दर पर लाकर खड़ा कर दिया और वो फिर अपनी ही मेहनत से अपने मुकाम को हासिल किया। एक श्रोता ने लिखा है कि गीतकार शैलेंद्र की कलम ने गीत नहीं लिखे बल्कि उन्होंने जीवन को सुर और भावनाओं को आवाज़ दी। उनकी लेखनी में आम आदमी की खुशियाँ भी है, संघर्ष भी और प्रेम की कोमल अनुभूति भी। अब एक ऐसा गाना आपको सुनवा रहे हैं जो आपको यादों के गलियारे में ले जाएगा। बताइए कौन सी याद ताज़ा हुई है गाना सुनकर, और हीरोइन का नाम ज़रा पूछिए। फिल्म बंदिनी, कौन सी याद ताज़ा हुई और कौन है हीरोइन?

बंदिनी फिल्म का ये गाना था और बहुत ही मार्मिक गाना था। नूतन होती है पर्दे पर और सभी श्रोताओं ने इसे लिखा है कि रुला देने वाला गाना है, ख़ास तौर से लड़कियां और औरतें तो ये गाना सुनकर रोती हैं। एक हमारी श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि हर राखी पर यह गाना हमें रुला देता है और ये गाना सुनकर स्त्रियां क्या पुरुष भी रोते हैं, आंखें नम हो जाती हैं। और हमने एक पहली पूछी थी फिल्म की, कौन सी वो फिल्म है जिसमें शैलेंद्र बैंजो बजाते हुए पर्दे पर नज़र आते हैं, बूट पॉलिश फिल्म चली कौन सी देश गुजरिया तू सज धज के, लेकिन ये बोल गाने के हमारे इबारत में नहीं, इसलिए ये गाना हम आपको सुनवा नहीं रहे हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं संगम फिल्म का ये गाना। ज़रा हीरो हीरोइन का नाम पूछिए और साथ में याद कीजिए क्या किसी दोस्त ने आपके साथ किसी तरह की दगाबाजी की या किसी दोस्त ने आपका साथ निभाया। चाहें तो आप बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, टिप्पणियां आपकी सुरक्षित रहती हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर।

संगम फिल्म का गाना मुकेश की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, वैजंती मारा राजेंद्र कुमार और राज कपूर होते हैं इसमें हीरो हीरोइन, और सभी श्रोताओं ने इसका जवाब बिल्कुल सही दिया, बहुत फास्ट दिया क्योंकि वक्त कम है और ये गाना हम आपको पूरा नहीं सुनवा सके हैं। और भी बहुत सारे गाने हैं जो छूट गए हैं, जिसे आप सुनना चाहते थे, हम सुनवाना चाहते थे, लेकिन वक्त की पाबंदी। बस आज का सुरीला सफ़र बस इतना है। कार्यक्रम का सफ़र आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

दोस्तों नमस्कार। हर इंसान खुश रहना चाहता है, लेकिन ये बात भी हम सभी जानते हैं कि हमेशा खुश रहना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते रहते हैं। लेकिन हम अपने मन को अधिक शांत और खुश रखने की आदत ज़रूर विकसित कर सकते हैं। खुश रहने के लिए हम हर दिन उन बातों के लिए आभार व्यक्त करें जो हमारे जीवन में अच्छी हो रही हैं।

दोस्तों, जब हम खुद को खुश रखने के छोटे छोटे से तरीके अपनाते हैं तो ये हमारे मूड को भी बेहतर बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। हम नियमित व्यायाम, योग, ध्यान, भरपूर निद्रा और संतुलित भोजन की आदत बनाकर भी खुश रह सकते हैं। दूसरों की मदद करें और सभी के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करें। अपनी तुलना दूसरों से करने की बजाय अपने विकास पर ध्यान दें। छोटी छोटी सफलताओं और खुशियों का आनंद लेना सीखें। यही है खुश रहने के बहाने।

ईश्वर में आस्था और प्रार्थना से भी मन को शांति मिलती है और जीवन में खुशियाँ भी इससे मिल सकती हैं। यदि कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है तो प्रतिदिन वो कुछ समय अपने पूजा, जप तप या ध्यान के लिए ज़रूर ही निकालते हैं। लेकिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे प्यार करो, खुश रहो और कभी किसी का दिल ना दुखाओ। ये बात बड़ी छोटी सी है पर अपने आप में ही खुश रहने का बहुत सुंदर आधार भी है। जब हम इस तरह की सोच के साथ जीते हैं और साथ ही अपनी भी देखभाल करते हैं तो मन अधिक संतुलित और प्रसन्न रहता है। याद रखिए, खुश रहने का मतलब ये नहीं कि हमें कभी दुखी ना हो। इसका मतलब है कठिन समय में भी उम्मीद, धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखने की कोशिश करते रहना।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति

0: शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर्स से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे के अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जा रहे हैं। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच सहयोग के सभी स्तरों की समीक्षा के लिए विदेश मंत्रियों की समन्वय समिति का गठन किया जाएगा।
1: हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे।
0: ताशकंद में प्रधानमंत्री ने रणनीतिक साझेदारी की 15वीं वर्षगांठ और उज्बेकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की 35वीं वर्षगांठ के सहयोग पर भी खुशी व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश इस वर्ष सामरिक भागीदारी की 15वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं। मुझे खुशी है इस विशेष अवसर पर हम अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने जा रहे हैं। हम इसके अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करते हुए आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
1: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: श्री मोदी ने कहा कि जब किसी

0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगस्त का महीना अपने साथ देशभक्ति के कई रंग लेकर आया है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान ने देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया है।
1: वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई। इस साल सूर्य पर तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक तिरंगा लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं।
0: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया।
1: आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। आंध्र प्रदेश में कडप्पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं, उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2500 लोग अब भी लापता हैं। आपदा के पांचवें दिन भी बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान आज नेपाल पहुंचा। एक रिपोर्ट।
3: बचाव दल ने अब तक 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटेकाशी नदी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। भोटेकाशी नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 275 भारतीय और अन्य देशों के भारतीय मूल के 128 लोग भी लापता हैं। वहीं चीन में 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पेइचिंग में भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार प्रभावित लोगों के शीघ्र बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाल और चीन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। भारत से 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान काठमांडू पहुंच चुका है। इससे पहले भारत ने 3 विमानों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी थी। समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
0: उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल तथा उत्तरी उड़ीसा तटों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ये वर्षा तेज हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज और कल उड़ीसा में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी है।
4: बालेश्वर जिले में बाढ़ का नया खतरा पैदा हो रहा है, क्योंकि लगातार बारिश के बीच सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार राजघाट पर नदी का जलस्तर 8.84 मीटर था, जबकि इसका खतरे का निशान 10.36 मीटर है। झारखंड में गुलडीह बैरेज के 6 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे नदी का जलस्तर और बढ़ने की चिंता बढ़ गई है। जलेश्वर, भोगराई और बालियापाल के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ सकती है। IMD का कहना है कि अगले 48 घंटों के दौरान इस सिस्टम के और मजबूत होने और पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर

0: @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: ये आकाशवाणी है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। जर्मनी की टीम 2023 में जीते अपनी ट्रॉफी को बरकरार रखते हुए चौथा खिताब अपने नाम करना चाहेगी, वहीं स्पेन अपना पहला हॉकी विश्व कप खिताब जीतने की कोशिश करेगा। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मानधना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीम है। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें संस्करण में भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना नागरिकों के बीच लोकप्रिय हो गया है। उन्होंने युवाओं से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए समर्पित करने का आग्रह किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने कहा कि सरदार हुकुम सिंह एक कुशल राजनीतिज्ञ, कानूनी विशेषज्ञ और उत्कृष्ट वक्ता थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि विश्वसनीयता पत्रकारिता का मुख्य नैतिक मूल्य है। उन्होंने आज केरलम की अलप्पुरा में दैनिक केरल कौमुदी की 115वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने नैतिकता का उल्लंघन किए बिना 1 सदी से अधिक समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवा करने के लिए केरल कौमुदी को बधाई भी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। देश भर के 18 परिसरों के स्नातक छात्र इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। उपभोक्ता कार्य विभाग ने कानूनी मापन भारतीय मानक समय नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इन नियमों के अनुसार भारतीय मानक समय को देश में कानूनी, प्रशासनिक, वाणिज्यिक और अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए एक समान समय संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाएगा। ये नियम राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से 180 दिन में लागू होंगे। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बहुत कम ब्याज दर पर ऋण देने वाले दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य इकाई ने बताया कि यह पत्र फर्जी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर्स से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह।

0: दिल अपना और प्रीत पराई इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। सदाबहार नगमे प्रोग्राम में हम याद कर रहे हैं जाने माने गीतकार शैलेंद्र को, आज उनकी जयंती है।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।

0: बूट पॉलिश फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और तलत महमूद की आवाजों में, रचना थी शैलेंद्र की, संगीतकार शंकर जयकिशन।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।

0: उसने कहा था। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ों में। शैलेंद्र की रचना थी, सलील चौधरी की धुन थी। आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित था। आज उनकी जयंती है, उन्हीं की याद को समर्पित था ये कार्यक्रम। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्ररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करें।
3: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: मीडिया सेवा पर भी उपलब्ध है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी पर आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत केवल एक औपचारिकता नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग, विशेषकर युवा, इसका हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए आगे आने वाले लोगों की सराहना की।
2: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज?

0: स्टेज हो, क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो। हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: पीएम स्वनिधि योजना की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि करीब 46% महिलाएं पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थी हैं।
0: पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से आगामी त्योहारों के मौसम में वोकल फॉर लोकल बनने का आग्रह भी किया। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने नाहन विधानसभा क्षेत्र की रामाधौंड पंचायत में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत युवाओं को नशे से दूर रखने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की अपील के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय उत्पादों को अपनाने व स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित करने का संदेश भी दिया। राज्य सरकार प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में 500 करोड़ रुपए की लागत से मशीनों का आधुनिकीकरण कर रही है। ये जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिला में नादौन विधानसभा क्षेत्र के कांगू में आज जन स्वास्थ्य शिविर के शुभारंभ पर दी। उन्होंने कहा कि आधुनिक मशीनरी से मेडिकल कॉलेजों में डायग्नोस्टिक सेवाएं सुदृढ़ और सटीक होंगी और लोगों को तुरंत सही उपचार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार 300 मेडिकल ऑफिसरों को के अलावा 200 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और 150 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्तियां करने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जोल सप्पड़ में मेडिकल कॉलेज का जल्द ही शुभारंभ किया जाएगा। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता आज शिमला स्थित लोकभवन में प्रदेश उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों और 1 अतिरिक्त न्यायाधीश को शपथ दिलाएंगे। चिराग भानु सिंह और भूपेश शर्मा को न्यायाधीश जबकि योगेश जसवाल को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह शाम 5 बजे आयोजित किया जाएगा। चंबा जिला पुलिस ने विश्व प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा के सफल संचालन के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये यात्रा 4 सितंबर से 19 सितंबर के बीच चलेंगी। लोगों की सुरक्षा व बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की जाएगी। जिला पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि यात्रा क्षेत्र को 13 सेक्टरों में बांटा गया है जहाँ पुलिस व होमगार्ड के करीब 500 जवान तैनात रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग में 4 नाके भी स्थापित किए गए हैं जहां गहन छानबीन के बाद ही यात्रियों को प्रवेश दिया जाएगा। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज बादल छाए हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ने से अधिकांश स्थानों पर वर्षा के दौर में कमी आई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है। कल 31 अगस्त को कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। प्रदेश के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना का दूसरा चरण 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा और अन्य सामाजिक पहलुओं से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। सिरमौर जिला में भी नौरादार क्षेत्र के बर्फबारी प्रभावित 10 गांव में इस दौरान जनगणना की जाएगी। उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने सभी लोगों से जनगणना कार्य में सहयोग की अपील की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। सामयिक चर्चा सुनिए, विषय है प्रधानमंत्री बीमा योजना हर किसान के लिए किफायती। वाचक स्वर राकेश शर्मा का।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरे देश में सूखे, बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि, कीटों, बीमारियों, बुआई ना हो पाने, स्थानीय आपदाओं, जल भराव से होने वाले नुकसान, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और फसल कटाई के बाद होने वाले खास नुकसानों के खिलाफ व्यापक कवरेज देती है। 2026-27 के लिए 12,200 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की मुश्किलों से निपटने की क्षमता को मजबूत बनाने, उनकी आजीविका की रक्षा करने, आय को स्थिर करने और जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देने का काम जारी रखे हुए हैं। पिछले 10 वर्षों में खरीफ 2016 में योजना की शुरुआत से लेकर रबी 2025-26 तक 92,46,00,000 से अधिक किसान आवेदनों का बीमा किया गया है। तकनीक पर आधारित पहलों जैसे कि प्रौद्योगिकी आधारित उपज आकलन प्रणाली और वेदर इन्फॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम को शामिल करने से दावों का निपटारा तेज, निष्पक्ष और अधिक पारदर्शी हो गया है, जिससे ये योजना और भी मजबूत हुई है। फसल बीमा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, खराब मौसम, कीटों और बीमारियों से होने वाले फसल के नुकसान से बचाता है। समय पर मिलने वाला मुआवजा किसानों को आय में अचानक आई कमी से निपटने, नुकसान की भरपाई करने, कर्ज चुकाने और अगली फसल के मौसम में निवेश करने में मदद करता है। ये खेती की क्षमता को मजबूत करता है, आजीविका की रक्षा करता है और अनिश्चित स्थितियों में भी कृषि उत्पादन को जारी रखने में मदद करता है। 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को फसल बीमा के दायरे में लाया जा सके। इसमें बुआई, रू से पहले से जोखिम, मौसम के बीच में पड़ने वाले खराब हालात, ओलावृष्टि, बाढ़, भूस्खलन जैसी स्थानीय आपदाएं और फसल कटाई के बाद चक्रवात, बेमौसम बारिश और अन्य तैत खतरों से होने वाले नुकसान शामिल हैं। ज्यादा से ज्यादा किसानों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रीमियम की दरें कम और किफायती रखी गई हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल के नुकसान के खिलाफ आर्थिक सुरक्षा देता है और किसानों की आय को स्थिर करने में मदद करता है। ये आधुनिक खेती के तरीकों, फसल विविधीकरण और उत्पादन से जुड़े जोखिमों का सामना करने की क्षमता को भी बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तय पात्रता शर्तों के आधार पर किसानों को व्यापक फसल बीमा कवरेज देता है। किसानों के पास बीमा योग्य हित, जमीन के वैध दस्तावेज या पट्टे के समझौते या राज्य विशेष की पहल से तय जरूरतों के अनुसार बुआई के प्रमाण पत्र होने चाहिए और उन्हें तय समय सीमा के भीतर आवेदन करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आमतौर पर फसल को नुकसान या बर्बादी पहुंचाने वाली सभी प्राकृतिक और मौसमी आपदाओं के लिए व्यापक जोखिम कवर देता है, बशर्ते फसल का बीमा कराया गया हो और तय समय सीमा के भीतर बीमा कंपनी को प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया हो। हालांकि गैर नोटिफाइड इलाकों में फसल का नुकसान, कवर की गई फसल की लाइफ साइकिल के बाहर होने वाला नुकसान और लापरवाही या इंसानों की वजह से होने वाले या रोके जा सकने वाले रिस्क से होने वाले नुकसान इसमें कवर नहीं किए जाते। इसके साथ ही सामयिक चर्चा संपन्न हुई। नमस्कार।
2: अभी आपने सुनी, विषय था प्रधानमंत्री बीमा योजना हर किसान के लिए किफायती। राकेश शर्मा का। हमारे
4: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3:10 हुए हैं। आइए एक बार फिर आपको ले चलें आकाशवाणी मुंबई, जहां से आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

0: कभी।
1: आंखें फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार थे साहिर लुधियानवी, संगीतकार रवि। पसंद करने वाले हमारे श्रोता तालुका उमरखेड़ ढाड़की से राम गाडेकर, सुनीता गाडेकर, अभिजीत कोमल और अभिषेक। इसी गाने को पसंद किया था अकोला से प्रकाश खेडकर, मीरा ताई खेडकर, आरती, संतोष, पूजा और इनका पूरा परिवार। फरमाइश आई थी इन सभी की भी बड़वाह मध्य प्रदेश से, प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली और मुमताज मोहल्ला नौगछिया से, दूसराइल अंसारी, रहमान अंसारी, आलिया अंसारी, सीरत और इनका पूरा परिवार। आइए अब सुने अगला गीत।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गाना। संगीतकार थे राहुल देवबर्मन, फिल्म थी पड़ोसन। पसंद करने वाले श्रोता, हमारी ये यवतमाल विदर्भ से चंदा किशन कुमरे, निकिता गणेश कुमरे और इनके परिजन सतीश अनेजा, विमला अनेजा, शेफाली, शेफी अरोड़ा, मास्टर डेविस चंडीगढ़ से और खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, निर्मल वर्मा, अनुज, आयुषी, अर्चना, शेख, मूसा, राजकुमार और इनका पूरा परिवार।

पेश थी आप सभी श्रोताओं की। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत मिथिल और प्रगति नाचानी की। परेल लाइन से सुरेश राजपूत, सुमित राजपूत, शानू, अभय, मनंत, मन्नत, पुष्पा, सुदेशना और निम्मो की फरमाइश थी।

आकाशदीप फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था, चित्रगुप्त ने धुन बनाई थी और पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। गणेशपुर गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू और इनके अन्य साथी, ग्राम लुहेड़ी महोबा बुंदेलखंड से जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रिया, रेणु, दिव्यांशी, रोनिका और रागिनी यादव की फरमाइश थी।

मुकद्दर का सिकंदर इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में, अनजान के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, फरमाइश थी आप सभी की अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफसल, मोहम्मद ए कमल, नफीसा परवान और जाहिदा की फरमाइश थी। इसी गीत को सुनना चाहते थे ग्राम पाहरा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंछोर, चंद्र किरण, प्रीति, छाया और इनके परिजन, जमशेदपुर से तस्नीम कौसर, ईशिता साहनी, प्रियंका मोदी, सोनल वली और अफजल मलिक, और इसी गाने की फरमाइश आई थी कोल सिटी बरकाकाना से अफजल ताज, शाहिन सुल्ताना और इनके मित्रगण, गजानन लिखार, मनोज लिखार, संजना लिखार ने फरमाइश भेजी थी महाराष्ट्र सामंगी से। इसी के साथ आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

0: यह है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक आई लव यू नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। मूल गुजराती लेखक हैं प्रदीप सोलंकी, हिंदी नाट्य रेडियो रूपांतरकार सुनंदा नायक, निर्देशिका तनुजा कानड़े। तो सुनते हैं नाटक आई लव यू दूसरा और अंतिम भाग।
2: यही बैठो ना, मुझे यही अच्छा लगता है।
3: All right, as you wish.
4: माफ कीजिएगा, आपको जरा डिस्टर्ब कर रहा हूँ।
3: क्या है?
4: कुछ नहीं, कुछ ना होने की वजह ही मुझे यहाँ खींच लाई है।
3: ए भाई, आप क्या चाहते हैं?
4: देखो भाई, मैं समझता हूँ आप लोगों की शादी नहीं हुई है।
2: ये आपने कैसे समझ लिया?
4: जिस तरह से आप लोग प्यार भरी बातें कर रहे हैं ये देखकर।
3: मगर आप हैं कौन?
4: मैं एक लेखक हूँ, नाटक लिखता हूँ।
3: भूखे हो? पैसा चाहिए, लो।
4: मेरे युवा मित्र, मैं भूखा हूँ किंतु भावना का, पैसे का नहीं। तुम एक महीने में जितना नहीं

0: करते उतना खर्च मैं एक दिन में करता हूं, लेकिन बात करने की जगह नहीं।
1: आप क्या चाहते हैं?
0: लिखते लिखते मैं एक स्थान पर अटक गया हूँ।
2: स्याही खत्म हो गई?
0: नहीं, मेरी समझ खत्म हो गई।
1: इंटरेस्टिंग, आप बैठिए ना।
0: मेरे नाटक का हीरो अमर कवि है, कलाकार है, बड़ा भावुक आदमी है। बिजली के तार पर बैठने की आदत हो जाने वाले पक्षी को जिस तरह वृक्ष की डाल पर बैठना पसंद नहीं, उसी तरह अमर को जीवन में सुखी होना पसंद नहीं। वह दुख को मानता है, सुख को सहन करता है।
2: हाँ, जैसे इस तरह हम सहन कर रहे हैं।
0: आपके रंग में भंग करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किंतु मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आ गया।
1: आप जरा भी संकोच न करें वीरेन, इफ यू डोंट माइंड।
2: डार्लिंग, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है।
0: मैं आगे बढ़ूं?
1: ओह श्योर।
0: यू सी, अमर के पास सब कुछ है, लेकिन वह ऐसे जीता है जैसे उसके पास कुछ भी ना हो। वह बड़े शर्मीले किस्म का है। उसकी किसी दूसरे गांव में ट्रांसफर हो गई है। नए वातावरण में वो अटपटा सा महसूस करता है, कुछ बुझा सा जाता है। उसकी सृजन शक्ति कुंठित सी हो जाती है। अचानक नए गांव में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, सुनीता,
2: और वो उसे प्यार करने लगता है, यही ना?
0: नहीं, मैंने पहले ही बताया ना कि अमर और लोगों से बिल्कुल अलग किस्म का है, और उसे किसी के प्यार की जरूरत नहीं। वो बरसों से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसे अपना सुख देकर उसका दुख खरीद सके।
1: सुनीता बहुत खूबसूरत थी।
0: देखने में नहीं, लेकिन दिल की बहुत सुंदर थी। अमर सुनीता से मिलता है तो उसे महसूस होता है उसकी बरसों की खोज आज पूरी हो गई, युगों की प्यास आज बुझ गई। वह सुनीता के सानिध्य में रहकर एक अमर काव्य की रचना करना चाहता है।
1: फिर?
0: लेकिन अचानक सुनीता अमर से बोलना छोड़ देती है।
1: पर क्यों?
0: बस इसी का कारण मैं दे नहीं पा रहा हूं।
1: एक आइडिया, बस आप यू दिखा दीजिए कि अमर सुनीता से कुछ नामुमकिन मांग करता है और सुनीता गुस्से से उसके साथ बोलना बंद कर देती है।
0: नहीं, अमर का करेक्टर ऐसा नहीं है।
2: तो फिर सुनीता अमर से कुछ बड़ी रकम की मांग करती है और अमर के ना देने पर वो रूठ जाती है।
0: दोस्त, इन दोनों व्यक्तियों के जीवन में पैसे का कोई महत्व नहीं।
1: तो सुनीता के अहम को धक्का लगे ऐसा कुछ अमर ने किया होगा?
0: एग्जैक्टली, लेकिन उसने ऐसा क्या किया होगा, यही तो मेरी पहेली है।
2: सॉरी, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता।
0: अरे किसी को भी कुछ सुझाई नहीं देता, मैंने कितनों से पूछा।
2: अरे कुछ भी वजह बता के नाटक पूरा कर डालिए ना।
0: ऐसा नहीं किया जा सकता।
2: क्यों?
0: क्योंकि अमर सुनीता के बगैर जी नहीं सकता।
2: अब ये तो आपके हाथ में है ना, आप नाटक में थोड़ा अदल बदल कर दीजिए।
0: नाटक होता तो जरूर कर देता।
1: मतलब ये नाटक नहीं है?
0: नहीं, अमर आत्महत्या करने की सोच रहा है।
1: आत्महत्या?
0: हाँ, आज ही।
2: आज ही से क्या मतलब? वो तो आप लिखेंगे तभी ना करेगा।
0: लिखूंगा तभी नहीं, करूंगा तभी।
1: यानी कि?
0: यानी कि मैं ही अमर हूं।
2: अरे अरे सुनिए तो, अरे कहाँ जा रहे हैं आप?
1: अरे कहाँ गया? माय गॉड, कमाल का आदमी था ना।
2: मुझे तो कोई पागल लगता है, सभी लेखक थोड़े बहुत पागल होते ही हैं। जाने दो, सारा मूड बिगाड़ दिया इसने।
1: लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है कि उन दोनों के बीच दरार पड़ गई?
2: ओफो, स्त्री और पुरुष के संबंध के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक छोटी चिंगारी भी आग बन सकती है।
1: रियली?
2: हाँ, अगर दोनों ना समझ हो तो।
1: मान लो हम दोनों के बीच कभी ऐसा हो गया तो?
2: हो ही नहीं सकता, हम दोनों इतने नादान थोड़ी हैं। तुम तो बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हारी समझदारी पर तो मुझे नाज है, दैट्स व्हाई आई लव यू डार्लिंग। तुम भी कहो ना आई लव यू। अरे कहो ना।
1: हाँ।
2: अरे कहो ना, तुम भी मुझे चाहती हो।
1: अरे इसमें क्या बोलना,
2: एक बार, बस एक बार कह दो ना आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार है।
1: मुझे इस तरह का छिजलापन पसंद नहीं। वी आर नॉट टीनेजर्स, वी आर मैच्योर्ड।
2: ओके ओके, ये तो जस्ट मेरे मन की शांति के लिए।
1: प्लीज, मुझे इस तरह बोलना नहीं पसंद।
2: अरे भले ही ना पसंद हो, लेकिन क्या मेरी खातिर तुम नहीं बोलोगी?
1: अरे लेकिन शादी के पहले सब बोलने में क्या रखा है?
2: अरे शादी नहीं हुई तो क्या हुआ?
1: बेकार की जिद मत करो।
2: मतलब तुम नहीं बोलोगी?
1: ना।
2: मैंने कहा इसलिए नहीं बोल रही हो या तुम्हें पसंद नहीं इसलिए नहीं बोलना चाहती?
1: मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि मैं ये नहीं बोलने वाली।
2: ऑल राइट, लेट अस कॉम्प्रोमाइज। मुझसे नहीं कहना है तो कोई बात नहीं, बात बात में कहती जाओ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। अच्छा एक काम करो, इस पेड़ से कहो।
1: वीरेन, लगता है तुम पागल हो गए हो।
2: हाँ, तुम्हारे प्यार में।
1: चलो अब हम चलते हैं।
2: तो क्या तुम मेरा कहना नहीं मानोगी?
1: मुझे इस तरह की दादागिरी बिल्कुल नहीं पसंद।
2: अरे मगर इसमें दादागिरी की क्या बात है?

0: दादागिरी ही नहीं, जबरदस्ती है जबरदस्ती। तुम मुझे अपनी गुलाम समझते हो? I hate you.
1: लीना मेरी बात तो सुनो। अरे उसके बाद रास्ते में तो ये जो मुंह में आया वो कहने लगी। मैं कुछ कहूं, इससे पहले ही टैक्सी में बैठकर निकल गई। टैक्सी में बैठकर मुझसे पता है क्या कहा? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, हमारे संबंध खत्म। उस हरामखोर लेखक ने सारी आग लगाई है।
0: लेखक को नहीं, अपने आप को गाली दो।
1: तुम ही कहो ना मौसी, आई लव यू कहने में इसका क्या जाता है?
0: जब देखो तब लव लव लव मत करो, मैं नहीं बोलने वाली।
2: लीना लीना ये झूठी जिद है।
0: आप तो उसी का पक्ष लेंगे क्योंकि आप भी मर्द है ना।
1: ओहो, इसमें मर्द औरत के संबंध की बात कहां से आ गई? अरे ये तो आपस में रिलेशन की बात है।
0: रिलेशन की नहीं, तुम्हारे बेकार की मांग की।
1: देखो लीना, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती।
0: मगर इतना याद रखो कि एक हाथ से तमाचा जरूर पड़ सकता है।
1: तुम लड़ाई झगड़े की भाषा में बात मत करो, जरा शराफत सीखो।
0: मैं ये किसी भी जन्म में नहीं बोलने वाली। अगर शादी से पहले ही तुम अपनी मनमानी करवाना चाहते हो तो मुझे भूल जाओ।
1: अरे लीना लीना, हेलो, अरे सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो?
3: दोनों पागल हैं।
2: तुम्हारे ही रिश्तेदार हैं। कहाँ जा रही हो भाई?
3: देखूं तो सही, ये लोग क्या कर रहे हैं?
2: अरे उनके रूम का दरवाजा बंद करके चली आओ, थोड़ी देर में सारी समस्याएं हल हो जाएंगी।
3: क्या तुम भी? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया।
2: ये साड़ी कब खरीदी?
3: कैसी लगती है?
2: समझ में नहीं आता है कि तुम साड़ी से जच रही हो या साड़ी तुमसे जच रही है।
3: अरे ये तुम क्या कर रहे हो?
2: रेखा, इन दोनों जवान लोगों को तुमने देखा? छोटी छोटी बात में नाना करते हैं। हम दोनों भले ही चाहे जितना लड़ें झगड़ें, लेकिन एक दूसरे की बात तो रखते ही हैं। जबकि आज की ये पीढ़ी एक छोटी सी बात के लिए अपना सब कुछ खो देने के लिए तैयार हो जाती है। इसमें किसका दोष है? समाज का, समय का या विदेशी संस्कृति का? आज भारत में
3: बस एक मिनट, ये टेबल लो।
2: टेबल किस लिए?
3: इस पर चढ़कर फिर भाषण दो, चुनाव में खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारा प्रचार करूंगा।
2: गुड जोक। तुम जब इस तरह से अकलमंदी की बात बोलती हो ना तो मुझे बहुत अच्छी लगती है।
3: अरे मैं तो हमेशा अकलमंदी की ही बात बोलती हूँ, मगर तुम अकलमंदी से सुनते नहीं हो।
2: आओ ना, अरे आओ ना, मेरा स्वभाव जरा अजीब है, लेकिन तुम मुझे यकीन है कि तुम मुझे सच्चे दिल से चाहती हो।
3: अब छोड़ो भी ये सब, चाचा जी आती होंगे।
2: नहीं नहीं, एक बार कह दो कि तुम मुझे चाहती हो।
3: क्या?
2: मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, आई लव यू।
3: हे भगवान, इनकी सब में भूत कैसे सवार हो गया? छोड़ो, मैं इस तरह का उल्टा सीधा नहीं बोलने वाली।
2: पति से मैं तुम्हें चाहती हूँ, ये कहने में उल्टा सीधा क्या है?
3: उल्टा सीधा यही है कि पति जबरदस्ती ये कहने पर मजबूर कर रहा है।
2: मैं तुम्हें मजबूर कर रहा हूँ? हैं? अरे मूर्ख, मैं तो तुमसे विनती कर रहा हूँ।
3: इतने जोर से ना कहो।
2: ऑल राइट, हाथ जोड़कर कहता हूँ।
3: हाथ अपने चाचा जी के सामने जोड़ना। तुम दोनों ने फोन करने वाले थे ना?
2: बात मत बदलो, तुम कहती हो कि नहीं?
3: छोड़ो, मुझे बहुत से काम है।
2: चुप रहो, मैं कहता हूँ, मेरे रोम रोम में आग लगी हुई है, मुझे और गुस्सा ना दिलाओ। मेरी खातिर बोलो कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
3: कल तुम्हें मुझे कहोगे कुएं में कूद जा तो क्या मैं कूद जाऊंगी?
2: मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ।
3: तो कितने हो?
2: इसमें कुएं में पड़ने की बात कहाँ से आ गई?
3: बात नहीं, लेकिन मैं तो हूँ ही कुएं में पड़ी हुई। तुम्हारे जैसे सिद्धी मतलब ही पति के साथ शादी करने का, गृहस्थी चलाने का मतलब ही यही है कि कुएं पड़े रहना हो।
2: जो मुंह में आए वो बकती जाती हो, एक ऐसा थप्पड़ देता हूँ मैं।
3: मारो, मार डालो मुझे। मुझे मालूम है तुम यही चाहते हो कि मैं मर जाओ।
2: लेकिन जिंदगी में मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है।
3: मैं चाहती हूँ, कई दिनों से तुम मुझे मारने की बात बहाना ढूंढ रहे हो। मारो मुझे।
2: रेखा,
3: हे भगवान, इससे अच्छा तो यही है कि तुम मुझे उठा लो।
2: मर गया, अब तो जरूर चाचा जी होंगे।

0: प्लीज शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप। चाचा जी को क्यों पुकार रही हो, रोना ही है तो मन में रो, मन में रो। देखो मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ, है ये लो, ये लो रुमाल से आंसू पोछ डालो, है लो, लो। अच्छा लो, मैं ही पोछ लेता। आइए आइए चाचा जी, कैसी है चाची जी?
1: अच्छी हूँ, तुम दोनों कैसे हो?
2: अरे मनोहर, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? अरे कौन रो रहा है? अरे रेखा बेटी, क्या हुआ?
0: कुछ नहीं, कुछ नहीं चाचा जी, वो जरा दिल भराया इसका बस।
1: हमें देखकर?
0: हाँ हाँ हाँ,
1: हमें देखकर दिल क्यों भराया?
2: मनोहर सच बताओ, क्या बात है?
0: अब कुछ भी नहीं, ये तो बस ऐसे बिना वजह।
1: बिना वजह किसी को रोना नहीं आता, समझे?
2: सीमा तुम्हारी चाची के।
1: क्या बिना वजह रोती हूँ मैं?
2: रोने के बाद तुम कुछ न कुछ वजह ढूंढ लेती हो, इसलिए बिना वजह रोने जैसा नहीं लगता। मनोहर बताओ बात क्या है?
0: अब कुछ नहीं। ओ भाई रेखा, पानी वानी भी लाओगी? नहीं जाओ।
3: अच्छा हो गया आप लोग आ गए, वरना ये तो मुझे मार ही डालते।
1: मनोहर बहू को क्या शिकायत है?
0: कुछ नहीं कुछ नहीं, वो जरा जिद्दी है, बस मैंने उसे चार शब्द कहने के लिए कहा तो उसने बस ये जंग छेड़ दी।
2: ऐसा तुमने क्या कहने के लिए कहा?
0: मैं तुम्हें चाहती हूँ।
1: गधा कहीं का, इस उम्र में शर्म नहीं आती?
2: इससे पहले तुमने उसे डांटा था?
0: नहीं नहीं, गलत मत समझिए, थोड़ी देर पहले मैंने रेखा से कहा था कि एक बार कहो आई लव यू, मैं तुम्हें चाहती हूँ।
2: तुम पागल वागल तो नहीं हुए ये कहने की कोई वजह?
3: लीजिए लीजिए पानी।
0: इसकी बहन की बेटी लीना, लीना।
2: कौन? प्राण जीवन की बेटी?
0: लीना के नाम के आगे प्राण जीवन नाम ही लगता है, यानी कि हाँ वही होगा, वही होगा।
2: क्या कहा तुमने?
0: मैंने आपके सवाल का जवाब दिया चाचा जी।
1: ये लीना वाली बात क्या है?
0: लीना और उसके होने वाले पति में इसी बात पर झगड़ा हुआ है, वो लोग साथ वाले कमरे में बैठे हैं।
2: अब भी लग रहे हैं क्या?
0: कमरा खुलने से मालूम होगा, मैं खोल कर देखा।
1: नहीं नहीं रहने दो, इतना बड़ा हो गया अभी तक मालूम नहीं। जवान लड़के लड़की बैठे हों तो उनको बैठे रहना देना चाहिए।
2: संक्षेप में तुम दोनों इन दोनों से मैं तुम्हें चाहती हूँ कहने की मांग कर रहे हो?
0: हाँ, हमें संबोधित करके कहे ये जरूरी नहीं, बस सिर्फ कहे तो काफी है।
1: अरे पागलो, ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने?
0: हाँ? कमाल है चाची जी, ये तो थोड़ी बहुत हंसी मजाक कमाल है।
2: हंसी मजाक करते करते दुखी हो गए ना, तुम्हारे इस नए जमाने से तौबा भाई। चलो रेखा बेटी
3: जी,
2: सब कुछ भूल जाओ और फर्स्ट क्लास मसाले वाली चाय बना कर लाओ।
0: हाँ, और मेरे लिए भी ना भूलना है।
1: कितनी सुशील सयानी बहू है मेरी, इसे इस तरह क्यों परेशान करते हो?
0: दो दिन साथ रहकर देखो तो मालूम पड़ेगा।
2: ये बात तो सच कही।
1: क्यों? तुम क्यों दखल देते हो बीच में?
2: अरे मनोहर, खूब याद आया भाई, हर बार की तरह इस बार भी थोड़े गुलाब जामुन और रसमलाई तो ले आना।
0: हैं? हाँ हाँ,
2: ये लो पैसे लो।
0: नहीं नहीं नहीं चाचा जी, आप ये क्या कर रहे हैं?
1: पैसे नहीं लेते हो तो हमें नहीं चाहिए।
0: अब लेकिन
1: अभी कुछ मत कहो।
0: आप भी चाची? अरे चाची की चप्पल, तू ही आ जा मेरे।
1: ये मनोहर को आज क्या हो गया? तुमने देखा दरवाजे के पास रहकर कैसी कैसी हरकतें कर रहा था?
2: अरे भाई छुट्टी के मूड में होगा।
1: पागल है, मैं कहती हूँ कि आखिर ऐसा बुलवाने की क्या जरूरत थी?
2: ना समझी है और क्या, नहीं तो मैं तुम्हें चाहती हूँ ये कहने में दोनों औरतों का क्या जाता था?
1: लेकिन इससे ये बुलवा कर दोनों आदमी को क्या मिलने वाला था?
2: अरे जवान है, कभी कभी मजाक भी सूझता है, छोटी सी बातों का बतंगड़ बन जाता है। अगर बात बढ़ानी ना हो तो इन छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। तुम क्या कहती हो?
1: तुम मेरी राय कब से मांगने लगे?
2: नहीं नहीं, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम कहो मैं तुम्हें चाहती हूँ तो तुम एक बार नहीं 100 बार बोलोगी।
1: लेकिन तुम ऐसा कहोगे ही नहीं।
2: लेकिन

0: मान लो कि मैं तुमसे कहूँ तो मुझे यकीन है कि तुम जरूर कहोगी।
1: क्यों, तुम इतने मूर्ख हो क्या?
0: और ना कहो, इतनी बेवकूफी भी तुम नहीं कर सकती। आ, आ, आ, आ, आ।
2: नमस्ते चाचा जी।
0: आओ बेटा, आओ लीना, बैठो बैठो।
2: हाँ मैं चाय लेकर आती हूँ।
0: रुको, मनोहर को मैंने बाहर भेजा है, उसे आने दो, तुम भी बैठो। ये तुम्हारी भांजी लीना है ना?
2: हाँ जी, और ये वीरेंद्र, लीना का होने वाला कोई नहीं।
3: अरे
0: तुम लोग सचमुच नादान हो, मनोहर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अरे इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बनाते हैं। देखो, अगर मैं तुम्हारी चाची से कहूँ कि रेल की पटरी पर जाकर सो जाओ तो एक मिनट में सो जाएगी।
2: अगर गाड़ी आने वाली हो तो भी?
0: हाँ तो भी, इसमें कोई शक नहीं।
2: I don't believe।
0: रमा चलो इन सबको सबक सिखा दो, एक बार सबके सामने मुझसे कह दो कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
4: हाय हाय, कुछ लाज शर्म है, सबके सामने ये कैसे कहूँ?
0: क्योंकि क्योंकि ये मेरा हुक्म है।
4: अरे तुम्हें तो पागलों की तरह हुक्म देने की आदत पड़ गई है, लेकिन तुम्हारा हुक्म मानता कौन है?
0: तुम सबके सामने मेरे हुक्म का अनादर करती हो।
4: सबके सामने तुम खुद ही अपनी आबरू की धज्जियां उड़ा रहे हो, तो मैं क्या करूं?
0: तुम पागल हो, हमें तो बस सबको दिखाना है।
4: मैं कोई लोगों के सामने दिखाने के लिए भैंस नहीं हूँ।
0: तुम नहीं, तुम्हारी अकल भैंस जैसी है, इसमें तुम्हें दिखाने की क्या बात है?
4: चिल्लाओ मत, चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारे माथे पर बल पड़ गए हैं।
0: वो तो तुमसे शादी होते ही पड़ गए थे।
4: 100 की सीधी बात एक है, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगी, समझे?
0: अरे तू तो क्या तेरा बाप भी बोलेगा।
4: खबरदार जो मेरे बाप को बीच में लाए।
0: बीच में नहीं, पीछे पीछे घुमा करता था अपना खोटा सिक्का चलाने के लिए, कहीं चला नहीं तो मेरे गले में बांध दिया।
4: तुम क्या अंधे थे?
0: अंधा नहीं, उदार था। उदार
4: उदार नहीं, उधार थे उधार। मेरे आने के बाद ही घर में दो वक्त का खाना पकने लगा, भूल गए क्या?
3: चाची जी प्लीज।
4: नहीं नहीं, पुरुषों से हम प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग हमसे जो चाहे कहलवा लो।
0: पागल है, कुछ समझती ही नहीं।
4: जबान संभाल कर बात करो, नहीं तो सबके सामने बेइज्जती कर दूंगी।
2: चाची जी आप जरा शांत हो जाइए,
4: अंदर चलो, मुझे इनकी शक्ल नहीं देखी जाती।
0: सुनो सुनो सुनो रामा, देखो देखो, एक बात याद रखना रामा, एक बात याद रखना।
3: लीना
2: क्या है?
3: तुम्हारे कारण ही घर में आग लगी है ये?
2: मैंने तो केवल लकड़ी जलाई थी, आग तो तुम्ही ने सुलगाई।
5: अरे ये सब कहाँ चले गए भाई?
2: अंदर है।
5: क्यों?
3: हम जैसा ही हाल है।
5: हैं? क्या बात करते हो, क्या हम जैसे ही ठन गई है?
3: हाँ।
5: वाह मजा आ गया।
2: आपको इसमें क्या मजा आया?
5: अरे भाई कौन कितने पानी में है ये पता चल गया ना?
2: मौसा जी सचमुच जोकर है।
3: तुम्हारे मौसा जी हैं?
2: मुझे मौसा जी कतई पसंद नहीं।
3: पसंद? ओ ओ गॉड, मुझे आज एक फोन करना था।

0: हेलो शांति मोटर्स, आई एम वीरेंद्र मेहता स्पीकिंग। अरे भाई मेरी कार का क्या हुआ? हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और कार्ड तो मैं आपको पिछले हफ्ते ही दे गया था, देखिए। हाँ हाँ वाइट, ऑफ वाइट कलर। लीना ने आपसे कहा था ना कल, यानी कि कल डिलीवरी मिलेगी। लीना अपनी कार की डिलीवरी मिलने वाली है कल।
1: रियली? ऑफ वाइट कलर की है ना?
0: एक मिनट, हेलो ऑफ वाइट कलर ही मिलेगा ना? हाँ
1: हाँ हाउ नाइस।
0: अच्छा अच्छा कल कब आऊं? लीना 4 बजे तुम फ्री हो ना?
1: ओह यस आई एम फ्री।
0: हाँ हेलो हम लोग 4 बजे आते हैं, सब तैयार रखिएगा। ओके ओके लीना एट लास्ट वी गॉट इट,
1: थैंक गॉड। चलो पूरे दिन में एक तो अच्छी खबर मिली। इस मैं तुम्हें चाहती हूँ मामले में तो पूरा दिन बर्बाद हुआ था।
0: अरे कह दिया
1: क्या?
0: अरे आखिर लीना ने कह ही दिया कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
1: आई लव यू वीरेन, आई लव यू।
0: अरे मौसा जी हमारा मामला तो निपट गया।
2: देखो देखो इन लोगों का निपट गया।
3: मूर्ख लीना।
1: अरे मौसी तुम तो उम्र में मुझसे बड़ी हो, उल्टा तुमने मुझे शाबाशी देनी चाहिए, उसके बदले तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो।
0: चलो मौसी तुम भी कह डालो।
1: कह दो ना, चाचा चाची को भी अच्छा लगेगा।
0: और क्या?
3: मुझे किसी को अच्छा बच्चा लगवाने की जरूरत नहीं है, और चाची जी तो मेरे ही पक्ष में है,
4: वो तो मैं हूँ ही। इनकी समझ

0: समस्या भी सुलझ गई।
1: अरे इस पगली ने कह दिया मैं तुम्हें चाहती हूँ।
2: चाची जी, चाचा जी, जल्दी आए। अरे भाई रेखा ने कह दिया मैं तुम्हें चाहती हूँ।
1: चलो सोफे से नीचे उतरो। लगता है तुम सब पागल हो गए हो। मैंने इस मतलब से नहीं कहा था कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
2: डियर डियर, एक बार नहीं, दो बार।
3: क्या हुआ मनोहर, क्या बात है?
2: चाचा जी, दो बार मैं जीत गया।
3: और मैं भी दो बार जीत गया।
2: चाची चाची, हमारा निपट गया। अब तो जीत छोड़ दो, एक बार मेरे चाचा जी की ओर तो देखो, बेचारे कितने नर्वस हो गए।
0: जाओ जाओ, रहने दो। तुम दोनों ने तो अपने मन से ही लगा लिया था। जीत की झूठी डींगे हाँक रहे थे। इन दोनों ने तो जनरल बात कही थी, तुम दोनों के लिए नहीं कहा था।
3: अरे जनरल तो जनरल ही सही, रमा तुम भी एक बार कह ही डालो।
0: तुम्हारे इन मूर्खता भरी बातों में मैं आने वाली नहीं। मैं इतनी नादान नहीं हूँ।
3: नादान नहीं, तुम तो अकल की दुश्मन हो। हर तरह से समझाया लेकिन समझती ही नहीं। तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैं कह देता हूँ, किसी भी अर्थ में कह दो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। नहीं तो आज से तुम्हारा मेरा संबंध खत्म समझो।
1: चाचा जी,
3: मर गया चाचा।
1: अरे ये क्या कह रहे हैं?
3: सारी दुनिया मेरी इज्जत मेरा सम्मान करती है, और ये दो कौड़ी की औरत इन बच्चों के सामने मुझे जलील करना चाहती है।
0: तुम कुछ भी कह लो, मैं टस से मस होने वाली नहीं।
1: क्या हो गया चाची जी? क्या हो गया इनको? क्या हो गया? क्या हो गया? देखो तो मनोहर, देखो तो क्या हो गया?
3: मनोहर,
1: जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। फोन करो, जल्दी करो।
3: डॉक्टर रहने दो।
1: क्या हो गया?
3: एक बार, सिर्फ एक बार, एक बार मेरे लिए कह दो।
1: क्या कह रहे?
3: रमा, सिर्फ एक बार मेरे लिए कह दो।
1: देखो मेरी तरफ, देखो, आंखें खोलो। मुझसे भूल हो गई।
3: एक बार कह तो।
1: मुझसे भूल हो गई, मैं तुम्हें चाहती हूँ। मैं सच्चे दिल से चाहती हूँ।
3: खाओ मेरी कसम
1: तुम्हारी। अच्छा, इसका मतलब तुमने
3: नाटक किया था।
1: चाचा जी आप भी।
3: बच्चों, इस नाटक से तुम ये सबक ले लो कि औरतों का मन जीतने के लिए नाटक करना आना चाहिए।
4: जलेबी और बूंदी के लड्डू कहाँ रखूं?
1: अरे आप।
2: अरे भाई, ये मिठाई वाला है, जरा शौकीन मिजाज वाला।

0: अच्छा मैं ही पूछ रहा था। आइए आइए चाचा जी।
1: मनोहर अजय कश्मीरी।
2: चलो सोफे से नीचे उतरो। लगता है तुम सब पागल हो गए हो। मैंने इस मतलब से नहीं कहा था कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
0: डियर डियर एक बार नहीं।
1: रेखा कामिनी कौशल।
3: मैंने तो केवल लकड़ियां लाई थी, आग तो तुम ही ने सुलगाई।
0: अरे सब कहाँ चले गए भाई?
3: अंदर है।
0: क्यों?
1: लीना भारती कानडे।
4: शांति मोटर्स, आई एम वीरेंद्र मेहता स्पीकिंग। अरे भाई मेरी कार का क्या हुआ? हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और कार्ड तो मैं आपको पिछले हफ्ते ही दे गया था। देखिए, हाँ हाँ वाइट, ऑफ वाइट कलर। लीना ने आपसे कहा था ना?
1: वीरेंद्र भूपेंद्र सिंह।
5: नादान नहीं, तुम तो अकल की दुश्मन हो। हर तरह से समझाया लेकिन समझती ही नहीं। तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैं कह देता हूँ, किसी भी अर्थ में कह दो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। नहीं तो आज से तुम्हारा मेरा संबंध खत्म समझो।
1: जगमोहन राजदीप।
6: जाओ जाओ रहने दो, तुम दोनों ने तो अपने मन से ही लगा लिया था। जीत की झूठी डींगे हाँक रहे थे। इन दोनों ने तो जनरल बात कही थी, तुम दोनों के लिए नहीं कहा था।
5: अरे
1: रमा लक्ष्मी शर्मा।
5: आना चाहिए।
7: ये जलेबी और बूंदी के लड्डू कहाँ रखूं?
0: अरे यार, अरे भाई ये।
1: और लेखक की भूमिका में थे प्रमोद दुबे। निर्माण सहयोग मेधा पिल्लई का था और इस नाटक को प्रस्तुत कर रही थीं तनुजा कानडे। ये नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।
8: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
9: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती।
8: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
9: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
8: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
9: जी।
8: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
9: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
8: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
9: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
10: कुछ दिल ने कहा,
9: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
11: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
9: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
11: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
10: हम चले तुम चलो सावन की हवा।
9: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
11: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब 3 चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
9: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
11: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
9: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
10: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
9: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
10: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
9: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय। बॉम्बे टॉकीज 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध।

0: विविध भारती
1: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। शाम के 4 बजने को हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से बातचीत। वामन केंद्रे को रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान

0: योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रंगमंच की दुनिया को अपनी कला से वामन जी ने सुशोभित किया। उनका ये सफर आज भी जारी है, उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केंद्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुने ये बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इसका तीसरा भाग।
1: मेरे सामने एक सवाल था, मैं जिस मूवमेंट से आया हूं, जिसकी आवाज मुझे बनना है, उसकी बर्निंग समस्या जो है, आज की जो समस्या है, ज्वलंत समस्या है, उसको मुझे उठाना है। और ये मैंने जो देखा है, बचपन से भी देखा है, रिसर्च भी किया है, मॉडर्न थिएटर और नेशनल इंटरनेशनल थिएटर का एजुकेशन भी लिया है, अब ये सब अगर वो मुझे मेरी कहानी कहने के लिए उपयोग में आता है तो मैं इसके शरण जाऊंगा। अगर नहीं आता है तो आई विल रिजेक्ट एंटायर माय ट्रेनिंग एंड फाइंड आउट समथिंग एल्स। तो मुझे किसी भी फॉर्म को इमिटेट, अनुकरण नहीं करना है, किसी भी फॉर्म से ये लेके, वहां से ये लेके, वो लेके कुछ गुलदस्ता बनाना है या खिचड़ी बनानी है। सबका आदर करते हुए मैंने ये तय किया कि मुझे मेरी कहानी के लिए नई तरीके की रंग भाषा खोजने की सोचनी पड़ेगी।
2: गजब।
1: कोई ये ना कहे कि मूवमेंट वहां से लिया, कोई यह न कहे कि कॉस्ट्यूम वहां से लिया, कोई ये न कहे कि म्यूजिक यहां से उठाया, लाइटिंग वहां से उठाई, ये कुछ मेरे नाटकों पे आक्षेप नहीं आना चाहिए। इसलिए पहला मैंने टेस्टिंग ग्राउंड जो तैयार किया वो था झुलवा।
2: जी, जो आप वहां से लौट के आते हैं।
1: जो मैं वापस से लौट के आया और 2-3 साल यहाँ का व्यावसायिक नाटक सीखा मैंने, वो भी रह गया था मेरा सीखना।
2: जी,
1: कि व्यावसायिक नाटक कैसे होता है, टूर कैसे होते हैं, हर शो ऑडियंस के साथ कैसे बदलता है। उसके लिए मैंने रिप्लेसमेंट एक्टर के हैसियत से काम किया 200-250, जिसमें लक्ष्मीकांत बेरडे से लेके वर्षा उसगांवकर से लेके सारे एक्टर थे।
2: ये एनएसजी से लौटने के बाद
1: मैंने 3 साल के बाद नाटक किया।
2: अच्छा।
1: मुंबई में आने के बाद तो पहला जो झुलवा मैंने किया वो मेरा टेस्टिंग ग्राउंड था, वो बर्निंग इशू है।
2: जी बिल्कुल।
1: महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे जो कम्युनिटी है, क्या कहते हैं, जोगते जोगतीनी कम्युनिटी है, वहां पर जो लोग मन्नत मांगते हैं इल्लम्मा गॉडेस से कि मेरा ये होने दो, पहली जो बेटी होगी मैं तुझे दान कर दूंगी, और उससे जो कम्युनिटी तैयार हो गई है वो है देवदासी। देवदासी का ही एक अलग रूप है, टेम्पल की देवदासी अलग है, ये ग्राम की सर्विस सेंटर है वो। मतलब देवदासी जो जोगतीन है उसके पास कोई भी पुरुष अगर उसके दरवाजे पे दस्तक दे तो वो किसी भी पुरुष की सेवा करना उसका काम है। वो मना नहीं कर सकती। उसकी उम्र क्या है, उसका गुलिया क्या है, उसका पलाना, वो कुछ नहीं, सी हैज टू बी देयर फॉर डिलीवरिंग द सर्विस। तो ये इशू को लेके मैंने नाटक करने की ठान ली। ये उपन्यास था उत्तम बंडू तुपे, एक सिपाही के हैसियत से आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में पुणे के ऑफिस में काम करते थे, उन्होंने ये लिखा था उपन्यास, और इस उपन्यास पे मैंने काम करने की बात ठान ली। और पहला ही नाटक जो संगीत नाटक अकादमी के किसी एक स्कीम के लिए, असिस्टेंस टू यंग थिएटर डायरेक्टर्स के लिए मैंने किया, और उसका ओपनिंग शो भारत भवन भोपाल में हुआ।
2: वाह वाह।
1: 10 अक्टूबर 1987।
2: गजब।
1: इसलिए भारत भवन का मेरा रिश्ता अलग है।
2: जी जी।
1: तो वहां पर ये पहला शो हो गया, और वहां पर कारण जी से लेके, अशोक वाजपेयी से लेके, ऑल हुज हु ऑफ इंडियन थिएटर वो नाटक देखने के लिए थे, और वो पहला ही शो हमारी पहली रन थ्रू थी।
2: ओहो।
1: पर वो जो गजब का शो हुआ है, उसके बाद हमने 400, 450 जितने भी शो किए होंगे उससे बेहतर शो नहीं कर पाए।
2: सयाजी शिंदे थे,
1: सयाजी शिंदे, सुकन्या कुलकर्णी, आदिति देशपांडे, गौरी केंद्रे, आशा शेल, अरे सारे लोग थे।
2: वाह।
1: भारत तांडेल, तो ये सारा 42 एक्टर स्टेज पे थे, फिर बैक स्टेज में 7-8-10 और थे। तो ये मुझे लगा कि वो पहली बार ऐसा सिद्ध हुआ कि नहीं यार, ये कहीं से कुछ नहीं लिया है, उनका कोई ना आपका म्यूजिक है ना डांस है, जो जैसा उसका अंग चलन होगा वैसा वो नाचता है। तो फिर सयाजी को जैसा अंग चलन था सयाजी नाचता था, सुकन्या का जैसा था वो वैसा नाचती, तो कुल मिलाकर एक नया एक्सपेरिमेंट हो गया कि एक बर्निंग ज्वलंत समस्या है आज महाराष्ट्र और कर्नाटक के सामने। हर साल कितना भी कानून किया जाए तभी 2-2.5 हजार बेटियां भगवान

0: को
1: समर्पित
0: चढ़ाई
1: हो रही
0: जाती,
1: थी।
0: समर्पित की जाती है और फिर उनका भविष्य किसी को नहीं मालूम। तो वो नाटक का पहले शो से लेकर निरंतर हर शो में पूरा हंगामा जहां वहां हुआ। नामदेव ढसाल जो मेरे बहुत अजीज दोस्त थे, वो पहली बार जब देखने आए, उन्होंने देखा नारायण सुर्वे, देखा पुल देश पांडे, जितने भी महाराष्ट्र में, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है जिसने वो नाटक नहीं देखा,
1: जी
0: या इवन देश में भी, हर जगह वो चला गया। तो नामदेव ढसाल ने मुझे फोन किया कि मुझे तेरा नाटक देखना है, मैंने बहुत सुना है उसके बारे में। आई है तो मुझे लगता है रविंद्र नाट्य मंदिर में आए थे वो जब देखा उन्होंने, तो वो खुद रोते हुए अंदर आ गए बैक स्टेज में,
1: जी
0: और उन्होंने गले लगाया और बोला कि तूने तो मेरी ही कहानी यहां मेरे सामने रखी है। एंड ही वॉज इन टीयर्स।
1: जी
0: उन्होंने उसके बाद भी 14 शो देखे, हर बार वो उसी माइंड सेट में आते थे। उन्होंने उसमें से कुछ शो इंटरनेशनल कोई साहित्य का करते थे उसमें लगाया, माधव गडकरी और दया पवार, और इन्होंने एक जागतिक मराठी परिषद हुई उसमें वो जानबूझ के शो रुका हुआ था तो करवाया। तो ये था कि उन्होंने एक वाक्य जो कहा तो मुझे बहुत पसंद आया, जो बहुत फेमस भी है, नामदेव जी ने जो कहा कि हम दलित पैंथर लगभग 35-40 साल होने को आए थे जो भी, कि जो इतना नहीं कर पाए ये नाटक उससे 2 कदम आगे चला गया।
1: वाह क्या बात है। यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है।

पुल देशपांडे ने भी कहा था कि जब वो मेरे बॉस थे एनसीपीए में, मैं जब एनसीपीए नौकरी कर रहा था तो तब मैंने वो नाटक किया था, तो उन्होंने देखा। और उस समय तो मिलने नहीं आए, यूजुअली बैक स्टेज में मिलने आते हैं लोग नाटक खत्म होने के बाद, वो आए नहीं। पर दूसरे दिन जैसे मैं ऑफिस गया तो सुबह इतने लोग मुझे बोल रहे थे, साहब आपका इंतजार कर रहे, इंतजार कर रहे। मैं

0: गया, मुझे लगा कि क्या बोलेंगे, और आते ही उठ के खड़े हो गए बॉस पुलो देश पांडे, क्या कहते हैं हमारे सबके आदर्श,
1: जी
0: और गले लगाया और बोले, रात भर नहीं सोया हूं, ना मैं सोया हूं ना उनकी पत्नी मिसेस देश पांडे, वो नहीं सोई, बोले हम रात भर तुम्हारी नाटक के बारे में बातें कर रहे हैं,
1: क्या बात है।
0: सोने ही नहीं दे रहा है तुम्हारा नाटक। तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक वाक्य कहा कि आज नहीं तुम्हें पता होगा कि तुमने क्या किया है, 5-10 साल के बाद पता चलेगा कि तुमने एक भारतीय रंगमंच पे एक नई रंग भाषा का नया आइकॉनिक एग्जाम्पल पेश किया है। तो ये सारा का सारा कहने का तात्पर्य इतना था कि जो मेरा चिंतन था या मेरी सोच थी कि मुझे कोई भी फॉर्म से कुछ भी उधार नहीं लेना है,
1: अपनी धारा बनानी है।
0: मेरी धारा बनानी है, और वो देखने के बाद, समझने के बाद, उस अनुभूति को पचाने के बाद लोगों को ये लगना चाहिए ये भारतीय है,
1: जी
0: जो मेरी खोज थी टू फाइंड आउट इंडियननेस इन इंडियन थिएटर, वो मेरे हर नाटक में वो भारतीय तो लगता है पर कहीं भी उसके रूट्स नहीं मिलते, और कुल मिला के लगता है ये तो भारतीय है सब। आई थिंक ये, चाहे वो गजब तेरी अदा या गजब तीछे अदा देखने के बाद, कि विमेन अगेंस्ट वॉर वो नाटक था।
1: जी
0: अब मैं ये सोच रहा था कि मुझे ये औरतों ने, युद्धखोर जो पुरुष है उनके विचार के खिलाफ किया हुआ विद्रोह है, एक निषेध है, तो उनके लिए मैं औरत को किस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से रिप्रेजेंट करूं। मैं 2.5 साल खोज रहा था कि फेमिनिटी किस इंस्ट्रूमेंट से मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा या ऑडियंस कर पाएगी। सारे इंस्ट्रूमेंट खंगाल के देखे पूरे देश के, एक भी औरत को रिप्रेजेंट नहीं करता। हारमोनियम पुरुष, तबला पुरुष, ढोलकी पुरुष, ढोल पुरुष, जितना भी है,
1: फिर
0: घुंघरू एक है, पर घुंघरू औरत ने खुद नहीं पहने हैं, वो भी पुरुष ने अपने जाने के लिए उसके पैर में बांधे हुए हैं। तो मैंने कहा ये भी तो नहीं हो रहा है,
1: जी
0: फिर क्या होगा। तो मेरी पत्नी गौरी केंद्रे घर में, किचन में, ये कोई उनका छोटा सा एक भगवान के दो तीन ये रखे, उन्होंने अपना आरती कर रही थी, तो छोटी जो घंटी है हाथ में लेके टिंग टिंग टिंग कुछ सुनाई दिया, और वो क्लिक हो गया, यार जिसकी मैं खोज कर रहा था
1: वो
0: शायद
1: ये
0: यही है।
1: वाह
0: और वहां से पता चला कि जो हमारी वाग्या मुरली की परंपरा है उसके हाथ में भी घंटी दे देते हैं।
1: हाँ
0: तो फिर उस घंटी को मंगाया हमने 10-12 घंटियां, फिर बजाने वाले को बुलाया, सुर वाले को बजाया, और अलग अलग तालों में सिर्फ 12 लड़कियों के हाथ में वो घंटिया देके हमने दिन भर बजवाया, और हमें
1: गजब,
0: लगा कि इससे हमारा नाटक हो जाएगा।
1: क्या बात है।
0: वो पूरा का पूरा नाटक उस घंटियों से बंधा हुआ है। वो जो औरतें हैं जो अपनी कहानी बता रही है, उनके प्रोटेस्ट की कहानी बता रही है, युद्ध जो आज की तारीख में तो बहुत रेलेवेंट है वो नाटक, उसकी कहानी बता रही है, और वो कहानी बता रही है, वो उसका जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो बेल है।
1: वाह वाह
0: वो श्रृंगार का भी रिप्रेजेंटेशन होता है, वो गुस्से का भी होता है, वो विद्रोह भी करती है वो बेल, और सबके हाथ में बेल है, और उसमें 12 ही औरतें रही, 12 पुरुष 12 औरतें, 25 लोग ऑन स्टेज है। तो फॉर्म इवॉल्व करने की मैं जो बोल रहा था आपको, कि रंग भाषा को ढूंढने का जो स्वभाव मेरा बन गया, फिर वो हर नाटक में रिफ्लेक्ट हो गया। रणांगण किया उसमें अलग तरीके से हो गया, 4 दिवस प्रेमाचे किया उसको अलग तरीके से हुआ, झुलवा में अलग था, जाने मन जो पूरा इतना फेमस नाटक जो किन्नरों के जीवन पे आधारित था, जो NSD रेपेटी ने, उसने तो पूरा देश में हंगामा कर दिया, उसके लिए उसका फॉर्म अपना अलग है, मेरे एक नाटक का फॉर्म दूसरे नाटक के लिए बेकार है।
1: अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जोल्वा ने जिस तरह का हंगामा किया था, क्या आपके लिए अगला नाटक करने से पहले इतनी बड़ी लकीर नहीं खींच गई थी जो आपको
0: बहुत
1: रोक
0: बहुत
1: रही थी?
0: ज्यादा था। मैं कुछ लोगों के नाम बता देता हूं, जैसे दुबे जी ने कहा था, सत्यदेव दुबे जी, पंडित सत्यदेव दुबे जी ने, मुझे नहीं कहा था, उनके जो शागिर्द है उनसे कहा था, कि झुलवा देखने के बाद बोले इस लड़के ने झुलवा तो बहुत अच्छा किया, पर इसको जो डायरेक्शन की जितनी भी व्याकरण आता था, जादू आती थी, डिवाइस ऐसे थे, सब इसने दांव पे लगा दिए, अब आगे क्या करेगा, ये आगे कुछ नहीं कर पाएगा ये। तो मैंने जैसे सुना, बहुत सीरियसली लेता हूं ऐसे क्रिटिसिज्म को, क्योंकि बहुत पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है वो, तो मैंने ये कसम खाई थी कि फिर ऐसा दोबारा नाटक नहीं करूंगा, मैं कुछ और करूंगा। और फिर 1 साल के बाद एक झुंझवारे से नाटक किया मैंने, जो डेड सीरियस और रियलिस्टिक नाटक था, जो पुल देश पांडे जी ने ही उसका रशियन नाटक का एडाप्टेशन करके मुझे दिया, और वो देखने के बाद

0: उनको लगा ये और कुछ है यार। फिर 2 4 5 10 नाटक होने के बाद सत्यदेव दुबे ही बोले, नहीं यार उस डायरेक्टर को ताड़ना संभव नहीं है, उसके पोटली में बहुत ज्यादा जादू है।
1: वाह वाह वाह वाह, सुंदर बात है।
0: हाँ
1: इतनी जादुई बात है, यहाँ एक गाना सुनते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं।

0: वामन केंद्र जी, बहुत ही दिलचस्प बातें आपकी इस पूरी यात्रा की हो रही हैं। मैं केरल प्रवास पर वापस लौटना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ बिंदु वहां पर छूट गए। 2 बरस आपने वहां बिताए
1: जी,
0: तो भाषाई समस्या जरूर आई होगी, उससे आप कैसे निपटे?
1: मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या तो भाषा की थी
0: जी,
1: क्योंकि जिन लोगों के साथ हमें काम करना था
0: जी
1: वो देहाती लोग थे वहां के।
0: जी जी बिल्कुल,
1: खासकर तैयम, मुडियेटू और पड़ेयनी, मतलब जैसे शहर में जाते थे, त्रिचूर में गए तो वहां अंग्रेजी तो समझने वाले लोग थे, तो हिंदी थोड़ी बहुत समझ लेते थे, लेकिन ये गांव में ठेठ जाके जो काम कर

थे तो हिंदी थोड़ी बहुत समझ लेते थे, लेकिन ये गांव में ठीक जाके जो काम करना था वो तो सारे मलयालम स्टैंडर्ड जो मलयालम है, प्रमाण मलयालम है, वो भी नहीं बोल पाते थे। उनकी अपनी एक बोली डायलेक्ट होती थी मलयालम की। तो इनसे कैसे निपटाया जाए? पहले 4 महीने

जो हमारी दुभाषी जो थी, वो महिला से हम एक एक एक एक एक एक शब्द या हमारे साथ काम करने वाले दूसरे भी दो तीन वहाँ के जो स्कॉलर्स थे उनके साथ बैठ के तुम्हारा नाम क्या है, फलाना क्या है, जो डे टू डे की लगने वाली भी 10-20 लाइनें रट लिए, याद कर लिए। और इसी तरीके से फिर वो जो कलाकारों की, और खासकर जिनका मैंने थोड़ी देर पहले वर्णन किया, वो कलाकारों के साथ काम करते समय जो गीता नाम की हमारी एक दुभाषी थी वो हमारे साथ रहती थी, वो दो रोल करती थी, वो रिसर्चर भी थी और हमारे लिए भाषांतर करने वाली भी रिसोर्स थी। उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, उसकी भी अंग्रेजी और हम सब की अंग्रेजी उतनी कमांडेबल अंग्रेजी तो थी नहीं, पर जितना टूटा फूटा होता था वो होता था। तो जैसे तैसे वो कलाकारों से थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो हर बार चार चार पांच पांच दस दस सेंटेंस, तो हमने ये तय किया था कि एवरीडे 10 वर्ड्स नया सीखना है फोनेटिकली, मतलब उच्चारण के तौर पर। और ऐसे करते करते इतना सा एक 100-200 शब्दों का संचय हुआ जिसमें से हम अपना काम निकालते थे उन कलाकारों से। पर ऐसा होता था कि चलो ये बात तो हो रही, उनके इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहे, शूट हो रहा है या पिक्चर निकाल रहे हम उनके, पर लिपि समझ में नहीं आती थी। तो हमारी जर्नी जो होती थी उसमें कौन सी गाड़ी किधर जा रही है, कौन से दुकान का क्या नाम है, वो नहीं होता था, समझ में नहीं आता था। तो एक दिन हम कहीं

0: वहाँ एक छोटा सा झोपड़ी टाइप होटल था, तो उसको हमने मलयालम में, टूटी फूटी मलयालम में कहा कि भाई जो कैनोनोर में आने वाली बस है, जाने वाली यहाँ से, वो आते ही हमको इन्फॉर्म कीजिए। तो उसने हाँ ऐसे कह दिया और वो अपना काम में लग गया। एक बस आ गई, दूसरी चली गई, कोई इधर से आई, कोई उधर से आई, और एक बस आई और वो चली गई। तो ये सब पतीले बर्तन समेटने लगा। तो हमने कहा कि तुम क्यों समेट रहे हो, हमारी बस कहाँ है, कैनोनोर जाने वाली बस कहाँ है? तो उसने कहा वो पोई
1: मतलब गई
0: गई, वो चली गई अभी। अब वो लगभग 1 फरलांग दूर चली गई थी, तो हम भाग के भी उसका पीछा नहीं कर पा रहे थे। तो बड़े हम निराश हो गए, डिप्रेस होने की स्थिति आ गई कि ये क्या है यार। और इसको समझाया तो शायद वो समझ नहीं पाया होगा ढंग से। तो अब क्या किया जाए, कहाँ रुके? रात को 9:30-10 बज गए, और गांव में, देहात में 9-9:30 बजे तो मध्य
1: अनेरा
0: रात से ज्यादा हो जाता है। अब जाएं तो कहाँ गए? तो मैं और हॉरेन, हमारे पास कैमरे होते थे, दो दो टेप रिकॉर्डर होते थे, पर वहां ऐसा कुछ डर नहीं था। केरल में लोग बहुत साफ सुथरे और अच्छे थे। अब धीरे धीरे हमने कहा अब कहाँ, यहाँ तो रुक नहीं पाएंगे रात भर, तो चलो जहाँ जिस घर में हमको खाना खिलाया है और हमारी जो दुभाषी रहती है उसी के घर वापस जाते। वो 3.5 किलोमीटर दूर था वहाँ से, और वो भी भात की खेती से, पैडी फील्ड से ढूंढते ढूंढते, ज्योग्राफी ढूंढते वहाँ तक जैसे तैसे पहुँच गए। तब 11:30 बज रहे थे।
1: और चावल के खेत तो गीले होते
0: चावल
1: हैं।
0: के खेत तो गीले होते हैं, बहुत खुशबूदार होते हैं, जब उसकी फूल गंध ये सब अनुभव करते जा रहे थे।
1: वाह
0: तो वहां चले गए तो हमारे कपड़ों को भी उसकी गंध आ रही थी, क्योंकि उसके बीच में से जैसे लगते हैं ना फ्लावर्स।
1: जी।
0: तो वहां पहुंचे और नॉक करते समय 10 बार सोचा यार ये लोग क्या समझेंगे,
1: क्योंकि उनकी आधी रात
0: वो
1: होगी
0: तो हम निकलते ही सो गए होंगे।
1: जी।
0: नॉक किया और सौभाग्य से वो जो हमारी दुभाषी लड़की थी वही बाहर आ गई, गीता नाम था उसका। तो गीता को बोला सॉरी गीता यार, ऐसा ऐसा हो गया, दिस इज व्हाट हैपेंड विद अस एंड नाउ वी डोंट हैव। तो ये लास्ट बस वाली हमने उसको बोला, और जो जाने के बाद उसने कहा बस पोई।
1: बस
0: हाँ,
1: पो
0: तो बोली अब क्या करोगे? तो हमने कहा कि आप घर वालों को डिस्टर्ब मत करो यार, हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो ये तो हमको देखना पड़ेगा। तो हमने कहा ये वरांडा है, इसमें हम रुकेंगे। तो उसने बोला नहीं नहीं मैं आपके लिए चाय बनाऊं, कॉफी बनाऊं। मैंने कहा कुछ मत बनाओ। तो मैंने कहा ये कि अगर आपको मदद करनी है हमको, तो ये काम करो, 1 घंटा आपकी जिंदगी का दे दो, और एक नई किताब दे दो, कोई नोटबुक दे दो। वो आई और मैंने कहा इस नोटबुक पे जितने मलयालम भाषा में अल्फाबेट्स है, स्वर है, व्यंजन है, उसके आकार उकार इकार सारे है, वो लिख लो। तो उसने वो सब लिख लिए। और मैंने कहा इसमें अंग्रेजी में भी लिखो, इसका मतलब क्या है। तो जब वो बोल रही थी तो मैं अंग्रेजी में भी लिख रहा था और बीच बीच में मराठी में भी लिख रहा था उसको, ताकि ये मुझे याद हो जाए। और जैसे हो गया, तो मैंने 1.25 घंटा लगा उसको ये सब करने के लिए। मैंने कहा आप जाके सो जाओ आप। सो हरेन भट्टाचार्य जो मेरा दोस्त था NSD वाला, तो वो भी थोड़ा सा झपकी लेने लगा। मुझे गुस्सा आया, वो बस चली गई क्यों? कि हमें लिपि नहीं आती, क्योंकि केरल में जितनी भी बसेस दुकानों की बोर्ड्स होते थे वो सब असल मलयालम लिपि में होते थे। तो फिर वो रात भर में लिखता रहा, ओ क्या है, ब क्या है, क क्या है, ड क्या है, ये क्या है, वो क्या है, लिखता रहा। और पूरी किताब खत्म हो गई, वो नोटबुक खत्म हो गई।
1: अरे बाप रे।
0: हाँ, तब 4:30-5 बजने वाले थे। तो अब आइडिया आया कि सब तो सारा सब बालू ही है, यहाँ सैंड है। तो एक डंडा ले लिया और उसमें से लिखना शुरू कर दिया
1: रेत के ऊपर।
0: रेत के ऊपर।
1: हे
0: और
1: बाबा
0: पहला नाम लिखा वामन, मुझे याद है अभी भी।
1: वाह वाह।
0: हाँ, और फिर सुबह उठते ही उसको हमने ये लिखना शुरू कर दिया। और कम से कम अब मेरी बस नहीं छूटेगी इतना तो मैंने अनुमान किया। एक रात में 56 अल्फाबेट्स याद कर लिए, लिख लिख के याद कर लिए, वो भी गुस्से में कि बस गई ना। इसका बहुत अहंकार को भी ठेस पहुंची, और हम ऐसा कैसा ये दूसरे शहर में आए हैं, दूसरे प्रांत में आए हैं, हमको पहले तो लिपि सीखना चाहिए था, भाषा सीखनी चाहिए। तो भाषा तो हमने बोलचाल की तो सीख ली थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी, पर लिपि सीखना रह गया। सो एक रात में लिखा, फिर आगे प्रैक्टिस क्या करता रहा, जो भी बोर्ड आएगा उसको पढ़ना, ट्रेन में जाए, बस में जाए, जो बोर्ड आते थे वो पढ़ते जाता था। और फिर जब कैनोनोर पहुंचा, वहां से त्रिचूर पहुंचा, तो पूरी दूसरी एक कॉपी ले ली और वो सब लिखता गया।
1: अच्छा,
0: अंत में इतना हमने पढ़ना शुरू कर दिया कि मलयालम मनोरमा जो डेली न्यूज़पेपर आता था उसको भी हमने खरीदना शुरू कर दिया।

0: या ताकि वो जो दिमाग में बैठा है थोड़ा बहुत वो वापस इरेज ना हो जाए।
1: वाह वाह,
0: तो ऐसे करके उस लिपि को एक रात में सीखा और फिर इसके बाद हमारी कोई बस पोई नहीं, साथ
1: क्या
0: रही।
1: सुंदर बात
0: और
1: है।
0: ये ऐसा अब मुझे लगता है कि जब आप आपके प्रांत के बाहर जाते हो, आपके कंफर्टेबल जोन से बाहर जाते हो, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैंने कहा ना कि डिटर्मिनेशन अगर आपका होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं।
1: लेकिन ये आपके भीतर जो डिटर्मिनेशन है, लोगों के भीतर चिंगारी होती है, आपके भीतर आ गए।
0: हाँ, मतलब वो पहले से ही है, क्योंकि नहीं होती तो फिर जिस गांव से मैं निकला हूं और जो आपके सामने बैठा हूं, ये जर्नी शायद कहीं आधे अधूरे में ही छूट जाती।
1: जी बिल्कुल,
0: यहां तक आना, और अभी भी वो चिंगारी बुझी नहीं है, वो आग बुझी नहीं है, अभी भी कुछ बहुत कुछ ऐसा लगता है कि अभी तो एक चौराहा पार कर लिया है यार, अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है और बहुत कुछ मीनिंगफुल करना बाकी है,
1: जी
0: उसकी तलाश में है तो ढूंढ रहे हैं,
1: जी
0: यही बात है वो।
1: यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।
2: मैं जिंदगी

0: गया।
1: आपके नाटकों की बातें चल रही थी, वो बात अभी थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ और मैं उस चैप्टर की तरफ जा रहा हूँ जीवन के जो बहुत सुनहरा और जज्बाती है, जहाँ आप नाटकों का प्रशिक्षण करने जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि कोई बुजुर्ग आएगा और वहां आता एक नवयुवक है जिसकी एक नवयुवती से मुलाकात होती है।
2: ओ, जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं मैं समझ गया हूं। तो मैं यहां जब आया, मुंबई वापस आ गया, मेरा सारा रिसर्च का प्रोडक्शन भी किया, रिसर्च भी किया, एग्जीबिशन लगा उसके ऊपर, मेरे रिसर्च मेथोडोलॉजी पे एग्जीबिशन

0: लगा, उसके ऊपर हमने कुछ साउंड एंड लाइट इफेक्ट से और स्लाइड शो किया।
1: जी
0: मेरे पश्चात मैं जब दिल्ली में नहीं था तो वो एग्जीबिशन एक महीना भर चालू रहा, क्योंकि मैं मेरा काम होते ही वापस मुंबई पहुंच गया।
1: जी
0: तो वो एग्जीबिशन रतन थियाम जी ने देखा, शो जो पल्स पे किया था ऑटोमेटिक डबिंग और ये करके, उस समय की जो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी थी।
1: जी
0: तो उन्होंने एक डायरेक्टर को, एनएसडी डायरेक्टर जब जो भी रहे हो, शायद मोहन महर्षि थे, उन्होंने कहा कि ये अद्भुत एग्जीबिशन है और मैं इसको इम्फाल ले जाना चाहता हूँ। और उन्होंने वो सब जब खत्म हो गया दिल्ली का, वो पैक करके पूरा इम्फाल में ले गए और इम्फाल में एक महीना वो सारे जो आर्टिफैक्ट्स थे, कॉस्ट्यूम्स थे, प्रॉपर्टी थी, जो हमने फोटोग्राफ्स लिए थे, उसके ब्लोअप थे, वो सारा एग्जीबिशन उन्होंने जाके मणिपुर में एक महीने के लिए लगाया।
1: वाह वाह,
0: ये भी उसका एक साइड इफेक्ट रहा। दूसरी एक बात है उससे संबंधित है, ये सब देखने के बाद, ये सारा जो काम देखने के बाद, हमारे जेएन कौशल साहब थे जो बहुत बड़े राइटर भी रहे हैं और जर्नलिस्ट भी रहे हैं और थिएटर हमारे एनएसडी के एल्यूमिनाई भी रहे हैं, उन्होंने ये सारा जो काम देखा मेरा, रिसर्च का देखा, फोटो देखी, ये देखी, वो देखी, एल्बम्स देखे, उन्होंने एक दिन अलकाजी साहब से जिक्र किया कि मैंने ऐसा कोई एक अद्भुत काम देखा है और मैं चाहता हूं कि आप उसको देखिए। तो उन्होंने कहा मैं देखना चाहूंगा। तो अलकाजी साहब ने कहा मैं तो उसके ऊपर किताब निकालना चाहूंगा, पब्लिश करना चाहूंगा, अगर ऐसा कोई अनयूजुअल काम है। तो खैर कुछ दिनों बाद अलकाजी साहब का मुझे मैसेज उन्हीं के द्वारा कि भाई अलकाजी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अलकाजी साहब से मिलने का मतलब तो बहुत बड़ा सपना हो गया, कि मैं जब एनएसडी में गया तब तो अलकाजी साहब वहाँ नहीं थे, वो तो इंग्लैंड चले गए थे या जहाँ भी और कहीं जगह जहाँ उनकी सिटीजनशिप है वहाँ गए थे। तो गया मैं, जब उन्होंने बुलाया तो उस समय वो सारे एल्बम तो वो एनएसडी के पास थे, वो एल्बम उन्होंने देख लिए थे और सामने रख कर बैठे थे। और जाते ही मुझे बुलाया और बोले यार क्या काम किया आपने, अद्भुत काम किया, ये क्या है, एक एक फोटो की तारीफ करते रहे और बोले मुझे इसके ऊपर किताब छापनी है। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हो गया कि मैंने कहा यार इतनी बड़ा अपॉर्चुनिटी कि अलकाजी साहब खुद उसको छापेंगे, उनकी पब्लिकेशन हाउस की तरफ से, उन्होंने उसके पहले एक ही किताब छापी थी उनकी मिसेस की थी, मिसेस अलकाजी की, जो कॉस्ट्यूम के ऊपर थी और बहुत गजब की किताब छापी थी उन्होंने, और बोले मुझे दूसरी किताब ये छापनी है। तो एक तरफ ऐसा लगा कि क्या कहते मन में लड्डू फूट रहे थे, पर दूसरी तरफ ये सारा तो सारे प्रॉपर्टी तो एनएसडी की है, उन्होंने एनएसडी का ये सब खर्चा किया है। तो मैंने बड़ा डर डर से वो कहा कि सर ये तो मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन ये सारा का सारा इसके जो राइट्स है, जो मैंने थेसिस सबमिट की है, ये फोटोग्राफ सबमिट की है, ये तो एनएसडी के पास राइट है, आप उनसे बात कर लीजिए, वो परमिशन देते तो मेरे जैसा खुश नसीब आदमी नहीं होगा। खैर उन्होंने कुछ बात की और फिर उनको जवाब दिया गया कि नहीं हम खुद छाप रहे हैं, उसके लिए हमने 80,000 रुपया अलग से रखा है बजट, 1984 की बात है
1: जी।
0: तो अगर किताब छप जाती तो अब तक तो बहुत बड़ी हो जाती, पर बाद में वो हुआ नहीं, जो भी होना होता है। अब वहां से हम चल पड़े मुंबई की तरफ और यहाँ आ गए, तो रोजी रोटी के चक्कर में एक दिन कमलाकर सोनटक्के जी, यहाँ पर सांस्कृतिक विभाग के संचालक थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा वामन आपको एक महीने के लिए अकोला जाना है, वहां पर हम ये कार्यशाला जो स्टेट कंपटीशन में जिनको पहले आते हैं मेडल मिलता है उनके लिए कार्यशाला करना चाहते हैं ऐसे एक्टर्स के लिए, और आप उसके लिए काबिल है मुझे पता है। तो हमने कहा चलो चल, हमें क्या काम मिल रहा है, तो हम चले गए अकोला में। तो वहां के जितने भी ये सारे विद्यार्थी थे जिसमें गौरी पढ़ते ये भी विद्यार्थिनी थी, तो उनको लगा था कि भाई अब ये वर्कशॉप करने कोई आ रहा है तो बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा। और जब मुझे इंट्रोड्यूस किया वहाँ के हमारे बड़े रंगकर्मी रहे हैं, तो वहाँ कोई गवर्नमेंट का जो आदमी था उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि ये भाई वामन केंद्र हैं और ये आपकी कार्यशाला लेने वाले एक महीना भर। तो कुछ लोग हंस पड़े,
1: दुबले पतले वामन
0: पतले वामन के बहुत सारे लंबे लंबे बाल है
1: जी,
0: हीरो टाइप या उस टाइप का हुलिया है,
1: दाढ़ी वाड़ी थी
0: थोड़ी बहुत
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है
1: जी।
0: तो कुछ लोगों ने यह तय किया, जिसमें से पहली महिला थी या विद्यार्थिनी थी, वो तब सौभाग्यवती नहीं थी
1: जी,
0: कुमारी गौरी पढ़ती थी, सरनेम था उनका। तो उन्होंने कहा कि आज का एक सेशन अटेंड करेंगे और कल से इस बच्चे से क्या सीखना है,
1: ओके
0: ये क्या सिखाएगा हमको। उद्घाटन वगैरह होना था, हो गए सब चले।

0: और क्लास शुरू हो गई और एक डेढ़ घंटे के बाद वो क्लास रुक गई। तब तक मैंने देखा कि सब हिप्नोटाइज्ड है कि क्लास की वजह से, जिस तरीके से मुझे पढ़ाने का थोड़ा बहुत तजुर्बा था, वहाँ केरल में भी मैंने कुछ किया था, फिर दिल्ली आके भी पढ़ाया था बच्चों के साथ, एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ मेरे रिसर्च बेस पे एक प्रोडक्शन भी किया था जिसमें पीयूष मिश्रा जिस बैच के विद्यार्थी है उस बैच के साथ मैंने नाटक किया था, या विभा चिब्बर जो एक्ट्रेस है वो भी उस बैच की थी, या दिनेश खन्ना है उस बैच के थे, तो उसके साथ मैंने उस रिसर्च बेस पे प्रोडक्शन किया था, तो उसका भी एक तजुर्बा था थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करने का। और जो लीडरशिप या स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या करना चाहिए वो सब मालूम था
1: बिल्कुल।
0: तो इन्होंने तय किया था कि हम इंटरवल के बाद जैसे होगा उसके बाद कल से नहीं आएंगे। पर वो जिस तरीके से क्लास हो गई, जिस तरीके से वो वर्कशॉप हो गई, तो फिर उन्होंने घर जाना तो छोड़ दो, तो अंतिम दिन उन्होंने ये कहा कि हम मुंबई आना चाहते हैं।
1: ये बात
0: उसका अंदरूनी करंट पकड़ के जो पूछना चाह रहे तो, और बाद में वो गौरी पढ़ते जो थी, कुमारी थी वो, कुछ सालों बाद सौभाग्यवती गौरी वामन केंद्रे हो गई।
1: लेकिन इसमें एक बहुत दिलचस्प किस्सा मुझे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि आप उन दिनों में जब शादी नहीं हुई थी तब भी उनको भूल गए और प्रैक्टिस करने चले गए नाटक की। मतलब जीनियस लोग इतने भुलक्कड़ होते हैं।
0: वो क्या हो गया कि हम वो सांस्कृतिक कार्य संचालनालय में कुछ मैं काम करने गया था और वहां से मुझे फिर शाम को रविन्द्र नाट्य मंदिर में रिहर्सल थी, तो उनको मैंने कहा कि मैं इस कार्यालय में जाता हूँ, तब तक आप जहांगीर आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन वगैरह देख लीजिए, डेढ़ दो घंटे बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा, वैसे मैं आपको वहां से पिकअप करूंगा या जैसे भी, हम फिर चर्चगेट जाएंगे और सीधा रविंद्र चले जाएंगे। पर ये काम करते करते ऐसा हो गया कि मेरे रिहर्सल में देर हो रही थी तो मैं तो चला गया, कहा रविंद्र नाट्य मंदिर, और मैं ये भूल गया कि मुझे किसी को पिकअप करना था या मैंने किसी को बोला है कि वहां पर खड़े रहो। तो एक दो घंटा हो गया, तीन घंटा हो गया, उसके बाद अचानक रविंद्र नाट्य मंदिर के वहां जो गेस्ट हाउस था वहां पर फोन आया कि वामन केंद्रे को बुलाइए।
1: ओके,
0: तो मैं वहां पहुंचा, वो गौरी केंद्रे थी, मतलब गौरी पढ़ते थी तब, तो उन्होंने कहा सर आपने ये क्या किया? मैंने कहा क्या किया? नहीं आप मुझे बोलने वाले थे, मुझे साथ में ले जाने वाले थे। अरे मैंने कहा मैं भूल गया।
1: यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है।

0: ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि जो मैं भूलता हूं।
1: आपकी भुलक्कड़ी के और भी किस्से हैं?
0: बहुत है। मतलब क्या है, ऐसा होता है ना, मैं जन्मदिन मुझे याद नहीं रहता।
1: हे भगवान। हाँ, अपना नहीं कि दूसरों का?
0: मुझे मेरा जन्मदिन मालूम नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने जाके उसकी खोजबीन करने की कोशिश की, मेरे माताजी से, पिताजी से, मेरे दादी से, मेरे बचपन के दोस्तों से। कुछ लोगों ने मेरी एस्ट्रोलॉजी की जो साइन होती है वो निकालने की कोशिश की, पर आज तक कोई कुछ पता नहीं चल पाया। तो मेरा जो साइन है वो जो उस दिन का जो बेस्ट होता है वो मैं मान लेता हूँ, ये मेरा भविष्य है आज।
1: जो जो सबसे अच्छा है,
0: जो सबसे अच्छा है।
1: पर गौरी जी का जन्मदिन भूल चुके हैं आप?
0: हाँ, मैं कई बार भूल चुका
1: हूँ भगवान।
0: क्योंकि जन्मदिन होता है और वो सेलिब्रेट करना होता है, ये मुझे लगता है कि बहुत सालों तक हमारे संस्कार में ही नहीं था। वो दिल्ली में भी मैं था तब भी नहीं था ऐसा कुछ, वो माहौल ही नहीं होता था हमारे यहाँ। घर में कुछ होता होगा, थोड़ा बहुत टीका विका लगा के कुछ उसको आरती उरती उतारते होंगे, लेकिन ये बर्थडे मुझे लगता है कि मल्टीनेशनल कंपनियों ने हमारे ऊपर लादा हुआ कार्यक्रम है। उनकी मार्केटिंग के लिए है ये। रिसेंटली बहुत पॉपुलर हो गया
1: जी।
0: तो पहले होता होगा राजा महाराजाओं का, गरीब का, श्रमिक का, किसान का, कहाँ बर्थडे होता है उसको कहाँ मालूम है। था, मेरे पिताजी चौथी क्लास पढ़े हुए थे, पर बर्थडे वगैरह मेंशन करना होता है, रिक्के रखना होता है, ये नहीं मालूम था। वो तो किसान है। वो जब कभी एक महीना दो महीने के बाद आपको बेटा पैदा हो गया, चलो भाई वहां के अपने पुरोहित के पास जाओ और फिर उसको पूछा कब पैदा हो गया। वो सूरज जो है ना वो कासरा भर वर आला होता,
1: लो
0: मतलब जो कासरा होता है बैलों को पकड़ने का, जकड़ने का, उसकी लंबाई है ना उतना सूरज ऊपर आया था आकाश में। मेरा जन्म तो सूरज से पहले हुआ है, सूरज उगने से पहले। तो वो सेवन स्टार होते हैं ना, सप्तर्षि, चलो उसको गांव की भाषा में तिकाट न बोलते हैं, वो तिकाट न कासरा भर वर आलेले होता। अब वो उसको भी काम आता ज्योग्राफी कब कितना कहाँ ऊपर आए, उसको जो लगेगा वो इम्पल्सिवली उसके आपका ये जन्म नाम है और आपकी ये जन्म राशि है कुछ ऐसा कह दिया होगा
1: जी।
0: तो वो भी करना होता है, इसलिए फॉर्मेलिटी थी। इसलिए मुझे मेरा जन्मदिन नहीं मालूम है। तो स्कूल में जब कोई ले गया होगा, पिताजी ले गए होंगे, तो मास्टर जी को जो इम्पल्सिवली लगा वो मेरी जन्म तारीख है।
1: वाह वाह।
0: और वो है 17 जनवरी।
1: अच्छा, वो मास्टर जी की मर्जी?
0: हाँ, मास्टर जी का पेन से जो उतरा वो मेरा जन्मदिन है।
1: गजब।
0: तो मैंने कहा वही मान लो ना, वही है, क्या मालूम है
1: जी, जी।
0: तो उसके बाद मेरे साथ इतने सारे दोस्त गांव आए जो इनको एस्ट्रोलॉजी में है, कि फिर उन्होंने बहुत ज्यादा पूरा गांव खंगालने की कोशिश की, घर तो खंगाल लिया, फिर उनको इससे ज्यादा कुछ पता नहीं लगा कि गुरुवार को इसका जन्म हुआ है और सूरज होने से पहले हुआ है, उषा काल के समय से पहले हुआ है, इतना ही पता लगा। अब उससे वो मेरा ये तुम्हारी ये राशि है, तुम्हारी वो राशि है, तुम्हारा फलाना है। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, उससे क्या फर्क पड़ा। तो ये है मेरे जन्मदिन की कहानी
1: जी। और गौरी जी के जन्मदिन भूलने की कहानी?
0: भूलने की कहानी तो हर साल होती है, उनको मैं बोलता हूँ एक हफ्ता पहले से बोलना शुरू करो।
1: अरे भगवान,
0: मेरा जन्मदिन आ रहा है, मेरा जन्मदिन आ रहा है। तो अब ऋत्विक देखता है ये सारा
1: जी।
0: गिफ्ट विफ्ट लाना, गिफ्ट देना माताजी को, पिताजी को, जो भी है। तो ऋत्विक उसमें बहुत, क्योंकि वो अगली जनरेशन का है तो उसको सब संस्कार है
1: जी।
0: तो उसका जन्मदिन हम सबको मालूम है।
1: हाँ।
0: जब ऑपरेशन हुआ वो कितने बजे पहला टैब बोला तो वो सब हमने लिख के रखा, पर वो मेरे समय पे अभी कुछ नहीं मालूम है कि मेरा जन्मदिन वाकई कौन सा है।
1: जी जी जी,
0: ये किसी को भी नहीं मालूम।
1: अच्छा, जीवन का वो कौन सा पल था जब आपने तय किया कि गौरी जी आपकी जीवन संगिनी होंगी?
0: मुझे लगा कि जब वर्कशॉप खत्म होके वापस निकल रहा था और मैं अकोला के प्लेटफॉर्म में आ गया ट्रेन पकड़ने के लिए मुंबई की, मेरा रिजर्वेशन था, तो सारे ही बच्चे आए उन्हीं के साथ, और उस

0: में आधे से ज्यादा रो रहे थे, पर सबसे ज्यादा गौरी जी रो रही थी और ये कह रहे थे कि आज के दिन रुक जाइए।
1: ओके
0: तो मैंने कहा एक दिन रुकने से क्या होगा। मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया कि नहीं यार, इतने दिन का, महीना सवा महीने का सबका साथ है। तो सभी गांव गांव जाने वाले थे, पूरे महाराष्ट्र से आए हुए थे, बोले सर हम भी आज एक दिन रुकेंगे, आप रुकेंगे तो। तो फिर मैं उतरा, वाकई उन्होंने मुझे उतारा नीचे।
1: अरे कैसे?
0: और फिर मैं रुका और फिर दूसरे दिन वही सिलसिला हो गया। मैंने कहा अब नहीं रुकूंगा, अब जिनको आना है वो मुंबई आए।
1: वाह।
0: और कुछ दिनों बाद गौरी पड़ते जी की चिट्ठी आई मुझे कि मैं 3 महीने के बाद मुंबई आ रही हूँ।
1: ओहो हो।
0: और मैं करियर करना चाहती हूँ नाटक में और आपके साथ काम करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इतना सीरियसली नहीं ली बात को। पर वाकई वो जब एक दिन आके सामने खड़ी हो गई, मैं आ गई हूँ सर।
1: अरे बाप रे।
0: तो मैंने कहा ये तो धर्म संकट आ गया। पर वो अपनी बहन के पास रहती थी आयरोली में, रबालेर थी, वहां रहती थी और वो हर दिन जाती आती थी। तो मैंने देखा, साल हो गया, 2 साल हो गया, वो थकती नहीं है। तो हर बार वो आती है, साथ में काम भी करती है, फिर वापस जाती है। मुझे मालूम था कि वो शादी करना चाहती हैं, वो तो हमारे दोस्त बोलते थे। तो एक दिन मैंने कहा चलो 6 जून को शादी कर लेते हैं। रैंडमली बोला 6 जून को शादी करते हैं, 7 जून को बारिश आती है तो बारिश के आगमन के साथ हमारी भी शादी हो जाएगी। ऐसे करके बोल दिया। फिर घर में बता दिया, मेरे घर में, कि माताजी, पिताजी, चाचा जी लोग आ गए, भाई और एक बहन आ गई। फिर उसके घर में बोला तो उसके भी माताजी, पिताजी और उसकी बहनें तो यहाँ, लगभग 2-3 बहनें तो यहीं थी, मुंबई में थी, कुछ लोग अकोला से आ गए। तो कुल मिला के दोनों साइड से 10-12 लोग थे। देवदत्त साबले हमारे जो मित्र हैं, उन्होंने ये दोनों फैमिली को अपने गाड़ी में डाला। हमारी शादी हो गई फिल्म सिटी में,
1: अरे
0: स्टूडियो नंबर 1 में।
1: ऐसा क्यों?
0: क्या कहते हो, नोटिस देना पड़ता है 1 महीने पहले। हमने बांद्रा कोर्ट में जाके जो भी होता है उसका रजिस्ट्रेशन का 1 महीने का बोल दिया। हमारे मित्र जो एक वहां के अधिकारी थे मोपलवार, बहुत अजीज दोस्त थे हमारे, तो उन्होंने कहा तुम्हारी शादी जब भी होगी वो मेरे घर में होगी, मतलब जहां मैं रहूंगा। तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी और वो बार बार ये कह रहे थे कि नहीं तुम्हारी शादी तो मेरे यहाँ होगी, और वो फिल्म सिटी में अधिकारी थे तब। तो हमने कहा कि चलो कोर्ट में करने के बजाय, तो उन्होंने कहा कोर्ट की क्या बात करते, हम रजिस्ट्रार को यहीं बुलाएंगे। तो रजिस्ट्रार को फिल्म सिटी में बुलाने के लिए पहले जाके हम रजिस्ट्रार से मिले। तो उसने कहा कि मुझे अंधेरी से पिकअप करना होगा, अंधेरी वेस्ट में कई शादी है, मैं वहां जा रहा हूँ, वहां से पिकअप करने आऊ। तो ये सारे बाराती तो वहां पहुंचे हैं स्टूडियो नंबर 1 में,
1: और दूल्हा,
0: हाँ दूल्हा रजिस्ट्रार को ढूंढने गया है। मेरे साथ एक मेरे मित्र विनोद पवार
1: जी,
0: जो प्रमोद पवार के भाई भी है और अपने आप में बहुत बड़े आदमी हैं, जिन्होंने झुलवा उपन्यास मुझे लाके दिया था
1: जी,
0: वो और हम दोनों रजिस्ट्रार को ढूंढने गए और रजिस्ट्रार वहां आया ही नहीं है।
1: अरे
0: हम वहां 1 घंटा इंतजार कर रहे, 2 घंटा इंतजार कर रहे, वो शादी वाले बोले शायद वो नहीं आएंगे।
1: लो
0: अब उनको कहां ढूंढे, 2-3 घंटा हो गए हम यहीं ढूंढ रहे, इस गली में, उस गली में, ये यहाँ इस शादी में आने वाला था, इस शादी में भी आने वाला था, तो कहीं आए ही नहीं वो रजिस्ट्रार। तो आप करे तो क्या करे। अच्छा तब कोई मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन टू लैंडलाइन ऐसा कम्युनिकेशन था। तो हम दोनों ने तय कर लिया चलो यार रिक्शा में बैठो और जो वहां पहुंचे हैं बाराती वहां तो चलो, नहीं तो तब तक उनको लगेगा कि दूल्हा भाग गया। इसके मन में ही नहीं है। तो वहां वही माहौल हो गया था कि गौरी और उनके माताजी पिताजी में आपस में यही चर्चा कर रहे थे ना कि भाई वामन ने सही हाँ कहा था ना तुम्हें, क्या ये तुम्हारी अपने मन की कुछ धारणाएं थी। तो वहां हम गए और आत्मा बंसोड़े हमारे मित्र है, वो वहां अधिकारी थे, वो भी ढूंढ रहे हैं उसको। मैंने आत्मा को फोन किया यार रजिस्ट्रार यहाँ नहीं है, वहां देखो कहीं आया हो। तो वहां पहुंचे हम, तब पता नहीं चला कि रजिस्ट्रार कहाँ है। अब शादी करे तो कैसे करे। कोई 2 मालाएं लाई थी
1: जी,
0: जो उन्होंने मोपलवार जी ने, तो माला एक दूसरे को पहनाएंगे तो क्या करिए। तो किसी ने बोला नहीं वो रजिस्ट्रार आया हुआ है, कोई एक आदमी अधिकारी तहसील से या जो कोर्ट से आता है वो। तब तेजाब की शूटिंग चल रही, वो वहां पर बैठा हुआ है, वो शूटिंग देख रहा है। फिर ये आत्मा बुनसुड़े गए, उसको पकड़ के स्टूडियो में लाया, फिर उसने हमारी दस्तखत कर दी।
1: वाह।

0: माता पिताजी गांव से आए हुए हैं, उनको तो ढोल बाजा ढमका ढमका सब वो अपने मन में देख रहे हैं। एक तो एक आदमी आया, उसने साइन करवा लिया, उसने मेरी साइन, उसकी साइन हो गया, दफ्तर बंद किया, उसको आने जाने का पैसा दे दिया, वो निकल गया,
1: हो गई शादी।
0: 42 रुपए में हमारी शादी हो गई।
1: वाह वाह,
0: 42 रुपीस।
1: जी जी,
0: वो ये रिकॉर्ड है दुनिया का।
1: दुनिया की सबसे सस्ती शादी।
0: और फिर 20-25 लोग जो थे, मित्र थे, श्रीराम बड़े भी थे और ये मुपलवाद की फैमिली थी, और ये सब कुल मिला के 25-30 लोग होंगे हम। तो उनके लिए उन्होंने खाने का इंतजाम किया था मुपलवार जी ने, वहां पर बहुत बढ़िया ज्वार की रोटी, बेसन पिठल, झुनका छेचा और भी कुछ कुछ ऐसा खा पी के लोग अपने अपने घर चले गए। उसके बाद हम भी अपने घर चले गए। मैंने गौरी को बोला तुम अपने घर चले जाओ।
1: अरे बाप रे,
0: क्योंकि हम एक कमरे में रहते थे, माताजी, पिताजी, चाचा जी, बहन और ये सारे लोग आ गए वहां सोने के लिए जगह का। तो बोले आप कहाँ जाओगे? मैंने कहा मेरा क्लास है साहित्य संघ में, मैं वहां जाके क्लास कर लूंगा अभी।
1: ओहो,
0: ऐसा करके वो कहीं और अपने रिश्तेदार के पास चली गई, मैं क्लास में गया। फिर शाम को कहीं हमारे एक मित्र यहाँ सांता क्रूज में रहते थे, उन्होंने कहा आप दोनों हमारे पास यहाँ आइए, हम यहाँ पार्टी देते हैं आप लोगों को। ऐसा करके हमारी शादी हो गई।
1: गजब गजब गजब, ये तो बड़ा अद्भुत किस्सा है भाई शादी का। और चूंकि आपने तेजाब की बात की तो
0: तेजाब का गाना बनता है।
1: ये गाना सुनते हैं।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का तीसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: उजाले उनकी यादों के।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से 5 बजे हिंदी में और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत और उज्बेकिस्तान ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान श्री मोदी ने आपसी संबंधों के समूचे आयाम की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे। इसके लिए स्कॉलरशिप की भी घोषणा की गई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 768 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। बचाव दल लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे हैं। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित हैं। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास उनसे सीधे और स्थायी प्रशासन के माध्यम से संपर्क में है। भारत से आज 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गया है। इससे पहले भारत 57 टन अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में बहुत मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, पश्चिम मध्य प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने की संभावना है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडे जोन साइकिल के 88वें संस्करण में शामिल हुए। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ब्रिक्स के सहयोग से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट में आज रात 8 बजे भारत का सामना थाईलैंड से होगा। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। वहीं बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज रात 8 बजे चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। जर्मनी की टीम चौथा खिताब बचाना चाहेगी, वहीं स्पेन अपना पहला खिताब मेजी दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों में शुरू किए हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां साधारण बीमारियों के साथ ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर जैसी बीमारियों की जांच और निशुल्क इलाज भी होगा।
1: हर केंद्र पर टेलीमेडिसिन सुविधा से उपलब्ध होगा विशेषज्ञों का परामर्श, साथ ही बेहतर स्वास्थ्य के लिए होगा योगा और व्यायाम प्रशिक्षण भी।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, फिल्मों से लिए गए भजन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं प्यार का मौसम फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज़

रविंद्र जैन की आवाज़ में गाए इस भजन के साथ ही आज का फिल्मी भजनों का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:25 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवा मंच।

युवा साथियों नमस्कार और इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ नर्मदा शर्मा। तो जैसा कि आप जानते हैं आज है रविवार और रविवार के दिन हम बात करते हैं वीकली पल्स यानी इस सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय और प्रादेशिक कुछ घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो इस विषय पर बात करेंगे, जानकारियाँ देंगे और साथ में होगा आपका मनोरंजन। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

0: एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: डॉक्टर साहब, मीनू बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है, इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं, देखो ना कैसी पीली पड़ गई है।
3: इसे एनीमिया है, इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाकर खिलाओ और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
2: जी डॉक्टर साहब,
3: सिर्फ इसे नहीं सभी को एनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
4: नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: तो युवा मंच कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है। तो युवा साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे वीकली पल्स पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। इस सप्ताह नेपाल और तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ ने पूरी दुनिया का ध्यान हिमालयी क्षेत्रों की चुनौतियों की ओर खींचा है। ग्लेशियर और चट्टानों के टूटने से आई इस आपदा में सैकड़ों लोगों की जान गई है और हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। राहत एवं बचाव कार्य अभी भी चल रही है। ये घटना हमें पर्यावरण संरक्षण

संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति गंभीर होने का संदेश देती है। ये घटना जलवायु परिवर्तन और हिमालयी क्षेत्रों में बढ़ते पर्यावरणीय खतरों की ओर ध्यान दिलाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर अस्थिर हो रहे हैं, जिससे ऐसी आपदाओं का खतरा बढ़ रहा है। नेपाल तिब्बत सीमा पर जो अगस्त 2026 में आई भीषण बाढ़ हाल के वर्षों की सबसे बड़ी हिमालयी आपदाओं में से एक मानी जाती है। 26 अगस्त को तिब्बत की ओर से हिमालय में एक विशाल ग्लेशियर और चट्टानों का हिस्सा टूटकर नदी घाटी में गिर गया। इससे अचानक पानी, बर्फ, मिट्टी और पत्थरों का तेज बहाव बना, जिसने नेपाल की भोटेकोशी और आसपास की नदी प्रणालियों में विनाशकारी बाढ़ ला दी। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार 700 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, 2500 से 3000 से अधिक लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, हजारों घर, सड़कें, पुल और जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं, कई गांवों में भारी तबाही और कुछ बस्तियां लगभग पूरी तरह बह गई हैं। G20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक प्रमुख वैश्विक व्यापार, महंगाई और आर्थिक स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। गाजा और क्षेत्रीय तनाव के बीच कई देश कूटनीतिक प्रयासों के जरिए स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। और भी बात करेंगे वीकली पल्स में, एक ब्रेक लेते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी
2: वीकली पल्स पर हम बात कर रहे हैं युवा मंच कार्यक्रम में। आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवा मंच। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 729 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो भारत की आर्थिक मजबूती का संकेत माना जा रहा है। इस सप्ताह निवेशकों की निगाह जो है वो भारत की जीडीपी वृद्धि दर और अन्य आर्थिक आंकड़ों पर रहेगी। बाजार में वैश्विक घटनाओं का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। अगस्त के अंत तक देश के कई राज्यों में वर्षा असमान रही है, जिससे कुछ क्षेत्रों में कृषि और जल संसाधनों पर प्रभाव पड़ा है। केंद्र सरकार ने युवाओं में खेल प्रतियोगिता विकसित करने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु बड़े निवेश की घोषणा की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए संशोधन प्रस्तावों पर चर्चा जारी है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति में अपनी भूमिका को लगातार मजबूत कर रहा है तथा कई देशों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं और फिर बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की।

युवा साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है युवा मंच कार्यक्रम में। और हम अब बात करेंगे अपने हिमाचल प्रदेश की। इस सप्ताह प्रदेश में मानसून का असर जारी रहा, जिससे कई सड़कें प्रभावित हुई और चंबा के भरमौर में भूस्खलन से यातायात बाधित हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने स्कूल प्रवेश फॉर्म से जाति कॉलम को हटाने का फैसला लिया है। वहीं विकास कार्यों और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए नई परियोजनाएँ शुरू की गई हैं। दूसरी ओर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हिमाचल में लगातार बारिश के कारण कई क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़क अवरोध की स्थिति बनी हुई है। राज्य में दर्जनों सड़कें प्रभावित हुई हैं और प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने तथा अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र में कोडला उरई सड़क पर भारी भूस्खलन हुआ है, जिससे सड़क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है और यातायात प्रभावित हुआ है। स्थानीय प्रशासन बहाली कार्य में जुटे हैं।

तो युवा साथियों, इस सप्ताह की खबरें हमें बताती हैं कि आर्थिक प्रगति, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की क्षमता और वैश्विक सहयोग आज की सबसे बड़ी ज़रूरतें हैं। युवाओं के लिए ये समय जागरूक, जिम्मेदार और सकारात्मक योग देने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ आज का युवा मंच कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। नर्मदा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 5:55 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित वरीले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

शाम गज़ल श्रोता, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:05 पर और लाइव फोन इन कार्यक्रम मिंजरा, जो कि होगा केवल महिलाओं के लिए, शाम 6:30 पर। रात्रि 7:10 पर सुनिएगा किसान व बागबान भाई बहनों के लिए कार्यक्रम खेती बाड़ी। विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस प्रसारित किया जाएगा रात्रि 8:00। एक ही कलाकार पर आधारित कुछ गीत आपको सुनवाए जाएंगे रात्रि 9:15 पर। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:45 पर प्रादेशिक समाचार और रात्रि 8:15 पर कार्यक्रम हिमबीर्स रिले किया जाएगा। आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं: शाम 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, रात्रि 9:00 News@9, रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम अनुगूंज और रात्रि 10:00 रविवासरीय संगीत सभा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले की जाएगी, रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार सुनेगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी पर आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत केवल एक औपचारिकता नहीं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग, विशेषकर युवा, इसका हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए आगे आने वाले लोगों की सराहना की।
5: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
4: पीएम स्वनिधि योजना की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि करीब 46% महिलाएं पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थी हैं। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को पूरे देश के लिए प्रेरणा का एक बड़ा माध्यम बताया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे प्रतिभाशाली लोगों को पहचान और एक्सपोजर मिलता है। मन की बात कार्यक्रम में आज नशे की समस्या को लेकर प्रधानमंत्री के संदेश पर जयराम ठाकुर ने कहा कि नशे के इस प्रचलन को रोकना केवल सरकार की जिम्मेवारी नहीं बल्कि हम सभी का दायित्व है।
6: प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया कि नशे के इस प्रचलन को रोकने के लिए ये हम सबकी जिम्मेवारी कि हम इसको जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाकर नशे को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाएं। जब देश के अंदर नक्सल खत्म हो सकता है तो नशा भी खत्म हो सकता है। और खास तौर से आज के इस कार्यक्रम में जन्माष्टमी के त्योहार के साथ साथ में उनने एक चीज को जरूर कहा कि लोकल फॉर वोकल, ये हमारा देश का एक बहुत मूल मंत्र जिसको लेकर के हमको आगे बढ़ना है, उसके लिए भी विशेष तौर से उनने आग्रह किया।
4: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कोटखाई उपमंडल की रावला क्यार पंचायत में आज थाना संपर्क मार्ग के उन्नयन कार्य का भूमि पूजन किया। इस कार्य पर करीब 4 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। रोहित ठाकुर ने कहा

0: कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में 186 नई सड़कों की सफल पासिंग हो चुकी है और ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। सांसद अनुराग ठाकुर ने पंचायत प्रतिनिधियों से गांव के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। हमीरपुर जिला के भोरंज में आज एक समारोह में उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं भारतीय लोकतंत्र की ऐसी आधारशिला हैं जहां लोकतंत्र सीधे जनता के द्वार तक पहुंचता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि डिजिटल तकनीक, जन भागीदारी और पारदर्शिता में पंचायतों के कामकाज को नई दिशा दी है। चंबा पुलिस ने विश्व प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा के सफल संचालन के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये यात्रा 4 सितंबर से 19 सितंबर के बीच चलेगी। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि लोगों की सुरक्षा व बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की जाएगी।
1: जो मणिमहेश यात्रा है इसको 13 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, राइट फ्रॉम चंबा टू डल लेक तक। इसमें 13 सेक्टर डिवाइड किए हैं जिसमें लगभग 500 के लोग जो हैं इसमें होमगार्ड, पुलिस तथा अन्य लोग जो हैं सम्मिलित रहेंगे, ड्यूटीज करेंगे। इसमें हमने 4 कमांड नाके बनाए गए जिसमें तुन्नू भट्टी से लाडू बैरियर, महिला तथा हटसर। इस बार जो यात्रा होगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही संभव हो पाएगी, तो सभी लोगों से मेरी ये भी विनम्र रहेगा कि अपना रजिस्ट्रेशन कराएं तभी यात्रा पे प्रोसीड करें आगे।
0: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में दोपहर बाद से मूसलाधार बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर हुई व्यापक वर्षा से जनजीवन पर असर पड़ा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है। कल 31 अगस्त को कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी ने आज सोलन जिला में अर्की क्षेत्र के भूमती में 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों की खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि खेलों से विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, सहयोग और टीम भावना जैसे गुणों का विकास होता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को उचित मंच व अवसर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। हिमाचल सेब उत्पादक संघ ने राज्य सरकार से किसानों का सेब व अन्य फलों का मंडी मध्यस्थता योजना का बकाया भुगतान तुरंत करने की मांग की है। संघ के राज्य कमेटी सदस्य संजय चौहान ने कहा कि किसानों द्वारा जरूरी दस्तावेज जमा करवाने के बावजूद भी उनके खातों में बकाया राशि जमा नहीं की जा रही। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
2: मुझे कॉलेज का टाइम याद है।
3: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
3: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर कर लें, लॉग इन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
4: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: FM बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:06 हुए हैं। आइए सुनते हैं गजलें।

0: एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: शामे गजल में अब हम आपको सुनवा रहे हैं पंकज उदास की आवाज में ये गजल।

गजल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोतों, गजलें सिर्फ सुनी नहीं जाती, ये महसूस भी की जाती हैं। अब एक खूबसूरत गजल की ओर बढ़ते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसके अल्फाज आपके दिलों को छू जाएंगे। शाम की धूप जब सिमटने लगे, तेरी यादों का शहर जगने लगे, चांद खिड़की पे दस्तक देता है, दिल किसी नाम से धड़कने लगे, रास्ते खामोश हो जाएं जब तेरे कदमों की आहट सुनने लगे, दिल की हलचल उतर गई कब की रात आंखों में ख्वाब बुनने लगे। तो आइए इसी एहसास के साथ सुनते हैं अगली पेशकश।

श्रोताओं, मोहब्बत की दुनिया में कुछ निगाहें ऐसी होती हैं जो लफ्जों से ज्यादा गहरी बात कह जाती हैं। मिर्जा गालिब ने अपने इश्क की इसी खामोश जुबान को अपने शायरी में अमर कर दिया है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, और तेरी नजरों का असर आज भी बाकी है कहीं, तेरी नजरों का असर आज भी बाकी है कहीं, एक चिंगारी थी जो दिल में उतर कर ठहर गई।

श्रोताओ, तलत अजीज की आवाज में गाई इस गजल के साथ ही आज का शाम गजल कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मिंजरा।

0: मिंजरा कार्यक्रम सुनने वाली सभी हमारी बहनों को नमस्कार और इस कार्यक्रम में स्वागत। और हम आपको बता दें कि आज का ये कार्यक्रम है हमारी बहनों के लिए, तो साथ में आपका मनोरंजन होगा, लोकगीत आपको सुनवाए जाएंगे और बातें होंगी हमारी बहनों के साथ। तो फ़ोन करने के लिए हमारा नंबर रहेगा 01892224391। फ़ोन नंबर एक बार आपको फिर से बता दें, 01892224391। तो फ़ोन ज़रूर करिए और मुझे लगता है हमारी कोई श्रोता बहन आ चुकी है। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते जी,
1: क्या हाल चाल है?
0: बढ़िया जी, बढ़िया। कौन बोला दे तो? हाँ,
1: फतेहपुर।
0: अच्छा, फतेहपुर जी, क्या हाल चाल है फतेहपुर के?
1: ठीक है दीदी।
0: अच्छा, और कुछ?
1: बस सब कुछ ठीक।
0: बारिश? बारिश तो क्या,
1: बारिश मौसम खराब हो रही है।
0: अच्छा, बारिश हो रही है ठीक से?
1: हाँ जी, कल भी हुई थी, परसों भी, डेली होती है।
0: डेली हो रही है, चलिए बड़ी अच्छी बात है।
1: चलिए, आज नहीं हुई।
0: हाँ हाँ
1: जी।
0: और आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रम आप सुनते हैं?
1: हाँ जी, सुनते हैं हम।
0: कैसे लगते हैं आपको कार्यक्रम?
1: अच्छे लगते हैं।
0: अच्छा, तो फसल का क्या हाल है? तैयार होगी? हाँ जी, मक्की पक गई?
1: नहीं अभी नहीं।
0: वैसे फतेहपुर साइड में तो गर्मी होती है काफी, है ना?
1: हाँ जी, गर्मी होती है पर अभी तक नहीं हरी है। अभी
0: अभी हरी है, कच्ची है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए, बहुत

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी। कौन बोल रहे हैं?
1: वंदना कुमारी,
0: कहाँ से बोल रहे हो वंदना जी?
1: डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश,
0: हाँ, कौन से गांव, कौन सा है आपका,
1: ढेला।
0: ये कहाँ हुआ?
1: ये पालनपुर से 29 किलोमीटर नीचे है।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: ठीक।
1: जी,
0: और कैसा मौसम है वहाँ पे?
1: मौसम आज ठीक नहीं है, बारिश लगने वाली है, ज्यादा होगी।
0: पालमपुर और धर्मशाला में तो मुझे लगता है कि हर रोज ही बारिश हो रही है ना।
1: हाँ जी, हमारे गांव में हो गए 3-4 दिन बारिश नहीं हुई है। आज
0: अच्छा,
1: गर्मी बहुत ज्यादा हो, आज लगी है थोड़ी थोड़ी।
0: गर्मी।
1: हाँ जी, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही
0: अच्छा
1: है।
0: अच्छा ठीक। और रेडियो अच्छे से, धर्मशाला रेडियो आप अच्छे से सुन पाते हैं वहाँ पे?
1: हाँ जी, बिल्कुल अच्छे से, मतलब अभी मतलब 1 मंथ ही हुआ हमें सुनते हुए, पर बहुत अच्छा लग रहा है अब।
0: अच्छा, तो पहले क्या करते थे? पहले नहीं सुनते थे?
1: नहीं सुनते थे जब, मतलब शादी नहीं हुई थी तो पहले सुनते थे, बीच में शादी के बाद छूट गया ऐसे घर के कामों में। अब थोड़ा हुआ है रिलैक्स तो अब सुनते हैं साथ में
0: अच्छा
1: बैठ
0: अच्छा आपकी नई शादी हुई है?
1: के। शादी का तो हो गया अभी, मतलब 17 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं
0: ओहो,
1: नवंबर
0: अच्छा। हाँ,
1: में।
0: फिर मतलब ससुराल में आके व्यस्त हो गई होंगी कामों में, है ना?
1: हाँ जी, हाँ
0: अच्छा, चलिए, अच्छा लगा आपने फोन किया।
1: जी,
0: तो आइए, अब हम आपको सुनवा रहे हैं अजीत सिंह और साथियों की आवाज़ों में ये लोकगीत।
1: ठीक है, थैंक यू मैम।

0: हेलो नमस्कार जी।
1: नमस्ते जी। नाम बताएं अपना।
0: महेश कुमार बनेट फ्रॉम रेंट।
1: आपके घर में आपके अभी आसपास कोई घर की महिला होंगी?
0: नहीं, वो तो गाय के पास है।
1: गाय के पास है तो आपको हम बताना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम जो है, वैसे तो बहुत अच्छा लगा आपने फ़ोन किया, लेकिन महिलाओं के लिए
0: जी
1: है ना?
0: ठीक है, कोई
1: ठीक है
0: बात नहीं,
1: जी,
0: सॉरी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फ़ोन किया और किसी और कार्यक्रम में आपसे बात करेंगे। ठीक है जी,
0: जी जी जी
1: ठीक
0: जी
1: है, शुक्रिया
0: धन्यवाद।
1: जी फ़ोन करने के लिए।

0: तो आज पुरुष जो हैं वो किसी और कार्यक्रम में आप कॉल कर सकते हैं, उनसे किसी और दिन बात होगी। आज हमारी बहनों को आप समय दे दें। हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्ते
1: सर जी,
0: कौन बोल रहे हैं?
1: मैं थोड़ा से बोल रही हूँ।
0: हाँ जी, आपका नाम?
1: सीमा देवी
0: जी। सीमा देवी जी, आप क्या करती हैं?
1: हाँ जी ठीक हैं जी, आप सुनाओ कैसे हो?
0: हम भी बढ़िया हैं जी, आपके फोन आ गए तो बात हो गई आपसे तो हमें बहुत अच्छा लगता है।
1: ट्राई कर रही थी ना।
0: अच्छा जी,
1: तो लगता ही नहीं था।
0: अच्छा,
1: कभी काम में बिजी हो जाना, टाइम निकल जाता था।
0: हाँ जी,
1: तो आज फिर मैंने रेडियो ऑन किया तो पहाड़ी गीत लग रहे थे और फोनिंग कार लग रहा था।
0: जी जी,
1: आज ट्राई करके देखती।
0: इसीलिए ना ये कार्यक्रम जो है मिंजरा कार्यक्रम, ये स्पेशली आप लोगों के लिए है, मतलब महिलाओं के लिए, कि आपको भी टाइम मिले, क्योंकि महिलाएं तो व्यस्त रहती हैं कामों में, उनको समय कम मिलता है ना।
1: हाँ जी, नहीं मिलता है ना टाइम।
0: हाँ जी, और क्या क्या काम कर रही हैं आप आजकल?
1: बस गृहिणी काम, घर का जो भी खाना बनाना बस
0: जी। अच्छा,
1: अब तो आगे काम होगा जब खेतों में
0: हाँ
1: अनाज तैयार होगा तो तभी काम होगा ना।
0: बिल्कुल, अभी तो बरसाते हैं तो खेतों से भी छुट्टी मिल गई है ना।
1: हाँ जी, अभी तो यहाँ कभी घास निकालने चले जाते हैं।
0: हाँ जी हाँ जी, और
1: टाइम हो जाता है ना,
0: अभी तो फसल तैयार हो रही है ना, तब तक आपको भी थोड़ा टाइम मिल जाता है ना।
1: हाँ जी
0: ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपने फोन किया, शुक्रिया फोन करने के लिए। और अगला गीत सुनवाने से पहले सुनते हैं कुछ संदेश।
2: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: तो श्रोताओं, आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मिंजरा, और हमारी बहनें जो हैं वो आज के इस कार्यक्रम में फ़ोन कर सकती हैं, हमसे बात कर सकती हैं। और फ़ोन करने के लिए हमारा नंबर रहेगा 01892224391। फ़ोन नंबर हम आपको एक बार फिर से बता दें, 01892224391। फ़ोन नंबर एक बार फिर से 01892224391 01892224391। तो फ़ोन ज़रूर करिए। और हम सुनवा रहे हैं आपको निमो देवी की आवाज़ में ये लोकगीत।

0: हेलो। चलिए, जो भी हमारे श्रोता फोन कर रहे हैं उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। हेलो, अब बहुत कम आवाज़ आ रही है, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे आप? हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मंडी से? हाँ, आपकी आवाज़ मुझे लगता है शायद श्रोताओं तक भी नहीं पहुंच पा रही होगी, मुझे बहुत कम आपकी आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोल लेंगे आप?
1: जोर जोर से तो बोल रही हूँ।
0: ठीक है, अभी आने लगी थोड़ी सी आवाज़। हाँ, मंडी से बोल रही हैं। नाम क्या बताया? अनीता जी। अनीता क्या करती हैं?
1: हाउसवाइफ है, घर का काम काज रोटी जाके खाना बना रही हूँ।
0: बहुत काम होता है हाउसवाइफ का भी ना, सुबह से शाम तक, रात जब तक सोती नहीं है तब तक दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, सोचते रहते हैं, सुबह सोचते हैं क्या बनाएंगे खाने में, है ना? और सुबह का हो गया तो फिर दोपहर की चिंता पड़ जाती है, साथ में बच्चे देखने हैं और घर का काम करना है, बहुत सारा काम होता है। पशु भी रखे हैं?
1: नहीं मैम,
0: अच्छा, पशु नहीं। हाँ जी,
1: नहीं रखे हुए, नहीं रखे
0: अच्छा,
1: हुए।
0: खेती बाड़ी?
1: खेती बाड़ी भी नहीं है, बंदर नहीं छोड़ते और चोर भी नहीं छोड़ते।
0: अच्छा, चलिए। और कुछ कहना चाहती हैं आप?
1: नहीं मैम, कुछ नहीं, बस ऐसे ही आपका प्रोग्राम सुन रही थी और गाने भी बढ़िया बढ़िया सुना रहे थे।
0: गाने अच्छे लगे आपको? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए, धन्यवाद फोन करने के लिए।

0: हेलो जी,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं सारिका बोल रही हूँ,
0: सारिका कहाँ से?
1: कांगड़ा से।
0: अच्छा, क्या करती हैं सारिका जी आप?
1: मैं स्कूल जाती हूँ,
0: कौन सी क्लास में?
1: 8th।
0: 8th क्लास में। अच्छा, और रेडियो सुन रही हैं आप, हैं?
1: हाँ
0: अच्छा लगता है आपको रेडियो के
1: जी, मुझे
0: कार्यक्रम?
1: बहुत अच्छा
0: अच्छे।
1: लगता है रेडियो सुनना।
0: अच्छा, और पढ़ाई करते करते भी रेडियो सुनती हैं क्या?
1: हाँ जी,
0: अच्छा, मतलब पक्की वाली श्रोता हैं आप।
1: हाँ जी।
0: और क्या क्या काम करती हैं पढ़ाई के साथ साथ?
1: मैं पढ़ाई के साथ साथ खेलती हूँ और खा घर पे घर संभालती हूँ।
0: घर संभालती हैं?
1: हाँ जी, शाम टाइम में मैं खाना बना लेती हूँ ना मम्मा के लिए।
0: अच्छा ठीक। मम्मा क्या काम करती हैं? खेती बाड़ी का काम करती हैं मम्मा?
1: हाँ जी,
0: अच्छा, और आप फिर खाना बनाती हैं जब मम्मी खेतों में जाती हैं तो, है ना?
1: हाँ जी।
0: बहुत अच्छे। और क्या क्या बना लेती हैं? अच्छा सा, सबसे अच्छी चीज़ कौन सी पसंद आती है सबको आपकी बनाई हुई?
1: सबको जो सारी दालें अच्छी लगती हैं, चने
0: अच्छा, कोई स्पेशल डिश जो आपको बहुत पसंद
1: और
0: हो?
1: राजमा की सब्जी, चने
0: किसकी?
1: की सब्जी।
0: चने की सब्जी और राजमा।
1: हाँ जी,
0: राजमा सभी को बहुत पसंद आते हैं ना, चावल के साथ, है
1: हाँ जी।
0: ना? और कुछ कहना चाहती हैं? और कोई शौक है आपके? गाना गाती हैं आप?
1: नहीं, मैं गाना नहीं गाती हूँ।
0: गाना नहीं गाती? अच्छा, क्या बनना चाहती हैं आप?
1: मैं पुलिस बनना चाहती हूँ।
0: पुलिस में जाना चाहती हैं? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए कुछ तैयारी कर रही हैं अभी से?
1: हाँ, सुबह सुबह दौड़ लगाने जाते हैं हम।
0: अरे वाह, बहुत अच्छे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपने फ़ोन किया। ठीक है,
1: ठीक है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। तो श्रोताओं, अगला लोकगीत सुनवाने से पहले हम लेते हैं ब्रेक और आपको सुनवाते हैं एक संदेश।
2: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: तो श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मिंजरा और इसमें हम बात कर रहे हैं अपनी महिला श्रोताओं के साथ। तो क्योंकि समय बहुत कम है तो आज का ये जो कार्यक्रम है इसका समय अब संपन्न होने को है। तो चलते चलते एक हम गीत, लोकगीत तो आपको सुनवाएंगे, साथ ही आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में, मिंजरा कार्यक्रम में, जिन भी बहनों ने हमें फ़ोन किया, हमसे बात हुई है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बहनें ऐसी भी होंगी जो कोशिश कर रही होंगी लेकिन उनका फ़ोन नहीं मिल रहा होगा, तो उनसे कहना चाहते हैं कि अगले रविवार आप फिर से कोशिश करिए, ज़रूर आप

0: तो श्रोताओ, इस गीत के साथ ही आज का मिंजरा कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। शाम के 7 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: साथ में वैष्णवी। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। ताशकंद विश्वविद्यालय में संस्कृत की चेयर स्थापित करने के साथ हिंदी के लिए लाल बहादुर शास्त्री के नाम से 100 छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई। भारत ने अराल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए $10 लाख का अनुदान देने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान में UPI के इस्तेमाल के लिए भी समझौता किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती हैं। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया।
2: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
1: केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, सुब्रमण्यम जयशंकर और निर्मला सीतारामन ने उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच चिरस्थायी मैत्री को प्रगाढ़ करने के सतत प्रयासों का प्रमाण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि PM स्वनिधि योजना के माध्यम से देश भर की लगभग

0: 35 लाख महिलाएं अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 768 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। बचाव दल लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता है। वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे हैं। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित हैं। पेचिंग के भारतीय दूतावास उनसे सीधे और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से संपर्क में है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज रात 8:30 बजे भारत का सामना थाईलैंड से होगा। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज रात 8:00 बजे वर्तमान चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय लालेमा अनेजा डैंग। India and Uzbekistan today announced to elevate their mutual strategic partnership to comprehensive strategic partnership level. The Central Asian country also agreed to establish a framework for long-term supply of uranium to India and discuss the sites of the mining for rare earth minerals. Both countries today signed 11 memorandums of understanding in various sectors, including mining, Ayurveda, tourism, economic and financial dialogue, comprehensive and strategic partnership, higher education and environment. Our correspondent reports that during the bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, both countries agreed to set a target of $5 billion of bilateral trade by 2030, which is 5 times of current trade. Important decisions were taken for bilateral trade in the areas of trade and investment, infrastructure, critical minerals, mining, defense and security, innovation, agriculture, pharmaceuticals, health, information technology, digital public infrastructure, including UPI and education, among others. Prime Minister Narendra Modi said that both countries have zero tolerance against terrorism, extremism and separatism.
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: Prime Minister Modi said the two countries are also working on a framework for long-term supply of uranium.
3: दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम 3 सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए।
1: From Uzbekistan, the Prime Minister will reach Kyrgyzstan this evening to take part in the 26th Shanghai Cooperation Organization Summit at Bishkek tomorrow. Prime Minister Narendra Modi today shared his thoughts with the nation in the Mann Ki Baat program on Akashwani. In his address, Prime Minister Modi strongly warned against the social perils of drug abuse and highlighted Nasha Mukt Yuva for Vikasit Bharat campaign. He also championed women-led economic empowerment through the PM Swanidhi scheme and celebrated growing avenues for women in advanced fields like the space industry. He also praised groundbreaking grassroots innovation in agriculture and digital.

कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुना करदे सारे ही श्रोतियां जो पंच दी तरफा ते राम राम। कन्नै दिक्खा अज टियाले पर हाँ आए पुज्जे और जेह्ड़ा सह कार्यक्रम दे संबंधित जेह्ड़ी अलग अलग जानकारी ने सह लेके और कन्नै ही अहाँ लोक गीत संगीत भी जेह्ड़ा सह अपने श्रोतियां तक पहुँचाना है। तां सब ते पहले दिक्खा अहाँ गल करनी है पर्यावरण संरक्षण दे बारे च और इसकी अहाँ स्वच्छता जेह्ड़ी इसे कियां बनाए रखनी है ना जी। तां अजकल दिक्खा तो हाँ साढ़ा बरसात का मौसम चलिया और इन्हां दिनां जेहड़े से अहाँ जो प्रकृति दा जेहड़े अलग अलग रूप जेहड़े से देखने जो मिला दे अहाँ दे चारों तरफ जेहड़ी इसे हरी भरी घाटियां जेहड़ी इसे संजो अपने हिमाचल प्रदेश च देखने जो मिला करदियां। तां प्रकृति जेहड़ी इसे अलग ही छटा जेहड़ी इसे अजकल देखने जो मिला करदी इन्हां दिनां च। तां इस जो संजोई रखने वास्ते और आने वाली पीढ़ियां जो भी इसका आनंद लेने वास्ते जेहड़ा से अहाँ जो इन्हां सारियां ही चीज़ों का संरक्षण जेहड़ा से करना जरूरी होई जांदा। तां इस विच प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन जियां कि साढ़े जल है, वायु है, मिट्टी है, बन है, बन्य जीव न, इन्हां सारियां दी रक्षा जिहड़ी से करना जरूरी होई जांदी है और कन्ने ही इन्हां सारियां चीज़ां दा संतुलित उपयोग जिहड़ा से अहां जो करना चाहिदा है ना जी। ताकि साढ़े आने वाली पीढ़ियां भी जिहड़े से इन्हां प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जिहड़े से करी सकन। ये नहीं है कि अहां इन्हां दिनां च जिहड़े से लगातार साढ़े जिहड़े प्राकृतिक संसाधन तिन्हां जो लगातार उन्हां दा दोहन करते रहन और आने वाले समय च जिहड़े से ये प्राकृतिक संसाधन जिहड़े से खत्म हो जान। तां इस वास्ते जिहड़ा से अहां जो इन्हां दा संतुलित उपयोग जिहड़ा से करना ताकि आने वाली पीढ़ियां भी जिहड़े से इन्हां दा उपयोग जिहड़े से लगातार करते रहन। तां दिखा अजकल किसान साथी ओ बढ़दा प्रदूषण होई आ, साढ़े वणां दी जिहड़ी इसे कटाई होआ करदी है और जलवायु परिवर्तन होआ दा और प्राकृतिक संसाधनों दा जिहड़ा से अत्यधिक दोहन ते जिहड़ा से सारे पर्यावरण दा संरक्षण जिहड़ा उस विच इक संकट आई गया। तां इसी संकट दे कारण जिहड़े से हुण सन जो देखणे जो और सुनने जो मिला करदा कि जगह जगह कई प्रकार दे प्राकृतिक प्रकोप जिहड़े से देखणे जो मिला करदे, यानी कि कुथी बाढ़ आओ करदियां, कुथी जिहड़े से साढ़े जंगलां च अग लगी जांदी है, या फिर कुथी जिहड़ा से सुक्का पई

0: पेड़ पौधे की जिन से खेती बाड़ी करते हैं और सुनते हैं जानकारी। किसान साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी च अहां दा प्रयास रहंदा कि हर दिन एक नित नई जानकारी अहां तुहां तक पहुंचाइए, चाहे वह विशेषज्ञ द्वारा दी गई जानकारी होवे या फिर उन्नत किसानां कन्ने कीती गई गलबात होवे। उसी कड़ी विच अज एक उन्नत महिला किसान अहां कन्ने जुड़ा करदे हन, ओवा करदे हन इन्हां कन्ने गलबात। राम राम जी।
1: राम राम जी।
0: जी अपना सबसे पहला नां दसा कने कुतू तुहां दे घर न?
1: मैं शिवाली ग्राम पंचायत कटोरा ब्लॉक नंबर 8 सूरिया ते।
0: तो शिवाली जी तोहा खेतीबाड़ी कर दे?
1: हां जी सर।
0: जी दिखा खेतीबाड़ी करने ताईया तोहा वाल जेड़ा सा कितना की जमीन आ रकबा है?
1: सर जमीन ता साडे ले 10 कनाल पर जेड़ी 5 कनाल है हाथ सभी ची खेतीबाड़ी करा दे।
0: अच्छा, बाकी जेड़ी 5 कनाल है क्या खड़ातर वगैरह कुछ बंजर है?
1: हां जी सर बंजर है, तिस भी चाहा थोड़े मेडिसिन प्लांट लगाने दी कोशिश करा दे कि आजकल जेड़ा सा लेडीज जेड़ियां ने सा वो मेडिसिन प्लांट लगा दे जिन्हें यहाँ जो सा प्रोडक्ट तैयार करा दे।
0: तो जड़ा तो हाँ दस्ती है ना कि तो हाँ वाल 5 कनाल दा रकबा तिस विच क्या क्या खेती कर दे तो हाँ?
1: तिस विच सर हाँ अजकल लगाया अदरक लगाया कि अपने थोड़ी बहुत सब्जियां लगाया।
0: छली दा बीज कौन लगाया हा तो हाँ? अपना घरे दा बीज है?
1: हाँ जी सारा घरे दा बीज है।
0: अच्छा, देसी चिटियां छलियां बांधे की लाल
1: चिटियां सर?
0: अच्छा, इस ते कन्ने जियां सब्जियां वगैरह भी लगांदे कुछ?
1: हाँ जी सर सब्जियां भी लगाने।
0: इस वेले क्या क्या सब्जियां लगियां तो हाँ जी सवाड़ुआं च?
1: भिंडियां लगियां, बैंगन लगियो, करने तोरियां वगैरह।
0: हाँ कन दिखा चलो अपने घरे दी चलो हरी भरी ताजी चलो सब्जी होवे तो एक आनंद जेड़ा सा कुछ होर है।

0: ते सोगी जी औषधीय पौधे तो हाँ जड़े सह लगा कर देन। सोगी जी कुछ और फल आने पौधे भी लगाए जी बागवानी की गल करिए था।
1: सर बागवानी जेडी सर बड़ी ज्यादा नहीं अपने यहाँ घरे तक की जिया मतलब हर दो दो तीन तीन पेड़ है सब कैसी देन जिया अमरूद संतरे अंब।
0: अच्छा जी कुनी औषधीय पौधे अगर लगाने होन या तो हाँ ते लेने होन ता तिना जो पौध कुतु मिलला है कुतु संपर्क करन जेड़े तो हाँ जो सोना कर देने इस वेले।
1: सर मतलब कि हर ब्लॉक से जेड़ी से नर्सरी दीती हो मतलब कि पूरे ब्लॉक से दो दो नर्सरियां ना।
0: हाँ जी
1: जेड़े औषधि प्लांट ने से तीन ही उगाने मतलब कि हर कोई नहीं उगाई सकता मतलब बेंडर बंदे एक बेंडर टाइप होंदा।
0: हाँ जी शिफाले जी इसके बाद जड़ा सह आहां दी जड़ी बेरोजगार युवा पीढ़ी है जेडे की नौकरी पिछे ता घूमा कर दे कने देखा नौकरियां नहीं भी मिला कर दिन तीन तुहां क्या संदेश देना चाहेंगे।
1: हाँ जी तीन तो मैं ये संदेश देना चाहती कि तू हाँ औषधि पौधे लगाओ।
0: हाँ जी
1: कहना तीन सेल करा तीन अपने तरीके ने आज उन ता मतलब शैम्पू खुद बिल्कुल प्राकृतिक तरीके ने शैम्पू बनाना भी दसा दे अचार पाना भी दसा दे हर चीज दसा दे एक बंदे काम करने का पता होना चाहिए कि मैं ये काम करना मैं लाइन लैनी है हूं मैं काम करा तो मैं कली नहीं रोजगार ला दी मैं अपने पांच और भी जोड़िया कहने शायद हाँ कुछ और काम करना तो इससे पांच और भी तक मतलब इससे जरा से घर बैठी जड़िया बेरोजगार लेडीज ने तीन भी काम मिल उसे जाने की जरूरत भी नहीं क्या हाँ जो कुछ मेहनत करना हाँ बाहर जाना कमाना अपने घर बैठे के आराम में काम करना अरे एक जगह इकट्ठे होके काम करना सा।
0: जी शिफाली जी ग्रां कटोरा नगोटा सूरिया दे तोहां आहां कने आकाशवाणी धर्मशाला दे टियाले पर इत्थे तोहां जुड़े अपना कीमती समय तोहां आहां जो दित्ता तोहां दा बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। तो किसान साथियो ये तो थे उन्नत महिला किसान शिवाली देवी और जिन्हें कि औषधि पौधे की जी से खेतीबाड़ी कर करते और अहाँ भी जोड़ा से इन्हें जो दिखी करी सुनी करी जोड़ा से औषधि पौधे की जी से खेतीबाड़ी कर सकते हैं और इस कम्मे जो जोड़ा से अगे बढ़ाई सकते हैं। और इसके बाद हूँ अहाँ चलना अज कांगड़ा सब्जी मंडी की गल करिए उतु के अज के जोड़े भाव न से साढ़े टियाले पर नहीं पुजे क्योंकि अज रविवार का दिन है और छुट्टी है तो इस कारण जोड़े से उतु के मुल जोड़े इनसे नहीं पुजे। और इसके बाद अहाँ गल करनी है मौसम की तो मौसम च सब तो पहले गल करिए अहाँ चंबा की तो चंबा का अज का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सैलसीयस और न्यूनतम 18 डिग्री सैलसीयस। धर्मशाला की गल करिए इतों का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सैलसीयस और न्यूनतम 16 डिग्री सैलसीयस। कांगड़ा अधिकतम 32 डिग्री सैलसीयस और न्यूनतम 24 डिग्री सैलसीयस। पालमपुर की गल करिए इतों का अज का अधिकतम तापमान जोड़ा से 26 डिग्री सैलसीयस रहा और न्यूनतम जोड़ा से 20 डिग्री सैलसीयस रहा। देहरा की गल करिए इतों का अज का न्यूनतम तापमान जोड़ा से 25 डिग्री सैलसीयस और अधिकतम जोड़ा से 32 डिग्री सैलसीयस रहा। इसके बाद अहाँ गल करिए नूरपुर की तो नूरपुर अज अधिकतम तापमान 32 डिग्री सैलसीयस और न्यूनतम जोड़ा से 25 डिग्री सैलसीयस रहा। अंत गल करिए ऊना की तो ऊना च अज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सैलसीयस और न्यूनतम जोड़ा से 26 डिग्री सैलसीयस रहा। और आने वाले दो तीन दिन जोड़े से मध्यम और हल्की दरम्यानी बारिश जी से होने की संभावना और कन्ने ही मौसम विभाग बोला करता कि जिला कांगड़ा के कुछ क्षेत्र जोड़े से कल तक भारी बारिश भी जी से हो सकती है। तो हाँ इस मौसम के हाल के अनुसार ही जोड़े से अपने खेतीबाड़ी के कामकार किसान साथी करने न। और हूँ फ्री तो चलना एक लोक जानकारी तरफ और सुनना एक प्यार दे लोक गीत।

ते किसान साथी अहें धीर शर्मा की आवाज़ से प्यारा दे लोक गीत सुने कने आशा करनी कि सिंझ दी वेला सारे पसंद आ जाना। और जी कि अहां पहले भी गल करा करते कि अहां जो जेड़े से वन दे संरक्षण वास्ते जेड़े से लगातार प्रयास जेड़े से करदे रहना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाए करी उन्हां दी देखभाल जेड़ी से करना चाहिए है और जिहड़े अनावश्यक पेड़ों की कटाई है उस जो रोकना चाहिए है। जंगलों आग तो बचाने वास्ते जिहड़ा जो लगातार प्रयास जिहड़े करना चाहिए और अवैध शिकार हो या कन्ने बन्ने जीवों की जिहड़ी तस्करी होंदी है उस पर भी जिहड़ा से निगरानी सानू रखना चाहिए उन्हां जो रोकना चाहिए है। और कन्ने ही साढ़े जिहड़े कागज़ और लकड़ी का जिहड़ा अनावश्यक उपयोग है उसते भी सानू जिहड़ा से बचना चाहिए है। यानी कि साढ़े दफ्तर स्कूलों कॉलेजों भी जिहड़ा से कागज़ का उपयोग अहां करा करदे तां इसका जिहड़ा से सदुपयोग ही करना चाहिए यानी कि ज़्यादा आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना चाहिए दुरुपयोग जिहड़ा से इन्हां दा चीज़ों का नहीं करना चाहिए ताकि साढ़े जिहड़े जंगल ने बन से लगातार उन्हां दा हरा भरा बने रहन और उत्थे जिहड़ी इस स्वच्छता और सुंदरता उन्हां दी बनी रहे है ना। कन्ने ही अहां लोकां दे जे वन संरक्षण के प्रति लोकां जो हाँ लगातार जागरूक करी सकते और इन्हां जो जिहड़े से इस वास्ते जिहड़े से प्रेरित करी सकते कि अहां लगातार ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़े से पेड़ पौधे जिहड़े से लगाने ना आस पास जितू भी सानू जिहड़ी से खाली जगह मिलती है। तो यह तो थी गलबात और हाँ कार्यक्रम के अंत फ्री तो चलना लोक जनकार की तरफ और सुनना एक और प्यारा दे लोक गीत।

जी तक किसान सतिया है सुनी रहना दे आवाज़ च प्यारा दे लोक गीत सुना करते हैं और इसी लोक गीत ने करने साढ़े कार्यक्रम का समय भी जोड़ा सी संपन्न होंदा पर जाने ते पहले दस दिए कि तकनीकी सहयोग रे सुरेंद्र कपूर और कने प्रस्तुत करता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और हूँ अपने टियाले के सदस्य पंच जो दिया अनुमति। अच्छा जी जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:45 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सुना है हिमाचल के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना फिर शुरू होने वाली है?
3: हाँ बिल्कुल, जनगणना 2027 का दूसरा चरण यानी जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर 2026 तक होगा और 17 से 31 अगस्त तक se-snowbound.census.gov.in पर जाकर अपने परिवार की जानकारी स्वयं भर सकते हैं। उसके बाद प्राप्त होने वाली SE ID को संभाल कर रखें और घर आने वाले प्रगणक को देना ना भूलें।
2: मैं अभी अपनी स्वगणना पूरी करती हूँ।
3: आप भी आज ही अपनी स्वगणना पूरी करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए आगे आने वाले लोगों के प्रयासों को सराहा। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार कर्मचारियों व पेंशनरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध, भाजपा पर लगाया राजनीति करने का आरोप। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों को दिलाई पद व गोपनीयता की शपथ। और प्रदेश में फिर सक्रिय हुआ मॉनसून, शिमला समेत कई भागों में व्यापक वर्षा, 3 सितंबर तक भारी वर्षा का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी पर आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत केवल एक औपचारिकता नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग, विशेषकर युवा, इसका हिस्सा बन रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नशे की लत से केवल एक व्यक्ति पर ही दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि पूरे परिवार और समाज को इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उन्होंने नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए आगे आने वाले लोगों की सराहना की।
2: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: पीएम स्वनिधि योजना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि देश भर में करीब 35 लाख महिलाएं योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं।
2: पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
1: प्रधानमंत्री

0: के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि भाजपा इनके नाम पर केवल राजनीति कर रही है। कांगड़ा में उन्होंने कहा कि श्रेणी एक, दो और तीन के पेंशनरों के लिए बेसिक पे से संबंधित शर्त को हटाने के निर्देश दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आने वाले समय में कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान करेगी। कार्यक्रम में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि के तहत 800 मछुआरों को वित्तीय सहायता राशि के चेक भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हिमाचल प्रदेश के अधिकारों के लिए लड़ रही है और भ्रष्टाचार के रास्ते बंद करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी के समाचार इस ब्रेक के बाद।
1: डॉक्टर साहब, मीनू बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है, इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं, देखो ना कैसी पीली पड़ गई है।
2: इसे एनीमिया है, इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाकर खिलाओ और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
1: जी डॉक्टर साहब,
2: सिर्फ इसे नहीं सभी को एनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
3: नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश जनहित में जारी।
0: ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बाकी के समाचार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज शिमला स्थित लोक भवन में उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। चिराग भानु सिंह ने स्थायी न्यायाधीश जबकि भूपेश शर्मा और योगेश जसवाल ने अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। इस दौरान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया भी मौजूद रहे। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल सहित अन्य गणमान्य लोग शिरकत की। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का विशेष प्रयास कर रही है। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के पनोह और बकरुआ में जनसंवाद के दौरान उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य से सरकार ने अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू की है। धर्माणी ने कहा कि इस योजना में विशेष उन परिवारों को प्राथमिकता दी गई है जो सामाजिक धारा से बाहर रहे हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कोटखाई उपमंडल की रावला क्यार पंचायत में आज थाना संपर्क मार्ग के उन्नयन कार्य का भूमि पूजन किया। इस कार्य पर करीब 4 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। रोहित ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में 186 नई सड़कों की सफल पासिंग हो चुकी है और ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। सांसद अनुराग ठाकुर ने पंचायत प्रतिनिधियों से गांव के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। हमीरपुर जिला के भोरंज में आज एक समारोह में उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं भारतीय लोकतंत्र की ऐसी आधारशिला है जहां लोकतंत्र सीधे जनता के द्वार तक पहुंचता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि डिजिटल तकनीक, जनभागीदारी और पारदर्शिता ने पंचायतों के कामकाज को नई दिशा दी है। प्रदेश में कुछ दिनों तक धीमा पड़ने के बाद मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। इसके प्रभाव से राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में दोपहर बाद व्यापक वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने 3 सितंबर तक राज्य के विभिन्न जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के कारण भूस्खलन के चलते कालका शिमला रेल लाइन पर आज रेल यातायात प्रभावित रहा। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार भूस्खलन के कारण प्रदेश में 64 सड़कें अवरुद्ध हैं। इसके अलावा 226 विद्युत ट्रांसफार्मर और 9 पेयजल योजनाओं पर भी असर पड़ा है। इस मॉनसून सीजन में बारिश और इससे जुड़े हादसों में अब तक 253 लोग

0: लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा संपत्ति को 1,184 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। चंबा पुलिस ने विश्व प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा के सफल संचालन के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये यात्रा 4 सितंबर से 19 सितंबर के बीच चलेगी। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि लोगों की सुरक्षा व बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि यात्रा क्षेत्र को 13 सेक्टरों में बांटा गया है।
1: जो मणिमहेश यात्रा है इसको 13 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, राइट फ्रॉम चंबा टू डल लेक तक। इसमें 13 सेक्टर डिवाइड किए हैं जिसमें लगभग 500 के लोग जो हैं इसमें होमगार्ड, पुलिस तथा अन्य लोग जो हैं सम्मिलित रहेंगे, ड्यूटीज करेंगे। इसमें हमने 4 कमांड नाके बनाए गए हैं जिसमें तुन्नू हट्टी से लाडू बैरियर, महला तथा हटसर। इस बार जो यात्रा होगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही संभव हो पाएगी, तो सभी लोगों से मेरी ये भी विनम्र रहेगा कि अपना रजिस्ट्रेशन कराएं तभी यात्रा पे प्रोसीड करें आगे।
0: सोलन नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर सुषमा शर्मा व उप महापौर गौरव राजपूत सहित भाजपा के नवनिर्वाचित पार्षदों ने आज शिमला में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर से भेंट की। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों को शुभकामनाएं देते हुए सोलन शहर के विकास और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर उठाने का आह्वान किया। हिमाचल सेब उत्पादक संघ ने सरकार से सेब व अन्य फलों का मंडी मध्यस्थता योजना का बकाया भुगतान तुरंत करने की मांग की है। संघ के राज्य कमेटी सदस्य संजय चौहान ने कहा कि बागवानों द्वारा जरूरी दस्तावेज जमा करवाने के बावजूद भी उनके खातों में बकाया राशि जमा नहीं की जा रही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए आगे आने वाले लोगों के प्रयासों को सराहा। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार कर्मचारियों व पेंशनरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध, भाजपा पर लगाया राजनीति करने का आरोप। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों को दिलाई पद व गोपनीयता की शपथ। और प्रदेश में फिर सक्रिय हुआ मॉनसून, शिमला समेत कई भागों में व्यापक वर्षा, 3 सितंबर तक भारी वर्षा का येलो अलर्ट। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
3: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
2: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
3: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: प्रादेशिक समाचार अभी आप आकाशवाणी के शिमला, हमीरपुर, धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz, DTH तथा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 KHz पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। आइए आपको अब लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे महिला क्रिकेट एशिया कप 2026 के अंतर्गत भारत और थाईलैंड के बीच खेले जा रहे T20 क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण।
5: आज के मुकाबले में प्रतिका रावल आज अपना पदार्पण कर रही हैं भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में, और ये पहला मुकाबला होगा उनका भारत की जानिब से। भारतीय टीम की तरफ से प्रारंभिक और शिफाली वर्मा मैदान की तरफ पहुंच रही हैं, और जोड़ी स्मृति मंदाना और शिफाली वर्मा।
6: FM बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है।

एफएम पे 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। सबरस कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं ज्योति का टांगरे की आवाज में।

ज्योति टांगरी की आवाज में ये पंजाबी लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। और सबरस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं वर्ली ब्रदर्स

अभी आप सुन रहे थे विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:15 हुए हैं, अब आकाशवाणी शिमला से कार्यक्रम हिम बीट्स रिले किया जाएगा।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस जारी रखते हैं। फाल्गुनी पाठक की आवाज में लीजिए, सुनिए ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

0: आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीत।
1: श्याम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया
2: क्या?

गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से 8:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के किनारे बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। मृतकों की संख्या 780 से अधिक हुई। अब तक 149 भारतीयों को बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने $1.5 लाख की आपातकालीन सहायता जारी की। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। ताशकंद विश्वविद्यालय में संस्कृत की चेयर स्थापित करने के साथ हिंदी के लिए लाल बहादुर शास्त्री के नाम से 100 छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई। भारत ने अराल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए $10 लाख का अनुदान देने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए भी समझौता किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे।
1: दोनों देशों के युवाओं, विशेषकर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के बीच एक्सचेंज को बढ़ावा देना हमारी उच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच टूरिज्म बढ़ाने के लिए आज प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन पर सहमति बनी है। मुझे खुशी है कि उज्बेकिस्तान में हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए आज हम स्कॉलरशिप की घोषणा करने जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का

0: प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। भारत वर्ष 2017 से SCO का पूर्ण सदस्य है। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे संगठन के मंच पर सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन से इतर SCO के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। अपनी बिश्केक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी 6ठे विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। यह आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का उत्सव है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: कई केंद्रीय मंत्रियों ने उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच चिरस्थायी मैत्री को प्रगाढ़ करने के सतत प्रयासों का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री मोदी के कूटनीतिक सिद्धांतों से नए मार्ग खुल रहे हैं और वे ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि श्री मोदी का ये 36वां वैश्विक सम्मान है। इससे पता चलता है कि उनके नेतृत्व को दुनिया भर में सराहना मिल रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा, गीत और संदेश तैयार करने की अपील की।
3: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि PM स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
3: PM स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। PM स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मिशन शक्ति सेट के माध्यम से हजारों देश की बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं।
3: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर

0: मिल रहा है।
1: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के इस मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। लखनऊ में पीएम सेतु इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि देश अपनी रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी में बुनियादी कायाकल्प का साक्षी बन रहा है।
2: आज हम डिफेंस सेक्टर में पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। जब मैं मिनिस्टर बना था तो डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था। आपको जानकर खुशी होगी अब हम लोग 1,80,000 करोड़ के आसपास हैं। हमारा एक्सपोर्ट 600 करोड़ था, आज हमारा एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ तक पहुंच गया है। हम इंडिजिनस डिजाइन को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर तथा एमएसएमई की भागीदारी बढ़ा रहे हैं।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर, वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। अमेरिका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्सपर्ट एट एआईआर न्यूज हिंदी को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2,500 से अधिक लोग लापता हैं। अब तक प्रभावित इलाकों से 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे हैं। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित है। पेचिंग में भारतीय दूतावास उनसे संपर्क में है। भारत से आज 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंची। इससे पहले भारत 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। इस बीच भारत से भेजी गई विशेष सुरंग बचाव टीम ने आज नेपाली सेना की टीम के साथ मिलकर चिलिमे और लांगटांग क्षेत्र की जल विद्युत सुरंगों में खोज और बचाव अभियान चलाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी राहत पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपात कोष से 1,50,000 अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य में समाज के सभी वर्गों से बंद या ब्लॉकेड नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगे मनवाने के लिए इस तरह की गतिविधियों से कभी कभी अवांछित हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप का फाइनल मुकाबला वर्तमान चैंपियन जर्मनी और स्पेन के बीच जारी है। दो क्वार्टर की समाप्ति तक मुकाबला गोल रहित बराबरी पर है। इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। और एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत और थाईलैंड के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 14वें ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति

0: आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Uzbekistan elevate bilateral ties to comprehensive strategic partnership, seal long-term uranium supply pact and set $5 billion trade target by 2030. Prime Minister Narendra Modi conferred Uzbekistan's highest state honor, reaches Kyrgyz Republic to take part in 26th SCO summit at Bishkek. Prime Minister Modi warns of perils of drug abuse in Mann Ki Baat program, celebrates women's economic empowerment, girls entering space industry and agricultural innovation. Nepal issues fresh flood alert along Bhote Koshi River. 149 Indians rescued so far as death toll crosses 780. WHO releases $150,000 emergency aid. And in men's hockey, Germany and Spain locking horns for coveted World Cup title in Belgium. And now the news in detail. India and Uzbekistan today decided to elevate their bilateral relationship to comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have also set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. The two leaders witnessed the exchange of 11 memoranda of understandings aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors, including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue, and Ayurveda. In its remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress and prosperity in Central Asia.
2: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
1: Later, at a joint press conference with the Uzbekistan president following the talks, Prime Minister Modi said maintaining a zero-tolerance policy towards terrorism, extremism and separatism will remain their shared resolve.
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को-प्रोडक्शन और को-डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती हैं। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: Mr. Modi said India and Uzbekistan will jointly organize a business summit involving business leaders from both the countries.
2: दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम 3 सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड द टू कंट्रीज विल आल्सो सेट अप कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स।
2: स्पोर्ट्स भी हमारे सहयोग के महत्वपूर्ण आयाम के रूप में उभर रहा है। पिछले वर्ष गोवा में 20 वर्षीय उज्बेक ग्रैंड मास्टर सिंदारोव ने वर्ल्ड कप जीता। अब नवंबर में उनका मुकाबला भारत के 20 वर्षीय

0: Koshi River. 149 Indians rescued so far as death toll crosses 780. And in men's hockey, Germany and Spain locking horns for the coveted World Cup title in Belgium. And that's all in the news at 9. Good night.
1: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है।
2: अरे वाह, न्यू कार प्रमोशन मिल गया क्या?
3: प्रमोशन नहीं, ट्रू वैल्यू मिला।
2: मतलब प्रीमियम लुक, प्रीमियम प्राइस भी।
3: प्रीमियम लुक तो है, पर प्राइस एकदम रीजनेबल, वो भी लो डाउन पेमेंट और इजी ईएमआई ऑप्शंस के साथ।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

बुढ़ा मिल गया, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। ऋषिकेश मुखर्जी निर्माता और निर्देशक, इनके द्वारा निर्मित फिल्मों के गीत आज हम आपको सुनवा रहे हैं। ऋषिकेश मुखर्जी हिंदी फिल्मों में एक ऐसे कलाकार के रूप में विख्यात हैं जिन्होंने बेहद मामूली विषयों पर संजीदा फिल्में बनाने के बावजूद उनके मनोरंजन पक्ष को कभी अनदेखा नहीं किया। यही कारण है कि उनकी सत्यकाम, आशीर्वाद, चुपके चुपके और आनंद जैसी फिल्में आज भी बेहद पसंद की जाती हैं। ऋषिकेश मुखर्जी की अधिकतर फिल्मों को पारिवारिक फिल्मों के दायरे में रखा जाता है क्योंकि उन्होंने मानवीय संबंधों की बारीकियों को बखूबी पेश किया है। उनकी फिल्मों में राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, जया भादुरी जैसे स्टार अभिनेता और अभिनेत्रियां भी अपना स्टारडम भूलकर पात्रों से बिल्कुल घुल मिल जाते हैं। तो आइए सुनते हैं आनंद फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज़ में।

30 सितंबर 1922 को कोलकाता में जन्मे ऋषिकेश मुखर्जी फिल्मों में आने से पूर्व गणित और विज्ञान का अध्यापन करते थे। उन्हें शतरंज खेलने का शौक था। फिल्म निर्माण के संस्कार उन्हें कोलकाता के न्यू थिएटर से मिले। उनकी प्रतिभा को सही आकार देने में प्रसिद्ध निर्देशक बिमल रॉय का भी बड़ा हाथ था। ऋषिकेश मुखर्जी ने 1951 में फिल्म 2 बीघा जमीन फिल्म में बिमल रॉय के सहायक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। उनके साथ 6 साल तक काम करने के बाद उन्होंने 1957 में मुसाफिर फिल्म से अपने निर्देशन के करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन तो नहीं किया, लेकिन राज कपूर को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म अनाड़ी, जो कि 1959 में बनी थी, उनके साथ बनाई। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म निर्माण की प्रतिभा का लोहा समीक्षकों ने उनकी दूसरी फिल्म अनाड़ी से ही मान लिया था। ये फिल्म राज कपूर के सधे हुए अभिनय और मुखर्जी के कसे हुए निर्देशन के कारण अपने दौर में काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। इसके बाद मुखर्जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अनुराधा, अनुपमा, आशीर्वाद और सत्यकाम जैसी ऑफबीट फिल्मों का भी निर्देशन किया। ऋषिकेश मुखर्जी ने 4 दशक के अपने फिल्मी जीवन में हमेशा कुछ नया करने का प्रयास किया। ऋषिकेश मुखर्जी की अंतिम फिल्म 1998 की झूठ बोले कौवा काटे थी। उन्होंने टेलीविज़न के लिए तलाश, हम हिंदुस्तानी, धूप छांव, रिश्ते और उजाले की ओर जैसे धारावाहिक भी बनाए।

मिठास कहीं कड़वी ना हो जाए। तो आइए सुनते हैं एक और गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, फिल्म है चुपके चुपके।

श्रोताओ, एक ही शीर्षक के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्मित फिल्मों के गीत। 1961 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1972 में उनकी फिल्म आनंद को सर्वश्रेष्ठ कहानी के फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें और उनकी फिल्म को 3 बार फिल्मफेयर बेस्ट एडिटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिसमें 1956 की फिल्म नौकरी, 1959 की फिल्म मधुमती और 1972 की आनंद शामिल है। उन्हें 1999 में भारतीय फिल्म जगत के शीर्ष सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। साल 2001 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। मुंबई में 27 अगस्त 2006 को हिंदी फिल्मों के इस लोकप्रिय फिल्मकार ने इस संसार रूपी चित्रपट को विदा कह दिया। वर्तमान फिल्मों में जब हम कॉमेडी के नाम पर द्व्यर्थी शब्दों का प्रयोग देखते हैं तो ऋषिकेश मुखर्जी की कमी बहुत खलती है।

तो श्रोताओ, इसके साथ ही आज का एक ही शीर्षक के अंतर्गत फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को हैं। आपसे कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम अनुगूंज और रात्रि 10 बजे रविवासरीय संगीत सभा रिले की जाएगी।

कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो समय बीत जाने के बाद भी हमारे बीच रहती हैं। वे इतिहास के पन्नों से निकलकर आज भी हमसे बातें करती हैं, कभी कविता के जरिए, कभी खेल के मैदानों की यादों के जरिए और कभी अपने जीवन के अनुभवों के जरिए। इन आवाजों में एक पूरा इतिहास सांस लेता है और जब बरसों बाद ये आवाजें फिर सुनाई देती हैं तो लगता है जैसे बीता हुआ कल आज से कुछ कह रहा हो। शायद इसलिए आवाज हमारी पहचान होती है।

0: फिराक गोरखपुरी, मेजर ध्यानचंद और अमृता प्रीतम, आज ये तीनों महान हस्तियां हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाजें हमारे साथ हैं। आकाशवाणी के अभिलेखों में सुरक्षित इन आवाजों के माध्यम से आज हम उन्हें फिर याद करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनके जीवन को समझेंगे और जानेंगे कि इतने वर्षों के बाद भी उनकी आवाजें हमें क्यों प्रेरित करती हैं। आइए समय की इस दूरी को कुछ देर के लिए मिटाते हैं और सुनते हैं उनकी आवाज। इन तीनों की दुनिया अलग थी। एक शायर थे, एक महान खिलाड़ी और एक प्रसिद्ध लेखिका। लेकिन इन तीनों में एक बात समान थी, इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई और अपने पीछे ऐसी विरासत छोड़ी जिससे आने वाली पीढ़ियां आज भी प्रेरणा लेती हैं। सितारों से उलझता जा रहा हूं, शबे फुरकत बहुत घबरा रहा हूं, तेरे गम को भी कुछ बहला रहा हूं, जहां को भी समझता जा रहा हूं। अब सुनते हैं एक ऐसी आवाज जिसने उर्दू शायरी को अलग पहचान दी।
1: शायरी तो हसास तरीके तो कोई बात कह देने का नाम नहीं, शायरी महज इजहार नहीं, शायरी रूहानी लिहाज से एक तामीर, तकरीब की फोटोग्राफी।
0: 8 अगस्त 1896 को गोरखपुर में जन्मे फिराक गोरखपुरी का नाम था रघुपति सहाय। वे उर्दू के मशहूर शायर और लेखक थे। उनकी शायरी में प्रेम, प्रकृति, जीवन और इंसानी रिश्तों की गहरी समझ दिखाई देती है।
2: किसी का कौन हुआ यूं तो उम्र भर, फिर भी ये हुस्न इश्क तो धोखा है सब, मगर फिर हजार बार जमाना इधर से गुजरा है, नई नई से है कुछ तेजी रह गुजर।
0: फिराक की खासियत ये थी कि उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और संस्कृति की

0: सहज झलक मिलती है। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए इंसान और इंसान के बीच के रिश्तों को समझने की कोशिश की। उनकी भाषा और सोच में भारत की उस साझा संस्कृति की झलक मिलती है, जहां अलग अलग भाषाएं और परंपराएं होते हुए भी भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं।
1: उन्हीं के दिल हैं अमीने रमूज़ आज़ादी, जो जानते हैं असीरी है एक फन से
0: फिराक की आवाज में भी वही अपनापन महसूस होता है जो उनकी शायरी में दिखाई देता है। भारत की खूबसूरती भी यही है। यहाँ भाषाएं अलग हैं, बोलने का अंदाज अलग है, लेकिन भावनाएं एक जैसी हैं।

0: की हर सरहद नजरों से छुपती जाती है। अलविदा ऐ जन्म साथियों, अलफिराक ऐ हम असरो, एक अनसुनी पुकार दूर से मुझको कहीं बुलाती है। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साज बदलो, नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती
1: शब्द अलग हो सकते हैं, लहजे अलग हो सकते हैं, लेकिन जब बात दिल से निकलती है तो वो हर दिल तक पहुंचती है। शायद यही फिराक की सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने भाषा की सीमाओं के पार जाकर इंसान को इंसान से जोड़ दिया। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। मेरी नजरें भी ऐसे कातिलों का जानो ईमान है, निगाहें मिलते ही जो जान और ईमान लेते हैं।

0: The final of the Olympic hockey. The wonderful Indian team in the white shorts, who so far have scored 30 goals to naught in the tournament, are playing Germany. India score. The final result was India 8, Germany 1.
1: भारतीय हॉकी की कहानी उस दौर की कहानी है जब भारत की प्रतिभा और खेल कौशल ने दुनिया को अपना मुरीद बना लिया था। और इस गौरवशाली यात्रा के सबसे उज्जवल अध्यायों में एक नाम था मेजर ध्यानचंद। उनके लिए हॉकी महज एक साधना थी। गेंद पर अद्भुत नियंत्रण, खेल की गहरी समझ और गोल करने की असाधारण कला ने उन्हें दुनिया के महानतम खिलाड़ियों की पंक्ति में ला खड़ा किया। लेकिन ध्यानचंद की असली महानता उस खेल संस्कृति और विरासत में थी जो वे आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ गए। 29 अगस्त उनकी जयंती को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन उन असंख्य खिलाड़ियों के परिश्रम, अनुशासन और समर्पण को सम्मान देने का दिन भी है जो अपने खेल के माध्यम से देश का गौरव बढ़ाते हैं। ध्यानचंद से जुड़ी अनगिनत कहानियां आज भी हमारे बीच जीवित है। तस्वीरों में दर्ज उनका व्यक्तित्व, मैदान से जुड़े किस्से और उनकी उपलब्धियां हमें उस स्वर्णिम दौर की याद दिलाते हैं। लेकिन जब इतिहास के पन्नों से निकलकर उनकी आवाज हमारे सामने आती है तो वो दौर और भी जीवंत हो उठता है। आइए सुनते हैं मेजर ध्यानचंद की अपनी आवाज आकाशवाणी के अभिलेखों से।
2: फॉरेन कंट्री जो हॉकी सीखी है इसमें शक नहीं है कि हिंदुस्तान के जरिए सीखी है। मैंने देखा है वहाँ कि हॉलैंड के अंदर और जर्मन के अंदर जिस वक्त हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे ग्राउंडों पर तो उनके टेलीविजन वगैरह फोटोग्राफ्स वगैरह ये स्लो मोशन और फास्ट मोशन लेने के लिए हमारे पीछे पीछे लग जाते थे। लेकिन हम लोग खिलाड़ी थे, हमको इन बातों के बीच जरा सा भी ख्याल नहीं होता था कि क्या है। एक फ़ोटो मांग लेते थे, बाकी वो अपना सीक्रेट हर एक चीज़ लड़कों को सिखलाने के लिए खींच लेते थे। और वो फोटोज़ स्क्रीन के ऊपर अपने बच्चों को, ये मैंने 63 में देखा।

0: जब मैं 63 में बर्लिन में गया फिर ये देखा बच्चों को वो स्क्रीन के ऊपर उसको उनको शो करते थे और उनको उसी वक्त साथ में बोलते भी जाते थे कि देखो ये हाथ इधर रखना है, ये पैर इधर है और ये सिर इधर है, बाल को जब ड्रिबल करना है तो उसका हेड किधर होना है फलान। ऐसा करने के बाद उन लोगों ने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली कि हम अब हिंदुस्तान का मुकाबला करने लगे। मैंने देखा है रिसेंटली यूरोप कंट्री के खेलों को कि वो हमारे मुकाबले में थोड़ा थोड़ा ड्रिबलिंग करने लगे हैं बजाय एक मारने के, अब ड्रिबलिंग भी शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो इसमें शक नहीं है कि सीखा हम लोगों से है और इसमें हमारे लोगों की, हमारे हिंदुस्तान की अभी तक वो कंट्री तारीफ करती है कि हाँ हिंदुस्तान जो खेलती है हॉकी वो हिंदुस्तान के सिवा और कोई नहीं खेल सकता।
1: बादलों के महल में मेरा सूरज सोया हुआ है और उस महल का कोई दरवाज़ा नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई सीढ़ी नहीं, और सदियों के हाथों ने जो पगडंडी बनाई है वो मेरे चिंतन के पैरों के लिए बहुत संकरी है। मैं अपने सूरज के पास कैसे पहुंचूं जो बादलों के महल में सोया हुआ है।
2: अभी आपने सुनी अमृता प्रीतम की आवाज़, उनकी बातों में एक सादगी है और इसी सादगी में उनके अनुभवों की गहराई भी दिखती है। अमृता प्रीतम ने ऐसे समय में लिखा जब समाज में महिलाओं के लिए अपनी बात खुलकर कहना आसान नहीं था। उन्होंने प्रेम के बारे में लिखा, उन्होंने बंटवारे का दर्द लिखा, उन्होंने औरत के मन की बात लिखी और सबसे बढ़कर उन्होंने अपने तरीके से जीने और लिखने की हिम्मत दिखाई। 31 अगस्त 1919 को जन्मी अमृता प्रीतम भारतीय साहित्य की ऐसी आवाज थी जिन्होंने प्रेम, रिश्तों, अकेलेपन और अपने समय की पीड़ा को बहुत सहज शब्दों में लिखा। उनकी लेखनी में एक खास बात थी, वे दिल की बात कहने से कभी पीछे नहीं हटी।
1: हमारे देश के 7 पवित्र स्थान 7 पुरियां कहे जाते हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, कांची, काशी, अवंती और द्वारापुरी। इनमें से द्वारापुरी सागर के किनारे थी जो कृष्ण के देह त्यागने के 7वें दिन सागर में अलोप हो गई थी। बाद में वो द्वारका के नाम से दूसरे स्थान पर बस गई, पर अपने मूल स्थान से वो लोप हो चुकी है। मैं सोचती हूँ कि सागर में लोप हो चुकी द्वारावती हर इंसान के मैं का वो टुकड़ा है जिसकी तलाश हर इंसान के मैं को करनी होती है और उसका इतिहास खोजना होता है। इसी मैं की तलाश में मैंने जाना कि मेरे में और एक ब्राह्मण में क्या फर्क है। यही कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। मेरे में और एक क्षत्रिय में भी यही फर्क है कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ। मेरे में और एक वैश्य में भी यही फर्क है कि मैं वैश्य नहीं हूँ। इसी तरह मेरे में और एक शूद्र में भी यही फर्क है कि मैं शूद्र नहीं हूँ। और जाना कि मेरे में और एक हिंदू, सिख, मुसलमान या ईसाई में भी यही फर्क है कि मैं हिंदू, सिख, मुसलमान या ईसाई नहीं हूँ। मेरे मैं की एक पवित्र पुरी द्वारावती फिर कौन से पानी में लोप हो गई, यही खोजते हुए मैंने अपनी द्वारावती का भेद पा लिया कि मैं चरक जाति की हूँ। हमारे प्राचीन काल में चरक उसे कहा जाता था जिसका मुतालिया, जिसका अध्ययन जिंदगी में कभी ख़त्म नहीं होता था। वो तमाम जिंदगी इलम को, ज्ञान को ग्रहण करता था और तमाम जिंदगी उस इलम को, ज्ञान को बांटता रहता था। मैंने इलम के लिए अपनी प्यास को समझ लिया तो अपनी जाति पहचान ली और जान लिया कि दो हाथों से जो अर्जित करना है वही हजार हाथों से बांट देना है।
2: आज इतने वर्षों बाद भी अमृता प्रीतम की बातें हमें अपनी सी लगती हैं, शायद इसलिए कि उन्होंने अपने समय की उन भावनाओं को शब्द दिए जिन्हें महसूस तो बहुत लोग करते थे लेकिन कह नहीं पाते थे। प्रेम हो, बिछड़ने का दर्द हो, विभाजन की पीड़ा हो या एक स्त्री के मन

0: और अपनी पहचान की बात। अमृता प्रीतम ने हर विषय को बहुत सच्चाई और बेबाकी से लिखा।
1: अर्धनारीश्वर का फलसफा खो गया तो दास्ता पैदा हुई, शिव शक्ति जैसा चिंतन खो गया तो जड़ता पैदा हुई, धर्म खो गया तो प्रतिकर्म में से मजहब पैदा हुआ, आत्मा खो गई तो शरीर एक वस्तु बन गया, मजहब और सियासत बहुत बड़े माध्यम बन गए जिनके हाथों वस्तु बन चुके इंसान का व्यापार होता है।
0: उन्होंने अपने जीवन में भी अपनी राह खुद चुनी और अपनी पहचान बनाई। यही वजह है कि उनका साहित्य केवल एक दौर की कहानी नहीं रह गया, उनकी रचनाएं कई भाषाओं में पढ़ी और अनुदित हुई। अलग अलग प्रदेशों के पाठकों ने उनमें अपने जीवन और अपनी भावनाओं की झलक देखी। शायद यही किसी लेखक की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी बात उनके दिल से निकलती है लेकिन पहुंचती है हर दिल तक। अमृता प्रीतम के साथ तो आकाशवाणी का रिश्ता और भी खास है। अमृता प्रीतम ने दिल्ली में आकाशवाणी की पंजाबी सेवा में काम किया था और 1961 तक जुड़ी रहीं। यानी जिस आकाशवाणी के अभिलेख आज उनकी आवाज को हमारे लिए संभाल कर रखे हुए हैं, कभी उसी आकाशवाणी का हिस्सा बनकर अमृता प्रीतम ने भी श्रोताओं तक अपनी बात पहुंचाई थी।
1: मेरी तमाम दुनिया सपनों की दुनिया है, इसे तकसीम करूं तो एक हिस्सा जागती आंखों के सपनों से भरा हुआ है और दूसरा सोई हुई आंखों के सपनों से। जिंदगी का यथार्थ क्या है और क्या हो सकता था, इसी यात्रा को मैं नाम देती हूं मैं से लेकर मैं तक की यात्रा, यानी अपने ही छोटे मैं से लेकर अपने ही बड़े मैं तक की यात्रा। यूनान के लेखक निकोस काजांजाकिस ने मेरे इस एहसास को बड़े खूबसूरत अल्फाज दिए थे, क्रिएट एन आइडियलाइज्ड इमेज ऑफ योर सेल्फ एंड ट्राई टू रिजेंबल इट। मैंने काजांजाकिस के इन अल्फाज को गुरु मंत्र की तरह धारण किया है और जो सोचती रही लिखती रही वो एक यात्रा है, अपने छोटे मैं से लेकर अपने बड़े मैं तक पहुंचने की। कह सकती हूँ कि ये एक अक्षर की यात्रा है, छोटे मैं से लेकर बड़े मैं तक की यात्रा, गुलामी से स्वतंत्रता तक की यात्रा, नफरत से मोहब्बत तक की यात्रा, जड़ से चेतन तक की यात्रा, अक्षर से अर्थ तक की यात्रा और महदूद से लामहदूद तक की यात्रा, यानी सीमित से असीम होने तक की यात्रा।

0: समय बीत जाता है, लोग चले जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ें रह जाती हैं। और जब वे आवाज़ें फिर सुनाई देती हैं तो लगता है जैसे बीता हुआ समय कुछ पल के लिए लौट आया हो। एक ने अपने शब्दों से जिंदगी को आवाज दी, एक ने अपने खेल से देश का गौरव बढ़ाया और एक ने अपनी शायरी से दिलों में जगह बनाई। रास्ते अलग थे लेकिन मंजिल एक, अपने हुनर को पहचानना, उसे साधना और ऐसा काम करना जो वक्त बीत जाने के बाद भी लोगों को प्रेरित करता रहे। अमृता प्रीतम की लेखनी से हम अपने मन की बात कहने की हिम्मत सीखते हैं। मेजर ध्यानचंद से मेहनत, अनुशासन और अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा सीखते हैं और फिराक गोरखपुरी से भाषा और संस्कृति की सीमाओं से ऊपर उठकर इंसान को समझना सीखते हैं। समय बदलता रहेगा, पीढ़ियां बदलती रहेंगी, लेकिन इन महान व्यक्तित्वों से मिलने वाली सीख कभी पुरानी नहीं होगी। नई पीढ़ी इनके जीवन से सीखती रहेगी और अपने सपनों को पूरा करने का साहस पाती रहेगी। ये तीनों आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इनकी यादें हैं, इनके शब्द हैं, इनके अनुभव हैं और सबसे बढ़कर इनकी आवाजें हैं। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मगर आवाज वो ठहर जाती है। यही तो है अनुगूंज, वक्त के साथ तस्वीरें धुंधली पड़ जाती हैं, नाम यादों में कहीं पीछे छूट जाते हैं, लेकिन आवाज अपने होने की एक निशानी छोड़ जाती है।
1: अभी आप आकाशवाणी अभिलेखागार द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज सुन रहे थे। वाचन आशुतोष कुमार, शीर्षक गीत राजेश राज और गायक जितेंद्र सिंह, शोध आलेख एवं निर्देशन मोनिका गुलाटी।

0: जी राघवेंद्र प्रसाद ने कर्नाटक वायलिन वादन की बारीकियां अपने गुरु कलैमा मणि श्री वी एस के चक्रपाणी जी के मार्गदर्शन में सीखी हैं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से कर्नाटक संगीत में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है, जहां आप रजत पदक विजेता रहे हैं। राघवेंद्र प्रसाद एकल वादन के साथ साथ एक सिद्धहस्त संगतकार के रूप में भी संगीत जगत में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए आपको युवा कलाकार छात्रवृत्ति से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त आपको सन 2010 में CCRT छात्रवृत्ति, 2019 में युवा पुरस्कार और युवा उभरते कलाकार का खिताब, 2022 में नाद लय शिखामणि तथा 2023 में संस्कृति मंत्रालय एवं आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा संयुक्त रूप से गंधर्व विज्ञ सम्मान से नवाजा गया है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी कला का परचम लहराते हुए आपने रूस में आयोजित फेस्टिवल ऑफ इंडिया में भाग लिया और स्विट्जरलैंड के रीटबर्ग संग्रहालय में प्रस्तुतियां दी। देश के प्रतिष्ठित मंचों जैसे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, जालंधर का प्रसिद्ध हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन, राष्ट्रपति भवन, TTD नाद नीराजनम, वाराणसी का श्री संकट मोचन मंदिर स्पिकमैके तथा तिरुवैयारू में त्यागराज आराधना महोत्सव में भी इनकी प्रस्तुतियां सराहनीय रही हैं। एक कुशल संगीतकार के रूप में राघवेंद्र ने पद्मभूषण श्री TN शेषगोपालन, मल्लाडी ब्रदर्स, नेवेली श्री संथान गोपालन, श्री OS अरुण, मांबलम सिस्टर्स तथा डॉक्टर के वागीश जैसे संगीत जगत के शीर्ष दिग्गजों के साथ सफलतापूर्वक वायलिन संगत की है। आइए सुनते हैं जी राघवेंद्र प्रसाद का कर्नाटक वायलिन वादन। आपके साथ मृदंगम पर यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री वरुण राजशेखरन संगत कर रहे हैं। जी राघवेंद्र प्रसाद अपने कार्यक्रम का आरंभ राग मणिरंगू से कर रहे हैं। रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभानुजेशा। इसके रचनाकार हैं महाराजा स्वाति तिरुनाल। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: दिस इज आकाशवाणी। टुनाइट इन रवि वासरी अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ वायलिन रिसाइटल बाय जी राघवेंद्र प्रसाद। जी राघवेंद्र प्रसाद इज एन ए ग्रेड वायलिन कर्नाटक आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन। ही हैज डन हिज मास्टर्स इन कर्नाटक म्यूजिक फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ही हैज लर्नड बेसिक्स ऑफ वायलिन रिसाइटल बाय कलैमा मणि श्री VSK चक्रपाणी। He is recipient of scholarship to young artist awarded in the year 2019-20 by Ministry of Culture for Carnatic Instrumental Violin. He was awarded scholarship by Center for Cultural and Resources Training in the field of Carnatic Music Instrument Violin in 2010. Awarded Gandharva Vignaya jointly by Ministry of Culture, Government of India and Art of Living Bengaluru in January 2023. He has performed violin concerts in India International Center, Harivallabh Festival Jalandhar, Rashtrapati Bhavan Delhi, Tamil Sangam, Lok Kala Manch, Bharatiya Vidya Bhavan Chennai and many places in Delhi and Chennai. He has been a part of prestigious Festival of India in Russia, performed in Redberg Museum Switzerland and has performed in various countries all over the world. He has also accompanied leading artists like Padma Bhushan and Sangeet Kalanidhi, Shri TN Sheshgopalan, Malladi Brothers, Shri Vishnu Dev, Neveli Shri Santhan Gopalan, Shri OS Arun, Mambalam Sisters, Dr. Manda Sundarani, Dr. K. Vagish, Dr. T. V. Manikandan, Dr. Kanna Kumar, and other renowned artists. Accompanied in various places like Sangeet Natak Academy, श्री संकट मोचन हनुमान टेम्पल इन वाराणसी, स्पिक मैके, IGNCA, आंध्रा भवन, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इंडिया हैबिटेट सेंटर, चिन्मय मिशन, तेलुगु एंड मलयाली एसोसिएशंस एक्सेट्रा। टुडे ही इज अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम बाय वरुण राजशेखरन। जी राघवेंद्र प्रसाद बिगिन्स हिज वायलिन रिसाइटल विद राग मणिरंगू। Composition Jai Jai Padmanabhanu Jesh, composed by Maharaj Swati Tirunal and is set to Adi Talam.

0: ये था जी राघवेंद्र प्रसाद का वायलिन पर बजाया गया राग मणिरंगू। कार्यक्रम को जारी रखते हुए जी राघवेंद्र प्रसाद अब प्रस्तुत करेंगे राग वराली। रचना के बोल हैं शेषाचल नायकम। इसके रचनाकार हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर। ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: That was राग मणिरंगू। Continuing his recital, G. Raghavendra Prasad now presents another composition based on Rag Varali. Composition is Shesha Chalanayakam, composed by Muthuswami Dikshitar and is set to Rupakam Talam.

0: आज के कार्यक्रम में आपके साथ मृदंगम पर यशवंत हम्पी होली और घटम पर वरुण राजशेखरन संगत कर रहे थे। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: He was accompanied on Mridangam by Yashwant Hampi Holi and on Ghatam by Varun Rajashekharan. With that, we conclude tonight's Ravivasriya Akhil Bhartiya Sangeet Sabha. This program was earlier recorded in the studios of Akashvani Delhi and was broadcast from the Delhi station of Akashvani.
2: एफएम पे 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है, अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान

0: उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्री के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलेक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। नेपाल सरकार ने भोटेकोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जीत लिया है। बेल्जियम में खेले गए फाइनल मुकाबले के 44वें मिनट में जर्मनी के मिशेल स्ट्रोथॉफ ने एकमात्र गोल किया। इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. India and Uzbekistan today decided to elevate their bilateral relationship to comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have also set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. The two leaders witnessed the exchange of 11 memoranda of